आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सनसिटी चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। आज रविवार है। शक समत 1948 के आषाढ़ माह की 14वीं तिथि। तदनुसार 5 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 हुए हैं। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होगी। उन्होंने कहा कि यह विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 10 जुलाई तक कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में इथेनॉल मिश्रण का विचार सर्वप्रथम पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान किया जाएगा। पूर्वी अमेरिका में भीषण लू चल रही है, इससे बिजली आपूर्ति पर भारी दबाव पड़ रहा है और फीफा विश्व कप मैचों की तैयारियों में बाधा आ रही है। अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले शहर न्यूयॉर्क में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की आशंका है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य अटलांटिक तट पर भी लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के मौसम विभाग ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान रिकॉर्ड तोड़ तापमान का भी पूर्वानुमान होगा। पुरुष क्रिकेट में इंग्लैंड ने कल मैनचेस्टर में 5 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। वहीं जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। तीसरा मैच मंगलवार को नॉटिंगम में खेला जाएगा। इससे पहले वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। वैभव ने 15 वर्ष और 99 दिन की उम्र में पदार्पण किया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया, जबकि एक अन्य सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। लंदन में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने कल महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकाइना को हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। एक अन्य मुकाबले में फिलीपींस की अलेक्जेंड्रा एलानी तीसरी वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वियाटेक को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने तीसरे दौर में अमेरिका के मार्कोस गिरोन को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 102.1 MHz पर ये FM सेंसिटी चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।
3: विविध भारती

0: हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सेंसिटिव चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात परम सुखम, न तृष्णायाः परो व्याधिर्न च धर्मो दया परः। अर्थात हमारे जीवन में शांति के समान कोई तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

भाग से तुरंत बाद सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 240। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, इसका पांचवा भाग आज आप सुन सकेंगे। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोणु मजुमदार, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, संवादक हैं यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत गीतकार सुधाकर शर्मा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग सुन सकेंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 रात्रि 11 से विविधा, इसके अंतर्गत भरत व्यास, चेतन आनंद और मोहम्मद अजीज की चर्चा। दिन में 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 से सुरीला सफर, दोपहर 2 से त्रिवेणी,

दोपहर 2:30 से सदाबहार नगमे मनचाहे गीत सुन सकेंगे। दोपहर 3 से 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक मालविका अग्निमित्र का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे। मूल संस्कृत नाटक महाकवि कालिदास की है और हिंदी अनुवाद सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतर एवं निर्देशन चिरंजीत का। पिटारा शाम 4 से, इसके अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत रीमा अमरापुर पक्कर से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग सुनिएगा, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। शाम 5 से आप सुनते हैं छाया गीत का पुनर्प्रसारण, तराने नए पुराने शाम 5:30 से। संध्या रंजन, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे शाम 6:35 से। विशेष जयमाला शाम 7 से, इसके अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा के अंतर्गत सुनिएगा असिस्टेंट कमांडर रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज़।

रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा नाटिका बहादुर की शादी, लेखन हरी मेहरा की, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। रात 8:15 से चित्रलोक आपके लिए ये कार्यक्रम सुन सकेंगे। रात 9 बजे से छायागीत सुनिएगा, रात 10 बजे आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात 10:30 से और विविधा रात 11 बजे से। आपको याद दिला दें कि रात 9:30 और सुबह 9:30 से ही आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो केंद्रित होगा निर्देशक राजकुमार संतोषी पर। संवादक हैं यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

अयोध्या वासियों सहित राजा जनक के चित्रकूट से प्रस्थान करने की वेला आ पहुंची है। भरत के भक्ति तथा समर्पण भरे वचन सुनकर श्री राम गदगद हो गए। विदा करते हुए वो भरत को पावरी देना चाहते हैं, किंतु संकोच होता है। क्षणिक सोच विचार के पश्चात गुरुजन तथा बड़ों की उपस्थिति का संकोच त्याग कर उन्होंने भरत को अपनी चरण पादुका दे दी। भरत ने खड़ाओं की जोड़ी को सिर पर धारण किया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका इस श्रृंखला की आज पांचवी कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं और रोनू दादा हमारे साथ स्टूडियो में हैं। रोनू दादा, आज के इस कड़ी में हम तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत के महारथी, बांसुरी के महारथी, फिल्म लाइन में आप कैसे आए? और हमने तो सुना था कि कोई रेडियो कॉम्पिटिशन था जिसमें आप फर्स्ट आए थे।
2: जी,
1: वो तो शास्त्रीय रचना थी, फिर फिल्मों में कैसे?
2: मुझे तो अपने ऊपर विश्वास नहीं था। हाँ। क्योंकि मैं 17 साल का था।
1: जी,
2: मगर मेरे गुरुजी को मेरे ऊपर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि जाके फॉर्म भरिए। पंडित विजय राघव राव जी ने कहा कि भानु दादा के नाम से प्रसिद्ध थे वो।
1: जी जी जी।
2: फॉर्म भरिए। तो मेरे पिताजी ने बोला कि वो इस लायक तो अभी नहीं है। बोले कि गुरु आप है या मैं हूँ।
1: वाह।
2: उस दिन मुझे गुरु की अहमियत मालूम पड़ी और पिताजी चुप, एक शब्द पिताजी उनके ऊपर बोल नहीं पाए। मतलब पिता से भी अगर कोई बड़ा है तो वो है गुरु। क्यों गुरु बड़ा है? क्योंकि गुरु जब ज्ञान दे देता है तो गुरु अगर नाराज भी हो जाए तो वो ज्ञान वो वापस छीन नहीं सकता।
1: बिल्कुल।
2: पैसा तो छीना झपटी करके छीना भी जा सकता है, ज्ञान कैसे वापस लेंगे? इसीलिए इतनी बड़ी चीज वो आपको दे रहा है कि जो वो खुद भी चाहे तो वापस नहीं ले सकता। तो पिताजी ने फॉर्म भर दिया गुरुजी की आज्ञा से और मैं फर्स्ट आ गया। और उस जमाने में साधना सरगम मेरे साथ कंपटीशन में बैठी थी गाने के लिए।
1: क्या बात है।
2: तो बम्बई से हम दोनों ही फर्स्ट आ गए। साधना उन दिनों मेरी पुरानी दोस्त है, एक बहन की तरह है, और वो पंडित जसराज जी से सीखती थी, ये कई लोगों को मालूम नहीं है।
1: जी।
2: तो हम दोनों फर्स्ट आ गए। तो उस जमाने में जो फर्स्ट आते थे उनका कार्यक्रम भी ऑल इंडिया रेडियो में रखा जाता था।
1: जी।
2: हम लोग पहुंच गए और माधव राव इंदौरकर जी बहुत बड़े तबला वादक थे।
1: जी जी।
2: तो माधव राव इंदौरकर जी ने मेरी संगत की।
1: जी। किस आकाशवाणी केंद्र से आप ये फर्स्ट आए थे?
2: बॉम्बे से।
1: मुंबई से।
2: हाँ
1: जी।
2: मगर उस जमाने में कम से कम 15 से 20 बांसुरी वादक उसमें आए थे, जो कुछ मेरे से सीनियर भी थे। फिर भी मुझे पहला नंबर मिला और वो मेडल ज्ञानी जैल सिंह जी के हाथ से मिला। मजे की बात ये है कि सुनने के लिए जो श्रोता लोग आए उसमें रविंद्र जैन भी आए।
1: क्या बात है। वाह।
2: और रविंद्र जैन जी, उनके बात करने की थोड़ी शैली मैं बता रहा हूँ। सुनो, बड़ा अच्छा बजा दे जरा मेरे पास। हाँ हाँ। वो तो सूरदास थे।
1: जी जी।
2: तो हाँ, बड़ा अच्छा बजाता है। कल मेरे रिकॉर्डिंग में आ जा।
1: जी जी।
2: रिकॉर्डिंग के लिए पूरा बांसुरी का सेट होना चाहिए। 24 बांसुरी होने चाहिए कम से कम।
1: जी जी।
2: उससे ज्यादा एक दो और भी बेस का हो तो अच्छा है। डी से डी तक जाएंगे और अगर क्रोमेटिक में जाए तो 7 स्वर नहीं है, 12 स्वर है। और डी के बेस से डी के मिडिल तक आइए, डी से मिडिल से लेके एकदम जो छोटी, जो कि 4-5 इंच की डी की छोटी, जिसको मुरली कहते हैं, वहां तक का बांसुरी कम से कम आप स्टूडियो में। मेरे पास तो 3-4 ही बांसुरी, वही लेके मैं पहुंच गया।
1: और स्वर सप्तक भी कुछ होते हैं, इतने स्वर सप्तक की बांसुरी होनी चाहिए।
2: हाँ, क्योंकि जो डी बड़ा है वो मंद्र का है और डी से छोटी वाली वो मध्य है, और उसमें मध्य में जाएंगे जब ऊपर के साथ तो फिर तार सप्तक हो गया। 3 सप्तक की बांसुरियां आपके पास होनी चाहिए।
1: जी जी।
2: वो कुछ नहीं मेरे पास। मैं तो पहुंच गया रेडियो जेम्स स्टूडियो और वहां मेरे भगवान गा रहे थे।
1: किशोर दादा।
2: किशोर दादा गा रहे थे।
1: क्या बात है।

0: आंखें से पानी निकलता जा रहा है कि ये स्वर का बादशाह जिसको मैं बचपन से सुन रहा हूँ वो लुंगी कुर्ता पहन के गा रहा है मेरे सामने
1: जी, जी.
0: वो बस जहां मैं बैठा हूँ आपके सामने इतना छोटा स्टूडियो है रेडियो जेम्स
1: जी जी
0: और मेरे पास जो बैठ के तारशानाई बजा रहे थे वो थे दुखी बाबू. इंडस्ट्री में उनको दुखी बाबू कहते हैं, पूरा नाम है दक्षिणा मोहन टैगोर.
1: जी जी
0: और मैं था इतना पतला दुबला कि आप कल्पेश को देख रहे हैं ये भी मेरे सामने मोटा है.
1: जी जी जी
0: इतना पतला. आप मेरा फोटो किशोरदा के साथ देखेंगे तो मेरे वेबसाइट में है तो आप पहचान नहीं पाएंगे. आप सोचेंगे मेरा बेटा कोई है. तो वो दुखी बाबू मुझे बोले कि तू कौन है. और मेरे छाती को उन्होंने अपने हाथ से नापा, इतना बड़ा हाथ. बोले खाक तू बजाता कैसे है, तू खाना नहीं खाता है.
1: अरे
0: मैंने बोला मैं खाता हूँ. बंगाली में बोले खबर खास ना तो की शरीर रही अवस्था. पेट पूरा अंदर रहा और बहुत ही पतला था मैं. तो वो अपने घर ले गए, मछली चावल सब खिलाए. वो सोचे कि ये खाया ही नहीं है, हालांकि मैं तो खाया हुआ था मगर 17 साल के लड़के को तो फिर से खिलाओ तो फिर खा लेगा वो.
1: जी, जी,
0: मैं फिर खा लिया. वो एक होटल में रहते थे, उस होटल का नाम मुझे आज भी याद है, मानसरोवर होटल. बोले कल आ जा सुबह, तब 9 बजे का शिफ्ट होता था. और मैं सीनियर म्यूजिशियन एसोसिएशन का मेंबर तो था नहीं, तो मुझे फाइन भरना पड़ता था 10 रुपए उस जमाने में.
1: अच्छा, बहुत बड़ी कीमत थी 10 रुपए.
0: 10 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी. वो रविंद्र जैन के वहां भी फाइन लिया मेरे से और 140 रुपए पेमेंट था.
1: ओ.
0: जो काफी था, ए ग्रेड का पेमेंट मुझे दिया. ना होते हुए भी बांसुरी से इतने खुश हुए. दुखी बाबू मुझे ले गए. पहली बार मैं फिल्म सेंटर में गया और वहां पे लता जी खड़ी है, अमित कुमार खड़ा है और 100-piece ऑर्केस्ट्रा और वो 40 वायलिन सिम्फनी की तरह और चेलो और डबल बेस अपराइट बेस जिसको बोलते हैं वो सब वेस्ट इंडियन जैसे दिखते जो हैं वो डबल बेस वही लोग बजाते थे क्योंकि वो चेलो से भी और भी बड़ा साइज का होता है, खड़े खड़े जो बजाते हैं. बाद में बेस गिटार ज्यादा बजने लगा, पहले तो डबल बेस बजता था.
1: जी जी.
0: और पंचम दा ने 3 क्वेश्चन मुझसे पूछे थे. पंचम ऐसे ठहाका लगाते थे. देख किसको लाया हूँ. तू बोलता था ना हरिप्रसाद चौरसिया जी के पास टाइम नहीं है, वो क्लासिकल प्रोग्राम में बजाने लगे हैं आजकल. तो हरि जी भी नए थे और वो जो टाइम बचता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास चले जाते हैं.
1: जी जी.
0: तो ये बांसुरी वाला ही लाया हूँ मैं. पंचम दा वो फिल्म सेंटर में अंदर सचिन देव बर्मन का एक ऐसा गाल में दोनों हाथ रख के एक फोटो आज भी है ले गए. और मुझे बोले तुझे नोटेशन लिखना आता है, बंगला में बोले, तू नोटेशन लिखते जानिश. आमी बोला हाँ दादा मैं जानता हूँ. तूने बैकग्राउंड म्यूजिक कभी बजाया है. मैंने बोला नहीं, मैं तो एक ही फिल्म में बजाया, वो कल बजाया था रविंद्र जैन का. अच्छा कोई बात नहीं, तुझे राग खमाज आता है. बोले खमाज सुना दे. और जब मैंने बनारसी अंदाज से खमाज बजाया गले लगा लिए मुझे.
1: क्या बात है.

0: वाह, इसको कहते हैं साधक, साधना यही है,
1: ये है
0: जी।
1: तब मुझे उस दिन मालूम पड़ गया कि उनका फेवरेट राग खमाज है। बाद में जैसे जैसे मैं उनके साथ बजाने लगा तब मालूम पड़ा कि उनके आधे गाने तो खमाज में ही हैं।
0: जी।
1: फिर उनके सिटिंग रूम मैरीलैंड उसमें हारमोनियम में खमाज बजाया, पंचम दाने और एक गाना तैयार। ऐसे खमाज के सिद्ध पुरुष थे वो।
0: जी जी।
1: वो पीस जो पहला पंचम दाने मुझे दिया, याद आ रही है, मेरे बांसुरी से गाना शुरू होता है
0: जी।

0: Dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang, dang.
1: Qué bueno. क्या बात है.
0: मैं कैसे बजाया मेरा मन ही जानता है, क्योंकि 24 फ्लूट मेरे पास थी नहीं, और उसको मैंने कुदरती गाने का जो सुर था, ये जो पी से ये पंचम को सा करके ही बज सकता है अच्छा, क्योंकि उस तरीके का मैं सा से बजाऊंगा तो नहीं आएगा.
1: जी.
0: मेरे अंदर ना डर नहीं था, अगर मेरे सामने लता जी खड़ी है तो मैं डर जाऊंगा, ये

0: शुरू से नहीं था, जब ये पीस बजाया तो एक दिन में इंडस्ट्री में नाम हो गया।
1: क्या बात है।
0: पंचम दा मेरे पास आया, बोले तेरा सेट कहाँ है? बोले नहीं है, सेट लिए बिना आना नहीं, पहले जाके खरीदो। तो उस जमाने में मैं उनको याद कर रहा हूँ, उन बड़े लोगों को, रामचंद्र धोत्रे साहब थे। उन्होंने मुझसे बोला कि जैसे जैसे तू कमाएगा मुझे देना, पूरा सेट लेके जा। एक एक बांसुरी चुन चुन के जो सुरीला था मैंने उठाया।
1: क्या बात है, वाह।
0: और पूरा सेट जाके बॉक्स बनवाया। और पंचमदा ने RDFC लिखते थे, RD बर्मन, FC माने फिल्म सेंटर। महीने का 25 डेट मुझे मिल गया, मुझे तो चांदी हो गई।
1: वाह।
0: अरे उस जमाने में महीने में 15,000 रुपए में कमाने लगा। तो पैसे का जो मुझे सहारा मिला फिल्म इंडस्ट्री से, पिताजी चिंतित हो गए कि अब इसका

0: मुझे सहारा मिला फिल्म इंडस्ट्री से। पिताजी चिंतित हो गए कि अब इसका क्लासिकल कहीं छूट ना जाए, पैसे के पीछे लग गया है। मगर गलत साबित उनको मैंने किया। मेरी वाइफ भी जानती है और उसके आने के बाद भी वो दौर मेरा जारी रहा
1: जी,
0: जो 1980 से मैं रात को रियाज करता था। तो जो लोग कहते हैं कि सुबह का राग सुबह ही रियाज करना चाहिए, ये सब मैं मानता नहीं। रियाज जब भी करो उसका फल मिलता है
1: जी।
0: रियाज में हम अपनी गलती सुधारते हैं, प्रोग्राम में फिर हम फाइन रेडी माल जाके पेश करते हैं
1: जी।
0: एक बार माँ अन्नपूर्णा देवी, हमारी पहली गुरु माँ, रविशंकर जी की फर्स्ट वाइफ
1: गान सरस्वती,
0: हाँ गुरु माँ अन्नपूर्णा देवी से किसी ने कहा कि आप प्रैक्टिस कब करती हैं, तो माँ अन्नपूर्णा देवी बोली मेरा एक टाइम है वो सुनना चाहती हूँ। तो बोले क्यों, तुम मेरा गंदगी देखना चाहते हो, शौक है तुमको, तब तो मैं अपनी सब बुराइयों को ठीक करती हूँ, तो वो क्यों सुनना चाहते हो। प्रैक्टिस इज ए लोनली एक्सपीरियंस,
1: बिल्कुल।
0: रियाज एक अकेले में करने की चीज है, जब तक आप डूबेंगे नहीं। एक लाइन मैंने लिखी है, तू अगर खुद को खो नहीं सकता उसका दीदार हो नहीं सकता, माँ तो व्याकुल है दूध देने को, दरअसल तू ही रो नहीं सकता।
1: क्या बात है।
0: तो आपसे गुजारिश है कि आज के एपिसोड में आप याद आ रही है लोगों को सुनवा दीजिए
1: जी।

गीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म से। राजेंद्र कृष्ण हैं गीतकार और संगीतकार हैं हुसन लाल भगत राम।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज़।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए कानन देवी की आवाज में हॉस्पिटल फिल्म का गाना। इसे लिखा है पंडित भूषण ने और संगीत से सवार है कमल दास गुप्ता ने।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
3: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए मुकेश की आवाज में मेला फिल्म का गाना। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार हैं नौशाद।

0: संस्कृत भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भोले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है उमा देवी की, फिल्म का नाम अनोखी अदा।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
3: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: सोलह बरस की भई उमरिया, सोलह बरस की भई उमरिया, सोलह बरस की भई उमरिया।
1: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
2: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में बंदिश फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। धोखेबाज फिल्म का गाना, गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: नाम बुलंदी

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते

0: हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
3: अनमोल यादें,
2: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
3: अनमोल यादें
2: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के, और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में आशा फिल्म से गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का हमेरा ही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।

0: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहां पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहां पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
0: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
0: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
3: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
1: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
4: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है। मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश

0: देश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी एफएम गोल्ड और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिक्स ने कहा है कि लगातार 2 भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच

0: हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने होर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों, तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM बैंड 102.1 MHz पर ये FM सेंसिटी चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं MS धोनी इस फिल्म का गीत। अरमान मलिक की आवाज में मनोज मुंतशिर के बोल है, अमाल मलिक का संगीत।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: आइए सुनते हैं नमस्ते इंग्लैंड, इस फिल्म का गीत मदन शाह की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल हैं, मदन शाह का संगीत।

0: आइए अब सुनते हैं सूरमा, इस फिल्म का गीत दलजीत दोसांझ की आवाज में, गुलजार की बोल है शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार, जिसे हम सूर्य नगरी चैनल से रिले करेंगे।
1: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
2: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
3: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
4: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
3: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जी हाँ श्रोताओ, सभी को सुख देने की क्षमता भले ही आपके हाथ में ना हो, लेकिन एक चीज तो आपके हाथ में है, किसी को दुख न पहुंचाना। ये जब हमारे हाथ में है तो इस बात को तो हम पूरा कर ही सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात के साथ कर दिया है आगाज आपके फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का।
1: श्रोताओं, इसी के साथ अब कार्यक्रम में बात करते हैं टीम परिचय की। तो ट्रांसमीटर से हमारा साथ दे रहे हैं पारसपुरी गोस्वामी और फारूक अहमद शेख।
0: और श्रोताओं, टीम में कंट्रोल रूम से कंट्रोलिंग कर रहे हैं इंजीनियर प्रवीण कुमार। अनाउंसर ऑन ड्यूटी हैं शुभम और एफएम पर हमारे साथ हैं सोनिया देवड़ा।
1: नमस्कार, प्रोग्राम की प्रस्तुति और संयोजन किया है राजेश लामरू ने। और इसी के साथ श्रोताओं, इन सभी के साथ सूत्रधार के रूप में मैं हूं सूफिया खान।
0: और श्रोताओं, मैं हूं सीमा शर्मा।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

श्रोताओं आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई का जो दिन है बहुत कुछ अपने साथ लेकर आया है और क्या-क्या आज के दिन के इतिहास में दर्ज है आइए जान लेते हैं।

0: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि लंदन में आखिरी बार ट्रॉम जो है वो कब चलाई गई थी? जी हाँ, ये आखिरी बार चलाई गई थी 5 जुलाई और सन था 1952।
1: और साल 1996 की भी बात कर लेते हैं। आज के दिन स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने क्लोन से पैदा की थी डॉली भेड़। वैज्ञानिक जगत के लिए ये बड़ी उपलब्धि थी श्रोताओं, और इसे 7 महीने बाद यानी 22 फरवरी 1997 को दुनिया के सामने लाया गया था। साल 2004 में आज के दिन ग्रीस ने यूरो कप 2004 फुटबॉल प्रतियोगिता जीतकर इतिहास बनाया था आज के दिन।
0: श्रोताओं, जब बात चली है स्पोर्ट्स की, तो आपको बता दें कि रोजर फेडरर ने 15वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था। उन्होंने एंडी रॉडिक की को रोमांचक मुकाबले में हराया था। और दिन क्या था? जी हाँ, बात हो रही है 5 जुलाई की और सन था 2009।

0: और श्रोताओं, अब आगे भी बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आज बात करते हैं जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जी हाँ, आज 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद तेलंगाना में जन्मी पीवी सिंधु का जन्मदिन है। आपको बता दें श्रोताओं कि लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं वो। रियो ओलंपिक 2016 में शानदार प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल उन्होंने अपने नाम किया। और बात करें 2020 के टोक्यो ओलंपिक की, तो उसमें भी उन्होंने कांस्य पदक जीता था। और 2019 में BWF विश्व चैंपियनशिप में भी उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया और वो पहली भारतीय खिलाड़ी बनी थी ये स्वर्ण पदक जीतने वाली।
1: श्रोताओं, पीवी सिंधु के माता पिता जो हैं दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। पीवी सिंधु के पिता का नाम पीवी रमना, जिन्होंने 1986 के सियोल एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था, और जो माँ थी वो भी विजया, वो भी प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी। फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर पीवी सिंधु का जो रुझान है वो बैडमिंटन की तरफ क्यों हुआ। जी हाँ श्रोताओं, सिंधु ने 8 साल की उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। दरअसल माता पिता दोनों जो थे वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन पीवी सिंधु का जो रुझान था, जो लगाव था, वो बैडमिंटन की ओर हुआ पुलेला गोपीचंद की सफलताओं की वजह से। वो उनसे उतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने अपना करियर भी बैडमिंटन में चुन लिया।
0: और श्रोताओं, इन्हीं उपलब्धियों के लिए उन्हें उत्कृष्ट योगदान के लिए खेल के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान जैसे राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

और श्रोताओं जयंती विशेष पर आज हम याद कर रहे हैं प्रसिद्ध तैराक रहे सचिन नाग जी को। 5 जुलाई 1920 को जन्मे सचिन नाग ने साल 1951 के पहले एशियाई खेलों में इन्होंने तैराकी में 100 मीटर फ्री स्टाइल का स्वर्ण पदक जीता था श्रोताओं। और 1951 में एशियन गेम्स में 300 मीटर मेडले रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। बात की जाए 1948 और 1952 के ओलंपिक में उन्होंने वाटर पोलो टीम के ये सदस्य रहे थे और श्रोताओं साल 1987 में इनका निधन हो गया था।

0: श्रोताओ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जौनपुर की माटी के लाल प्रख्यात डीएनए वैज्ञानिक डॉक्टर लाल जी सिंह विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनकी जीवनी युवाओं की रोल मॉडल है। उन्हें भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पिता माना जाता है। फॉरेंसिक साइंस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है। श्रोताओं, उनका जीवन सतत विकास यात्रा का एक ऐसा दर्पण है जो समय समय पर लोगों की प्रेरणा का स्रोत बना है। ग्रामीण परिवेश से निकले इस मेधा ने न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जौनपुर के सिकरारा विकास क्षेत्र के कलवारी गांव में इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1947 को।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

श्रोताओं, अब 9 बजने वाले हैं और आप जानते हैं कि यहाँ हम रुकते हैं न्यूज़ ब्रेक के लिए। आपसे फिर मिलेंगे प्रोग्राम में 9:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू, 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा की बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की और प्रदेश में मॉनसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में हर वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: गौरतलब है कि ये भारत का तीसरा

0: बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट है। इससे पहले 28 फरवरी को पहला और 31 मार्च को दूसरा प्लांट शुरू हुआ था। कैबिनेट में 12 प्लांट स्वीकृत किए गए थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल गैस या खनिजों के लिए औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया है। श्री मोदी ने कल जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन के दौरान इस योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट के साथ शुरू की गई ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि ये योजना 100 से ज्यादा नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में मदद करेगी, जिससे लाखों लोगों के लिए किफायती हवाई यात्रा का सपना साकार होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। बालोतरा में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करते हुए सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी।
1: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए। वो दूसरी बात है, 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कल उदयपुर शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई जा रही देवास पेयजल परियोजना स्थल का दौरा किया। उन्होंने निर्माणाधीन टनल और बांध कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टनल निर्माण स्थल पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास का संदेश दिया। उदयपुर के भविष्य की जल सुरक्षा के लिए इस परियोजना को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इसके पूरा होने से उदयपुर शहर को लंबे समय तक स्वच्छ और पर्याप्त पीने का पानी उपलब्ध होगा। साथ ही पिछोला फतेह सागर झीलों के जलस्तर को बनाए रखने में भी ये परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि इससे प्याज की खेती करने वाले किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों को भी सहायता मिलेगी। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। मंत्रालय ने बताया कि देश में प्याज का पर्याप्त स्टॉक है। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। 13 अगस्त तक चलने वाले मॉनसून सत्र के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रदेश में भीषण गर्मी के बाद मॉनसून की दस्तक के साथ ही मौसम जनित बीमारियों के बढ़ने से चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। डेंगू जैसी बीमारियों से बचाव के लिए राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनमें आमजन को जागरूक करने के साथ ही अस्पतालों में भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि यहां जांच करें, सफाई करें और ढकें थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर पहुंचकर लार्वा सर्वे और जन जागरूक गतिविधियों के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जा रहा है।
2: जिले में जुलाई माह को डेंगू रोकथाम माह के रूप में मनाया जा रहा है। जांच

0: करें, सफाई करें और ढकें। थीम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू नियंत्रण और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर पानी की टंकियों, कूलरों, ड्रमों, गमलों, फ्रिज की ट्रे, पुराने टायर और अन्य जल भराव वाले स्थानों की जांच कर लार्वा नष्ट कर रहे हैं। साथ ही आमजन को स्वच्छता बनाए रखने, पानी जमा नहीं होने देने और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून की दस्तक अब पश्चिमी जिलों तक पहुंच रही है। कल बाड़मेर के चौहटन और गडरा रोड इलाके में तेज बरसात हुई। इसके अलावा बायतू, रामसर और धनाऊ क्षेत्र में हल्की से मध्यम बरसात होने के समाचार हैं। जैसलमेर में हुई तेज बरसात से आमजन को गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में राज्य के कुछ और भागों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में आगामी 4-6 दिन मॉनसून सक्रिय रहने और अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की चेतावनी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा आज प्रदेश भर में दो पारियों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संचालन के लिए जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा का पहला चरण सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरा चरण दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने, प्रवेश पत्र और वैध फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लाने तथा परीक्षा संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू। 28,840 करोड़ रुपए से ज्यादा बजट की ये योजना शहरों में हवाई संपर्क को मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की और प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हिंदी में प्रादेशिक समाचारों के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में।

श्रोताओं, हम याद कर रहे हैं आज प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता जिनके योगदान को भारतीय सिनेमा कभी भुला नहीं पाएगा। हम बात कर रहे हैं बीएन सरकार की। 30 के दशक में उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी श्रोताओं, और इसके बैनर तले उन्होंने दो मूव फिल्मों का निर्माण किया। फिल्में थी चासर में और चोर कांता, और इनके द्वारा हिंदी फिल्मों इनके द्वारा जो निर्मित हिंदी फिल्में हैं, अगर उनके बात करें तो उनमें हैं विद्यापति, बड़ी दीदी, मुक्ति और चंडीदास। भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें दूसरे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1970 से नवाजा गया था।

0: श्रोताओं, 5 जुलाई 1931 को मध्य प्रदेश के खंडवा में जन्मे शरद पगारे, जी हां, हिंदी साहित्य का जाना माना नाम। इन्होंने अपना जीवन ही इतिहास की रूमानी कथाओं के नाम कर दिया। उनकी कृतियों की अगर हम बात करें तो गंधर्व सेन, गुलारा बेगम, उजाले की तलाश, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह अगर हम देखें तो संध्या तारा, एक मुट्ठी ममता, नारी के रूप, भारतीय इतिहास की प्रेम कहानियां हैं। जी हाँ, 5 जुलाई अपने साथ बहुत सारी शख्सियत जो हैं उनको साथ लाई है। प्रोग्राम में आगे सबके बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां

0: लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब पुण्यतिथि के अवसर पर हम याद कर रहे हैं स्वाधीनता आंदोलन के योद्धा, राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री रहे अनुग्रह नारायण सिंह जी को। इन्हें आधुनिक बिहार के निर्माताओं का जनक माना जाता है और इन्हें कहा भी जाता है आधुनिक बिहार के निर्माता। स्वाधीनता के बाद राष्ट्र निर्माण

0: और जन कल्याण के कार्यों में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया था। साथ ही इन्होंने महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई थी।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, उसी क्लिक में, अरे वाह!
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
5: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
4: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
5: सच?
4: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
5: समझ गया।

और श्रोताओं कार्यक्रम में बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की। बिल्कुल अपने सबसे रोमांचक नॉकआउट चरण यानी राउंड ऑफ 16 में है और जहां 48 में से अब केवल चुनिंदा टीमें जो हैं वो बची है। और अभी तक की बड़ी अपडेट्स की अगर हम बात करें फीफा विश्व कप की, तो आज सुबह ही फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है। और आज रात के महामुकाबले की बात करें यानी भारतीय समयानुसार 1:30 बजे से देर रात, तो वो होगा ब्राज़ील बनाम नॉर्वे और मेक्सिको बनाम इंग्लैंड के नॉकआउट मैच जो है वो खेले जाएंगे।

0: श्रोताओं, आज संडे है और आपको रहता है जिस स्पेशल सेगमेंट का इंतजार, वो है मेहमान का रविवार। तो बिल्कुल है तैयार आज का मेहमान का रविवार। और खास हो जाता है आज का मेहमान का रविवार क्योंकि आज श्रोताओं बात फोन से नहीं होकर बातें होंगी लाइव। जी हाँ, आज की जो हमारी शख्सियत है वो है हमारे साथ स्टूडियो में और जिनका संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, शिक्षा, अनुशासन और युवा सशक्तिकरण को समर्पित रहा है। जी हाँ श्रोताओं, आपको बताएं कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका संपूर्ण जीवन जो है इतनी तरह तरह की जो विधाएं हैं उनमें समर्पित रहा है। भारतीय सेना में लगभग 39 वर्षों तक उत्कृष्ट सेवा देने के बाद भी जिनकी ऊर्जा, प्रतिबद्धता और समाज के प्रति समर्पण आज भी उसी उत्साह के साथ जारी है। जी हाँ, हमारे साथ हैं कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह मानव जी। डॉक्टर बलदेव सिंह मानव जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।
0: बिल्कुल आत्मीय स्वागत और हार्दिक अभिनंदन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका।
0: सर, जो मेहमान का रविवार है, हमारे श्रोता जो हैं बहुत इंतजार करते हैं इस प्रोग्राम का। और एक सैनिक होने के साथ साथ श्रोताओं, आपको मैं बताऊं कि आप एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, प्रेरक, वक्ता, लेखक और आजीवन विद्यार्थी भी हैं। शिक्षा में डॉक्टरेट, मानवाधिकार में एमफिल, अनेक उच्च शैक्षणिक उपाधियां और राष्ट्रीय स्तर के सम्मान उनकी बहुआयामी प्रतिभा जो है उसका परिचय देते हैं। देश विदेश के विद्यालय और महाविद्यालयों में उनके 500 से अधिक प्रेरक व्याख्यान अनगिनत युवाओं के जीवन में नई दिशा और नया आत्मविश्वास लेकर आए हैं। तो आप समझ गए हैं कि आज की जो हमारी शख्सियत है उनके रविवार के बारे में जानने के लिए आप हम सभी बहुत उत्सुक हैं। तो सर, ये जो मेहमान का रविवार जो हमारा सेगमेंट होता है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि आप जैसी शख्सियत के रविवार को स्पेशल क्या क्या चीजें हो जाती हैं उसके बारे में जाने। तो हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि किस तरीके से आप अपने संडे को स्पैन करते हैं।
1: यस सीमा जी, आपने बहुत ही एकदम अच्छा सवाल पूछा। जो लोग हम इस प्रकार की सरकारी सेवा के अंदर में, जैसे पहले हम सेना में थे और अभी सेना के रिटायरमेंट के बाद में राज्य सैनिक बोर्ड के अंदर में, जैसे हमारा अपॉइंटमेंट हुआ, मैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी हूँ, तो सरकारी सेवा के साथ साथ में संडे जो होता है हमारे लिए एक स्पेशल डे होता है, जिसके अंदर में हम उन सरकारी सेवाओं की जो ड्यूटी होती है उसको छोड़ करके अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति।

0: दोस्तों के प्रति जो एक हमारा एक सामाजिक दायित्व होता है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरह से रेस्ट एंड रिकूप का डे भी है और ये एक तरह से हमारे जो नीर एंड डीर के साथ में कनेक्ट होने का भी डे है।
1: जी बिल्कुल।
0: और इसके साथ साथ में मैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, जैसे एक है नारायणपुर यूथ सोसाइटी, तो यूथ सोसाइटी अपना काम करती है इस एक प्रकार, और दूसरा हमारा एक खुद का हमारे पिताजी के नाम से हम एक एनजीओ बना रखा है नैनजी फाउंडेशन ट्रस्ट।
1: अच्छा।
0: और एक हमारे पास में हमारे गांव के पास में एक दूसरा गांव है बम्बोर, वहां पे एक रक्तवीर मानव सेवा समिति बनी हुई है। तो तीन ये बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके जो अपनी फैमिली और दूसरे कामों को जब हम कर देते हैं तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम करने होते हैं वो भी हम मोस्टली संडे को ही ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि उन दिनों के अंदर में जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनको भी संडे को ही थोड़ा टाइम
1: मिल पाता है।
0: तो इस तरीके से हम करते हैं। बच्चे हमारे दिल्ली में रहते हैं, मेरे सन डॉटर बोथ एंड मेरे जो नेफ्यूज हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के साथ भी कनेक्ट होना होता है तो भी संडे को हो पाते हैं।
1: एक प्रॉपर उनको भी गाइड करना जरूरी है सर, तो वो गाइडलाइन आप संडे को जो समय है उसमें देते हैं।
0: यस, वो देते हैं। माता जी हैं हमारे, अभी पिताजी का तो स्वर्गवास 2023 में हो गया था, पर माता जी के साथ बैठते हैं, भाई के साथ बैठते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, कभी कभार बहनों को समय होता है तो उनको बुला लेते हैं।
1: बहुत बढ़िया।
0: कभी कभी कभार हमारे और जो नियर एंड डियर रिलेटिव्स हैं उनको बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। और ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप परिवार के अंदर में मेल मिलाप और प्यार बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल राइट।
0: जो आज की दुनिया बहुत मेटलिस्टिक होती गई है और समाज के अंदर में जो है ईर्ष्या द्वेष वगैरह बहुत ज्यादा पनपता जा रहा है, हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं, तो ये एक ऐसा दिन है कि हमको एक प्यार जो है वो बढ़ाना चाहिए, वो चाहे विद इन फैमिली मेंबर हो, विद इन सोसाइटी हो, विद इन फ्रेंड सर्कल हो, उसको बढ़ाते रहना चाहिए और वो जिंदा रहेगा, वो एनवायरमेंट अच्छा होगा, खुशी रहेगी, खुशियां खुद खुश रहोगे तभी दूसरों को खुश रख पाओगे और तभी से आपका वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा होगा और वही हमारी एक मानव जीवन की सार्थकता है कि यदि अल्टीमेट एम हर एक आदमी का खुश रहना होता है और हम पैसे कमाते रहे अपने काम में डूबे रहे और खुश नहीं अपने आप को कर सके तो फिर
1: जीने का भी मतलब नहीं,
0: पैसे का भी मतलब नहीं है और जीने की भी कोई सार्थकता नहीं होती है। तो वो इस प्रकार के काम हम करते हैं। पर्यावरण मुझे बहुत प्रेम है तो पर्यावरण के प्रति भी किसी प्रकार का या किसी कोई संगठन कोई मेरे को बुलाना चाहता है तो काफी जगह भी बुलाते हैं, तो उनको भी कहता हूँ कि भाई आप मेरे वर्किंग डेज के सिवाय संडे को प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करो तो मेरे लिए आना इजी रहता है। तो इस प्रकार से एक वर्क और फैमिली लाइफ के बीच में जो बैलेंस करना होता है, सोशल लाइफ के साथ में जो बैलेंस करना होता है, संडे मेरे लिए वो बैलेंस करने का दिन होता है।
1: क्या बात है सर। सर बहुत मतलब कहते ना कि क्वेश्चन जो था सिर्फ एक लाइन का था, लेकिन आपने जिस तरीके से हर स्टेटमेंट में एक पॉजिटिविटी झलक रही थी, आपने रिश्तों की बात की वहां भी बहुत पॉजिटिविटी थी, आपने एनवायरमेंट की बात की, आपने अपनी अवेलेबिलिटी की बात की, तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंस आप बना रहे हैं सोशल लाइफ की और वर्किंग को लेकर के, ये बिल्कुल हमारे जो श्रोता है इस चीज से खुद भी इसको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश जरूर करेंगे। सर श्रोताओं आपको बताऊं, हमारे साथ कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह जी मानव हैं। तो सर यहाँ ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ, ये जो आपके नाम के साथ एक उपनाम जो मानव लग रहा है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी जरूर है, कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे, आप प्लीज बताएं उन्हें।
0: जी जी मैम, बिल्कुल आपने सही आइडिया लगाया कि जनरली मानव टाइटल होता नहीं है, किसी का जाति के ऊपर टाइटल होता है, किसी का धर्म के ऊपर मैं होता है, या अलग अलग जो जिस प्रकार के टाइटल होते हैं वो लगाते हैं। बट मैं शुरू से पढ़ने में ठीक था मैम, और किताबें पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। तो किताबें पढ़ते पढ़ते मेरे को और प्रकृति के प्रति प्रेम हो गया।
1: हाँ जी।
0: तो मैंने ये सोचा कि जो प्रकृति है ये ओरिजिनल है और हम सभी को अपने आप को प्रकृति के साथ अलाइन करके जीना चाहिए।
1: क्या बात है।
0: जैसे प्रकृति का एक छोटा सा उदाहरण दूं, प्रकृति में सूर्य है, ये धूप देता है तो पूरे के पूरे सब लोगों को देता है, वो धर्म

0: जाति, रीजन
1: जी
0: या
1: जी
0: कंट्री या किस प्रकार के किसी के
1: कोई
0: साथ में
1: भेदभाव
0: कोई
1: नहीं
0: भेदभाव
1: करता,
0: नहीं करता।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हवा चलती है तो वो
1: जी,
0: सबके लिए चलती है,
1: बिल्कुल
0: और बारिश आती है तो सबके
1: सबके
0: लिए
1: लिए
0: आती
1: आती है,
0: है,
1: बहुत बढ़िया
0: पेड़
1: आपने
0: ऑक्सीजन देते हैं तो सबको देते
1: जी
0: हैं। तो हमको, हम जब ईश्वर के घर से, जब धरती के ऊपर में एक मानव के रूप में, इंसान के रूप में ही सबसे पहले
1: जी
0: पैदा हुआ है,
1: बिल्कुल
0: वही हमारी एक ओरिजिनलिटी है, और वो मानवता जिंदी रहेगी तभी इंसान ही जिंदे रह पाएंगे।
1: क्या बात है सर,
0: मानवता यदि जिंदा नहीं है तो इस धरती के ऊपर में कैओस आ जाएगा, और हम जो है, जो हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए
1: जी
0: वो एनवायरनमेंट नहीं रह पाएगा।
1: क्या बात है सर, मतलब जो आप कह रहे हैं वो दिमाग में एक एक शब्द जो है इस तरह से छप रहा है, और सुन के, और कहते ना कि दिल के बहुत करीब जो बात थी बिल्कुल स्पष्ट और रियल बात थी,
0: यस मैम,
1: और जब उसको अपन ने अपने अंदर भी लिया तो कहीं ना कहीं ये जुड़ाव हमारा भी आपकी बातों के साथ होता जा रहा है सर। सर ये जो आपने अपने टाइटल की बात बताई, सच में बहुत ग्रेट चीज़ थी और बहुत ही अच्छी चीज़ थी। हमारे श्रोता एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे आप एक सैन्य अधिकारी के तौर पर आपने कार्य किया है सर,
0: जी मैम,
1: और श्रोताओं आपको मैं बता दूं सर के बारे में कि मद्रास रेजिमेंट से आपने अपने सैन्य जीवन की शुरुआत की थी सर,
0: हाँ जी मैम,
1: और वहाँ से आपने देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं दी, और श्रोताओं एनसीसी की जो बटालियन है उनका आपने सफल नेतृत्व किया, गणतंत्र दिवस दिवस की जो परेड होती है
0: जी
1: उसके
0: मैम,
1: लिए आपने कैडेट्स को ट्रेन किया, नेपाल में सार्क युवा विनिमय कार्यक्रम हुआ था,
0: हाँ, यूथ एक्सचेंज
1: यूथ
0: प्रोग्राम होता है।
1: एक्सचेंज प्रोग्राम, यस सर,
0: यस मैम,
1: उसमें भारतीय युवा दल का आपने नेतृत्व किया था, और ये करके आपने देश का गौरव बढ़ाया था, और श्रोताओं हजारों युवा जो हैं आपके अपने व्यक्तित्व निर्माण में सर को रोल मॉडल मानते हैं। तो सर ये जो यूथ के प्रति आपका प्रेम है,
0: जी मैम,
1: तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या हमारी यूथ से आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे।
0: मैम, आप हल्का सा, मैं आपको करेक्शन करना
1: जी
0: चाहूँगा इसके
1: जी
0: अंदर में।
1: बिल्कुल
0: मैं मद्रास रेजिमेंट में जब ज्वाइन किया तो मैंने एज ए कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन किया,
1: ओके जी
0: बट
1: जी
0: मैंने
1: जी
0: इनिशियली जो ज्वाइन किया था वो आर्मी एजुकेशन कोर में ज्वाइन किया था।
1: अच्छा
0: आर्मी
1: जी जी जी
0: एजुकेशन
1: जी
0: कोर में सर्विस करने के बाद मैंने फिर कमीशन लिया,
1: अच्छा
0: वो एक कमीशन्ड ऑफिसर बना।
1: जी सर
0: तो वो, मैं एक जवान था और मैं आर्मी एजुकेशन कोर में एक जवान के तौर पे, एक टीचर के तौर पे हम
1: आपने लिया
0: सेना में
1: था
0: ज्वाइन किया।
1: जी सर।
0: तो वहाँ हमारे पास लाइब्रेरी होती है एजुकेशन कोर के पास में,
1: राइट
0: तो मेरा पढ़ने में पहले से
1: पहले
0: ठीक
1: से
0: था और
1: आपका
0: मेरा लाइब्रेरी एक अच्छा रिसोर्स मिल गया जिसके अंदर में
1: जी
0: कोई पैसा ही खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो पढ़ते पढ़ते मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट हो गया और
1: और
0: मैंने
1: बढ़िया
0: हायर सेकेंडरी करके गया था यहाँ से।
1: जी
0: आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं थी तो हायर सेकेंडरी करके मैंने फौज ज्वाइन कर ली। बट वहाँ जाने के बाद में मैंने एजुकेशन कंटिन्यू की, और एजुकेशन कंटिन्यू करते करते, जैसा कि आपने बताया, मैंने तीन
1: जी
0: चार सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन की, पांच सब्जेक्ट में पीजी डिप्लोमाज
1: जी
0: किए,
1: सर,
0: एम फिल की,
1: एम फिल किया,
0: डॉक्टरेट भी एजुकेशन
1: डॉक्टरेट भी
0: में
1: आपने
0: की।
1: एजुकेशन में किया,
0: तो
1: राइट।
0: मेरे को ये, मतलब, एक महसूस हुआ कि महसूस, और वो एक रियलिस्टिक भी है जो
1: जी
0: कि
1: सर
0: अखबारों से पढ़ते हैं या इधर टीवी में देखते हैं, कि यूथ किसी भी कंट्री का,
1: जी सर
0: वो उस कंट्री के लिए एक बैकबोन होता है।
1: बिल्कुल
0: मतलब जैसा आज का यूथ है, कल की सोसाइटी वैसे ही होगी।
1: जी
0: आज वो दिखने के लिए यूथ है बट कल का वो डिसीजन मेकर है।
1: राइट सर बिल्कुल
0: और एक बड़ी, मतलब, स्पष्ट बात है ये कि क्वालिटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बी इट फैमिली और सोसाइटी, कंट्री या किसी का भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है द क्वालिटी ऑफ पीपल,
1: पीपल
0: जो लोगों
1: राइट
0: की क्वालिटी कैसी
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल
0: उसके ऊपर निर्भर करती
1: बहुत
0: है।
1: सही सर
0: तो अब लोगों की क्वालिटी किस पे निर्भर करती है, कि उन लोगों ने किस प्रकार की तालीम हासिल की या किस प्रकार का माहौल मिला उनको, या उन्होंने किस प्रकार का एटीट्यूड डेवलप किया, या
1: जी
0: उस प्रकार की, किस प्रकार की धारणा के साथ में वो बड़े होते
1: बड़े हुए
0: हैं,
1: हैं
0: कंसेप्ट डेवलप करते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए मेरे को लगा कि यदि मैं एजुकेशन, मेरी एजुकेशन को सही तरीके से,
1: जी
0: सार्थक तरीके से सोसाइटी में यूज करना चाहूँ, मैं सोसाइटी को पे बैक करना चाहूँ, मैं
1: जी सर
0: कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, तो मुझे यूथ को टारगेट करना चाहिए।
1: क्या बात है बिल्कुल
0: और इसलिए मैंने यूथ के प्रति जो मैंने हुआ, मेरा एनसीसी में पोस्टिंग भी लकीली हो गया जहाँ पे यूथ के साथ ही डील करना
1: डील
0: होता है।
1: करना था
0: तो मैंने तीन एनसीसी बटालियन को कमांड किया,
1: जी
0: एक कश्मीर वैली के अंदर में थी,
1: जी
0: दूसरी बिहार झारखंड
1: बिहार
0: में थी,
1: झारखंड में थे
0: और तीसरी जो मैं जस्ट रिटायरमेंट से जस्ट पहले 3 साल तक मैं जोधपुर के अंदर में था, तो यहाँ बहुत सारे यूथ कॉन्टेक्ट में आए, फिर

0: यूथ कॉन्टेक्ट में आए, तो उनके साथ में वर्कशॉप वगैरह डेवलप किए। फिर जब एनसीसी के माध्यम से इतने सारे स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स के साथ में ऐसे जान पहचान हो गई, तो अलग अलग स्कूल्स के अंदर में इन्विटेशंस मिलते रहे, तो वहाँ जा करके वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करता, उनका पर्सनली डेवलपमेंट करता रहा, उनके एटीट्यूड के ऊपर मैं काम करना, इंटरेस्ट कैसे वो करें। तो ये एक मैंने पाया है कि यदि हमको मतलब कंट्री को बहुत बढ़िया कंट्री बनाना है, कंट्री को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाना है, तो हमको आज के यूथ के ऊपर में फोकस करना चाहिए। सोसाइटी के अंदर में सोसाइटी पैसे के पीछे भागती जा रही है, हम पूरे पूरे लोग मेटलिस्टिक बन गए हैं, और हम अच्छा इस प्रकार की कोई भी चीजें होती है तो हर सोसाइटी में, एक सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर में कहीं ना कहीं किसी किसी के ऊपर में कहीं पोलिटिकल प्रॉब्लम है, कहीं कास्ट के ऊपर में है, रिलीजन के ऊपर में है, कहीं अपर्थर्ड है, कहीं पे काले गोरे का भेदभाव है। तो इसके अंदर में हम अपनी रेस्पेक्टिव कंट्रीज को यदि सही मायने के अंदर में सही एटीट्यूड डेवलप करवा करके सबके भले के अंदर में अपने भले वाला यूथ तैयार कर सकें, जो सबके लिए काम कर सकें, तो मैं समझता हूं कि कंट्री बहुत मजबूत होगी। हम एक मिलिट्री के अंदर में कहावत है मैम कि इट इज नॉट मशीन बट मैन बिहाइंड द मशीन विंस द बैटल। मतलब मशीनों से युद्ध नहीं जीता जाता है, वो युद्ध जो जीता जाता है वो उसके मशीन के पीछे जो एक सोल्जर जवान बहादुर सिपाही बैठा हुआ है, वो उस वेपन को किस तरीके से उपयोग में कर रहा है, वो उसके अंदर में कितनी बहादुरी है, उसके अंदर में क्या स्किल है, उसके अंदर में क्या उसका मतलब वो उसका एक इंटेलिजेंस क्या है कि वो किस जगह पे कितना वेपन यूज करे, कहाँ पे उसको चलाए, उसी के ऊपर में युद्ध के अंदर में निर्णायक मोड आती है। तो अब इसे हम मिलिट्री के अंदर में हमेशा कहते हैं कि मैन बिहाइंड दी वेपन, इसका मतलब मैन कौन है, ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन है। तो मानव संसाधन जिस कंट्री का बेटर होगा वो कंट्री हमेशा प्रोग्रेस करेगी। और इसलिए मैंने यूथ को हमेशा टारगेट करता हूँ कि यूथ के अंदर में उसके एटीट्यूड को, बुजुर्गों के बजाय उसको एटीट्यूड को, या उसकी फॉर्मेटिव एज होती है उसके उसके अंदर में उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान होता है, इसलिए उनको टारगेट करता हूँ।
1: सर अप्रोच जो आपने दी है बहुत ही तगड़ी है और बिल्कुल सटीक है। और श्रोताओं हमारे साथ हैं कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह जी मानव। सर यहाँ पे एक मिनट के लिए मैं आपको दिल में एक क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि जितनी बातें आपने कही सर बिल्कुल सही, और बिल्कुल एक भी बात को हम नकार नहीं सकते हैं, एक भी बात पे हम कोई भी ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते हम, लेकिन दिल ये कहता है कि कहीं ना कहीं जो संडे है उसमें आपने यूथ को आपने जो है टारगेट किया, और कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करने के लिए, या फिर आप खुद भी कई बार ऐसा होता है ना सर कि हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स मोड पे लाने के लिए कुछ ना कुछ म्यूजिक का भी सहारा लेते हैं, तो क्या यूथ को भी मोटिवेट करने के लिए कोई सॉन्ग आपके दिल में आता है, या कोई ऐसा सॉन्ग जो आपके दिल के करीब हो?
0: ये जो हम सब भारतीय हैं, एक एनसीसी का सॉन्ग है जो एनसीसी के कैंप के अंदर में हम बार बार बजाते हैं और उनको गाना सुनाते हैं बच्चों को, कि उनके अंदर में भारतीयता का
1: भाव जो है जागृत हो,
0: और भारतीयता का भाव जागृत होगा तो भारतीयता का भाव वसुदेव कुटुंबकम वाला भाव है,
1: क्या
0: और
1: बात है?
0: हम पूरे वर्ल्ड के साथ में, पूरे एनवायरनमेंट के साथ में, सोसाइटी के साथ में, सोसाइटी के सब तबकों के साथ में तालमेल करके नेशन को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, वो गाना मेरे को बहुत ही प्यारा है।
1: सर इस गीत के नाम से ही आपके चेहरे पे जो मुस्कान आई है उस मुस्कान को थोड़ी देर और रहने देते हैं, और ये जो गीत जो आपके दिल के करीब है थोड़ा सा हम अपने श्रोताओं को भी सुनवाते हैं और आपको भी।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेहमान का रविवार और आज मेहमान का रविवार में जो हमारे साथ शख्सियत हैं कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह जी मानव और बातचीत चल रही है श्रोताओं आप सुन रहे हैं अभी आपने उनकी पसंद का गीत भी सुना और कहीं ना कहीं बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग था जब अपन ऐसे सॉन्ग सुनते हैं सर तो दिल में ना वो एकदम से कहते रोंगटे भी खड़े होते हैं और दिल में वो एक अलग ही भाव आ जाता है
1: राष्ट्र प्रेम
0: जी
1: नेशन फर्स्ट
0: सर आपकी जो हमने और भी चीज़ें सुनी हैं आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं कि आप जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं यूथ को तो मोटिवेट करते ही हैं आप सामाजिक कुरीतियों पे भी बहुत काम करते हैं किस तरीके से नशा मुक्ति है मृत्यु भोज है इस तरह की
1: चाइल्ड मैरिज है
0: इन पर भी आपने काफ़ी काम किया है तो हमारे श्रोताओं को बताएं इस बारे में
1: हाँ जी मैम मैं हमारे खास करके ये जो वैसे तो पूरे भारत के अंदर में ही डिफरेंट प्लेसेस के अंदर में डिफरेंट तरह की कुरीतियाँ होती हैं बट हमारा दायरा इतना बड़ा तो नहीं है मैम बट हमारा जो वेस्टर्न राजस्थान है जिसके अंदर में जो दो तीन कुरीतियाँ जैसा कि आपने अभी बताया
0: हाँ जी।
1: एक चाइल्ड मैरिज है कि ये नशा की जो प्रवृत्ति अफीम वगैरह जो रवान करते हैं या मनोहार करते हैं वो है और मृत्यु

0: मृत्यु भोज।
1: अब इसके लिए फिर मैं जब इस प्रकार की चीज़ें मैं बताया आपको कि जब पढ़ता था तो किताबों के माध्यम से ही और हमारे जितने भी प्रेरक थे उनके माध्यम से हमें ये लगा कि मृत्यु भोज बहुत बुरी चीज़ है
0: जी।
1: मतलब अपन किसी की मौत हुई है और उसी जगह पे घर के अंदर में रोना धोना चल रहा है, वहां से बहन बेटी आती है तो उनका रो रो के बहुत बुरा हालत हो जाता है और घर के दहलीज पे आते आते वो गिर जाती है, लोग उनको उठा करके घर में मुश्किल से लेके जाते हैं और ऐसे एनवायरमेंट के अंदर में भी आप पास में बैठ करके आप हलवा पूड़ी खाते हो और 5 पकवान खाते हो और लड्डू खाते रहते हो तो मुझे मतलब ये बहुत बुरा लगता है।
0: जी सर।
1: और मुझे लगता है कि हमारी मानवीय संवेदनाएं मर चुकी है यदि हम इसके रोने धोने के ऐसे माहौल के अंदर में भी हम मीठा भोजन कर लेते हैं तो इसका मतलब हमारी मानवीय संवेदनाएं जीरो हो चुकी है, मर चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: हमें उस आदमी के दुख दर्द के अंदर में हमें कोई परवाह नहीं है और वो बेचारा गरीब आदमी गांव का आदमी कहीं का भी मतलब वो उधार के पैसे ला करके वो बनवा रहा है क्योंकि उसके ऊपर में सोसाइटी का प्रेशर है। वो कहीं ये सोच ले कि लोग क्या कहेंगे या लोग ताने मारेंगे, कल तुम्हारे माँ बाप के पीछे कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, हमारा खा करके बैठ गए, तो ये जो जो प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर में ये खत्म होनी चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सोसाइटी इस चीज को बैन कर दे कि भाई मृत्यु भोज होगा ही नहीं। अच्छा, वो सोसाइटी लेवल के ऊपर में बैन करवाना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि मैं नहीं खाऊंगा, तो पिछले 40 साल से मैं मृत्यु भोज नहीं खाता हूं। कहीं पर भी मौत होती है तो मैं किसी प्रकार का भोजन नहीं करता हूं क्योंकि वह मीठा बनता ही बनता है
0: जी।
1: अब मीठा भोजन होता है वो खुशी का प्रतीक होता है, कहीं पर भी कोई खुशी होती है तब मिठाइयां बढ़ती है और मौत जो है दुख है तो दुख के अंदर में मीठे भोजन का कोई औचित्य नहीं है और वहां मौत के ऊपर में ये पैसे का जो घमंड दिखाने का कि मैं इतना पैसा और मैं इतना लोगों को बुला के खाना खिला सकता हूँ या मैं इतने पकवान बना करके लोगों को खिला सकता हूँ तो मैं समझता हूँ ये एक निरी मूर्खता है। पैसे का घमंड एटलीस्ट ऐसे दुख के टाइम के अंदर में शोक के समय तो पैसे का घमंड नहीं दिखाएं तो वो बेटर होगा। तो मौत है, सादगी रहनी चाहिए, सिंप्लिसिटी रहनी चाहिए। आए हमने किसी के साथ में दुख दर्द को बांट लिया और अपना वहां से जो भी चाय पानी होती है वो करके और उनको मतलब सांत्वना दे करके वहां से निकल गए। तो इसलिए पहले तो मैंने खुद ने खाना छोड़ा, फिर मेरी बारी आई, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया 2023 में
0: जी।
1: तो अब मैंने सोचा कि यदि हम मृत्यु भोज करते हैं तो आज तक तो मैंने खाया नहीं और इसके अगेंस्ट में बोलता ही आया हूँ, इसके मृत्यु भोज के अगेंस्ट में मैंने कई सारे आर्टिकल भी पब्लिश किए हैं अपने लिख करके,
0: सारे आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी
1: जी, जी, जी, जी तो पब्लिश किया। तो हमारे घर के अंदर में मेरा छोटा भाई है वो पढ़ा लिखा पोस्ट ग्रेजुएट है तो भाई से बातचीत किया तो भाई मेरे साथ में रॉक सॉलिड खड़ा हो गया। उसने कहा कि भाई बिल्कुल ये कुरीति है, इसको यदि खत्म करना चाहते हैं तो हमको हमारे घर से ही खत्म करनी चाहिए। और मैं तो खैर बाहर सर्विस करता था 40 साल से पर भाई तो गांव में रहता था तो भाई के लिए ये निर्णय लेना बहुत मुश्किल था, कठिन था, बट वो समझदार है और वो भाई मेरे को बहुत प्यार करता है, सम्मान देता है तो मेरी बातों को मान करके मेरे साथ में रॉक सॉलिड खड़ा हो गया और हमने मृत्यु भोज
0: नहीं किया।
1: मतलब जिस समाज के अंदर में आसपास के अंदर में अफीम चल रहा हो, नशे चलते हो मौत के ऊपर में और वहां पे मिठाइयां बनती हो और उसमें एकदम बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं हो तो एक समाज के लिए बहुत बड़ा एक तरह से वो
0: अलग देने वाली बात
1: हो जाती है। तो 26 जनवरी को 2023 को जब हमने नहीं किया तो इसकी जो खबर है वो चारों तरफ में फैल गई तो ये नशे के अगेंस्ट में भी काम करता हूँ और चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में भी लोगों से बातचीत करता हूँ, लेक्चर देता हूँ, स्कूल कॉलेजेस में जाता रहता हूँ।
0: सर एक और, क्योंकि जो समय है वो आपकी बातें सुन के हम उसमें रवानी में बहते जा रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन और दिल में आ रहा है कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के तौर पर कर्नल बलदेव सिंह जी मानव जो है उन्होंने बहुत कार्य किए हैं,
1: तो बहुत तो नहीं किए ऐसा तो कुछ
0: इस
1: नहीं
0: बारे
1: है।
0: में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें आप।
1: हाँ जी, मैं अभी मेरे को एक साल से और कुछ महीने हुए हैं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सिरगढ़ लगा हूँ। तो मेरा यही एक उद्देश्य रहता है कि रिटायर होने के बाद में गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है रिटायर्ड हमारे सैनिकों को, गौरव सेनानियों को, माताओं को, हमारी वीरांगनाएं हैं उनको, उनके

0: आश्रितों को
1: जी
0: उनकी सेवा करने का मौका दिया, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सौभाग्य मेरा
1: जी
0: और कुछ हो नहीं सकता है। और इसमें भी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मीटिंगें लेता हूँ, हमारे यहाँ समस्या समाधान शिविर होते हैं,
1: जी
0: तो उसमें हर जगह मैं जाकर के यही कहता हूँ कि रिटायर्ड लोगों के पास में सोसाइटी को पे बैक करने का मौका है,
1: मौका है
0: रिटायर्ड लोगों के पास में खूब एक्सपीरियंस होता
1: जी
0: है,
1: सर, बिल्कुल
0: और गांव के जो गौरव सेनानी हैं वो भी गांव के डेवलप

0: जो गौरव सेनानी है वो भी गांव के डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने, वो गांव के स्कूल और कॉलेजेस को जाकर के फोकस करें,
1: जी
0: यूथ के ऊपर में फोकस करें,
1: जी
0: और गांव के दूसरे रिटायर्ड लोग जितने भी होते हैं या शहर के जितने भी होते हैं,
1: बिल्कुल
0: हर एक डिपार्टमेंट से, चाहे डॉक्टर आया, इंजीनियर आया, कोई साइंटिस्ट आया, कोई भी आया, तो रिटायर्ड लोगों के पास में 40 साल का एक्सपीरियंस होता है,
1: बिल्कुल
0: उस एक्सपीरियंस को वापस सोसाइटी के अंदर में यूज करें और पे बैक करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि कंट्री का फ्यूचर बहुत ही बेटर होगा।
1: क्या बात है सर, मतलब रिटायर्ड लोगों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, और ये सोच जो है, ये सोसाइटी को जो पे बैक करने वाली आपने बात कही है, रियली सर सैल्यूट
0: सोसाइटी का, हमारे ऊपर में प्रकृति का, सोसाइटी का, समाज का, पेरेंट्स का और सब लोगों का कर्ज है
1: जी।
0: ये कर्ज उतारने का मौका है, ये हम उनके ऊपर में काम करके किसी पे ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं।
1: क्या बात है। तो श्रोताओ, हमारे साथ मेहमान का रविवार प्रोग्राम में आज हमने इनवाइट किया कर्नल डॉक्टर बलदेव सिंह जी मानव को। सर, आपसे जो ये बातें की, मन तो कर रहा है कि और करें, लेकिन समय की जो सीमा है वो हमें यहाँ रोक रही है। फिर आपसे मौका ज़रूर लेंगे कि आप आकाशवाणी में पधारें और अपने समय में से जो कुछ पल हैं वो हमारे साथ फिर से शेयर करें। और चलते चलते फिर से एक गीत जो है मैं आपसे सुनना दरखास्त करूँगी कि सिर्फ बोल ही बता दें ताकि हमारे श्रोता जो हैं उसे गुनगुना लें।
0: बिल्कुल मैम, वो हमारा सुभाष चंद्र जी बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज के लिए जो गाना दिया था, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, वो गाना जो है मेरे दिल के बहुत करीब है, उसको आप हमारे युवाओं को और श्रोताओं को सुना दें।
1: जरूर सर। तो हम उस गीत के साथ ही आपसे लेंगे अनुमति, क्योंकि जो समय है वो हो चला है, तो आप हमारे प्रोग्राम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू।

आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं और अब समय हो गया है कार्यक्रम बातें और गीत का।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टांके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आपका. प्रोग्राम है बातें और गीत और जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ. 10 तो बज चुके हैं और एक खूबसूरत सा गीत जो है आप सुन चुके हैं
1: 102.1 FM पर.
0: बिल्कुल श्रोताओं, बातें और गीत, जहां दिल को छू लेने वाली बातें, जीवन से जुड़े अनमोल विचार और आपके मनपसंद मधुर गीत मिलकर बनाते हैं एक बेहद ही खूबसूरत एहसास.
1: और श्रोताओं, इस खूबसूरत एहसास के साथ मैं हूं सीमा शर्मा और मेरे साथ
0: मैं हूं सोफिया खान और कंसोल पर हमारे साथ है सोनिया देवड़ा.
1: और अगले एक घंटे तक हम साथ बिताएंगे कुछ यादगार पल, कभी मुस्कुराहटों के साथ, कभी पुरानी यादों के साथ, तो कभी प्रेरणा और उम्मीद से होंगी भरी बातें और बीच बीच में गूंजेंगे ऐसे गीत जो आपकी दिल की धड़कनों से जुड़ जाएंगे. तो बिल्कुल रोजमर्रा की भागदौड़ से लीजिए थोड़ा सा विराम, हो जाइए थोड़े रिलैक्स, चाय की एक प्याली ले लीजिए हाथ में आराम से और बैठिए हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है बातें और गीत.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, प्रोग्राम है बातें और गीत, और आज बात बात की ही, क्योंकि बातें जो है वो कम हो रही है। अगर अभी की युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो एक गैप सा हो गया है, क्योंकि पूरा दिन जो है वो स्मार्टफोन में उलझे रहते हैं, या कहें अपना पूरा टाइम जो है स्मार्टफोन में बिता रहे हैं।
2: मैं समझ रही हूँ सोफिया, जो तुम बात कह रही हो ना कि बातें कम हो गई हैं, तो प्रोग्राम इसीलिए चलाया है कि बातें जो हैं वो कुछ बढ़ जाएं और जो फोन है उससे कुछ मुक्ति मिल जाए और जो वार्तालाप है उसकी कुछ गति बढ़ जाए।
1: बिल्कुल
2: हाँ।
1: और ये जो गैप है वो जैसे कि आपने कहा कि बातें होनी ही चाहिए, लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है सब एक तो बिजी हो गए हैं। पेरेंट्स की बात करें तो वो भी एक तरह से बिजी है, घर की जिम्मेदारियां हैं, और अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसकी काम की जिम्मेदारियां हैं, और अगर बच्चों की बात करें तो स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और फिर कोचिंग जाते हैं, और फिर अगर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अगर उनको कोई पसंद है, उनकी हॉबीज, तो उसमें वो अपना टाइम बिताते
2: हैं, जाते हैं।
1: तो सोचिए क्या टाइम मिलता होगा उनको बात करने का।
2: ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही कि बातों का टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम चाहें तो कहीं ना कहीं, जैसे आज संडे है ना, तो अपना कोई ना कोई संडे का एक स्लॉट ऐसा जरूर रखें जिसमें हम अपने अपनों से बातें कर सकें, उनकी भी बातें सुन सकें, अपनी कह सकें, और जब अपनी कह देते हैं उनकी सुन लेते हैं तो तुम ये मान के चलो कि हम पूरे वीक के लिए खुद को री एनर्जाइज कर लेते हैं। और ये जो बातों की बातें जो चल रही है ना सोफिया, इन्हीं से हम बहुत कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो एक गैप आ जाता है, जो कम्युनिकेशन गैप जिसे हम कहते हैं वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए चाहे आप पूरे दिन बिजी हो, चाहे आप कितना भी काम करें, लेकिन कोशिश ये जरूर करें कि आप हर दिन पूरे परिवार के साथ बैठकर अपने दिन भर का स्टॉक ही खाली कर दें।
1: बिल्कुल,
2: आज क्या हुआ ये यहाँ से शुरू होकर के, और जब तक आप बैठे हैं और जब तक एक छोटी सी नोकझोंक ना हो वो बातें खत्म नहीं होनी चाहिए।
1: तो श्रोताओं, आज संडे का टाइम है तो क्यों ना ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म कर लिया जाए।

0: सोफिया, एक बात बताओ, दूरियां कैसे आती हैं?
1: दूरियां आती है चुप्पी से।
0: आहा, तुम तो स्मार्ट हो गई हो। दूरियां शब्दों से नहीं, चुप्पियों से बढ़ती हैं।
1: बिल्कुल
0: तो इसलिए चुप्पी तोड़ो और हमारे श्रोताओं को बताओ कि नेक्स्ट क्या बताने वाली हो।
1: बिल्कुल श्रोताओं, चुप्पियां जो है वो गलत फहमियों की जो कहते हैं बात हो जाती है। और जब हम चुप रहते हैं या अगर आपस में कोई बात नहीं हो रही है तो ये गलत फहमियाँ पैदा करती है। जैसे अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो उसके बारे में ये अंदाज़ा लगा दिया जाता है कि या तो ये घमंडी है या ये
0: नकारा है।
1: ऐसा क्या सोच रहा है, जो मतलब हम उसकी सोच के परे ही अपनी जो बात है वो सोचते हैं।
0: इसमें यहाँ पे जो गैप है सोफिया, यहाँ जो मैं तुम्हारी बात से समझ पा रही हूँ, उसमें ये बात एक और ऐड करना चाहूंगी कि ये भी सोचते ना कि पहले मैं क्यों बोलूँ।
1: बिल्कुल
0: पहले आप में जो है दोनों की चुप्पियाँ बढ़ती जाती हैं।
1: बिल्कुल
0: चुप्पियाँ बढ़ने से शब्द जब मुंह से नहीं निकलते तो गलत फहमियाँ बढ़ती
1: बढ़
0: हैं
1: जाती
0: और
1: है
0: हम अपने आप में ही एनालिसिस कर लेते हैं कि ये ज़रूर थोड़ा सा नकचड़ा या नकचड़ी है, घमंडी है, या फिर पहल इसे करनी चाहिए तो मैं क्यों
1: बिल्कुल
0: करूं। और इन सब चीज़ों के बीच में जो बात है वो वहीं कहीं दब के रह जाती है और चुप्पियाँ बढ़ जाती हैं।
1: बिल्कुल
0: इसीलिए कहते हैं ना कि रिश्ते टूटते नहीं हैं, अक्सर बात करना बंद कर देते हैं। और जब संवाद कम हो जाता है तब कौन गलत अपनी जगह बना लेती है, अपनी जगह बनाती है गलत फहमी।

0: श्रोताओं, प्रोग्राम है बातें और गीत, और बहुत सारी बातों के बीच गलत फहमियाँ जो है वो जन्म ले लेती है। कैसे ले लेती है? ऐसे ले लेती है कि कुछ बातें जो हैं आधी अधूरी रह जाती है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ सुना, किसी ने आधा कहा, किसी ने पूरा नहीं सुना बिल्कुल। और फिर लगाते हैं हम कयास, फिर लगाते हैं हम अनुमान कि इसने ऐसा क्यों कहा, या ये कह देता तो बेहतर होता।
1: और सोफिया, एक चीज़ और होती है जो गलतफहमी पैदा कर देती है। कई बार क्या होता है, हम खुद तो सब चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन सामने वाले को हम समझाते नहीं है, और अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं कि इसको भी समझ आ गया होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है, है ना। और ये मैंने बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम देखी है कि मैंने समझ लिया तो मुझे लगा कि सामने वाले ने भी समझ लिया।
0: बिल्कुल, हर कोई जो है वो मन की बातें नहीं
1: समझ पाता है, और जब मन की बात जो है वो हर कोई नहीं समझ पाता है, तो ऐसा अनुमान जो लगा लेते हैं उससे भी पैदा हो जाती हैं गलत फहमियाँ।
0: बिल्कुल। और कभी कभी हम किसी को अगर कोई संदेश भेजते हैं, कोई मैसेज भेजते हैं, अगर वो अधूरा रह गया तो उसका भी निकाला जाता है गलत अर्थ, और फिर बढ़ जाती है गलत फहमियाँ।
1: तो श्रोताओं, आपसे एक बात पूछते हैं कि क्या कभी सिर्फ एक बातचीत में आपकी कोई बड़ी गलत फहमी दूर की है? जी हाँ, इस प्रश्न को जरा सोचिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जो हमारी डेली लाइफ में किसी ना किसी के साथ होती रहती है। तो ये जो सिचुएशन है, कभी आपके साथ हुई है क्या कि कोई गलत फहमी आपने पाली हुई थी, और जब आपने उस बंदे से बातचीत की तो फिर गलत फहमी जो थी वो एक ही बातचीत में दूर हो गई। तो देख लेना फिर बातचीत की इम्पोर्टेंस कितनी हो जाती है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बातें और गीत, और बातें हो रही हैं बातों की।
1: बिल्कुल श्रोताओं, बातें थी कुछ कहने को, लब तक आकर ठहर गई, दिल ने आवाज दी कई बार, पर आवाजें बिखर गई। दूरी मीलों की नहीं थी, बस कुछ पल की खामोशी।

थी, रिश्ता आज भी वही था, बस बातों की कमी सी थी। एक कदम तुम बढ़ा देते, एक कदम हम चल लेते, जो दीवारें खड़ी हुई थी शब्दों से हम ढह देते। याद रखूं, रिश्तों की दौलत न धन से न सम्मान से है, जीते हैं रिश्ते दुनिया में बस बच्चे सच्चे संवाद से। बिल्कुल दोस्तों, कहते हैं कि रिश्ते टूटते नहीं हैं, उन्हें चुप्पियाँ धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है। कभी हमारे व्यस्तता, कभी अहंकार, तो कभी ये उम्मीद कि वो खुद समझ जाएगा, और यहीं से संवाद की डोर ढीली पड़ने लगती है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहां कहां इलाज ना करवाया।
3: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
4: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
5: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
6: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
7: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
8: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बीराम मंडो।
7: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
9: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
10: सोफिया, तुमने चुप्पी की आवाज सुनी है?
11: चुप्पी की आवाज? चुप्पी की भी क्या कोई आवाज होती है?
10: बिल्कुल, देखो कैसे होती है। चुप्पी भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है, पर हर कोई उसकी भाषा कहाँ समझ पाता है। कुछ लोग शब्दों में रोते हैं, कुछ मुस्कानों में दर्द छुपाते हैं। जो दिल की बात कह ना पाए, वो अक्सर अपनों से दूर हो जाते हैं। रिश्ते शिकायतों से नहीं, खामोशियों से बिखरते हैं। जब संवाद थम जाता है, तब अपने भी पराए लगते हैं। तो आओ आज फिर एक शुरुआत करें, दिल से दिल की बात करें। जो कहना है आज ही कह दें, रिश्तों को फिर आबाद करें। तो जहां चुप्पी थी, वो ये कहती है कि रिश्तों को फिर से आबाद करें। और जो ये बातें हैं सोफिया, हमारे श्रोता जो हैं, इस बात को भी समझें कि हर खामोशी का मतलब नाराजगी नहीं होता, और हर मुस्कान जो होती है वो खुशी की निशानी भी नहीं होती। कई बार अपन कहते हैं ना कि कई लोग मुस्कुराहट के साथ दर्द छुपा लेते हैं।
11: बिल्कुल,
10: तो ये जो बात है ये उसी तरह की कुछ बात है। कई बार लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सही समय, सही शब्द या फिर सही अवसर नहीं मिल
11: नहीं
10: पाता
11: मिल पाते,
10: और वो जो बात है वो मन में ही रह जाती है, अधूरी रह जाती है, और तब चुप्पी उनकी भाषा बन जाती है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: बिल्कुल दोस्तों, अब जब गलत फहमियां शुरू हुई थी और हमने उन सब की बारे में बात की, तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का समाधान क्या हो।
3: बिल्कुल, जो ये कम्युनिकेशन गैप जो हो जाता है, इसका, गलत फहमी का, इन सब का समाधान

0: बिल्कुल,
1: तो बताओ क्या होना
0: तो
1: चाहिए।
0: समाधान ये होना चाहिए कि जब भी अगर दो जनों के बीच में बात हो रही है या किसी भी चीज की बात हो रही है, तो उस बात को जो है वो ध्यान से सुना जाए,
1: ठीक है।
0: हर बात में जो है ध्यान लगाया जाए।
1: मैं ध्यान लगा के सुन रही हूँ तुम्हारी बात
0: बिल्कुल।
1: बताओ।
0: और जब बात हो तो बीच में टोकता नहीं
1: हाँ, ये तुम्हारा
0: चाहिए।
1: इशारा मेरी तरफ है सोफिया, कि जब तुम बोलो तो मैं तुम्हें टोकू नहीं, बीच में बोलू नहीं। ठीक है, आगे से याद रखूंगी।
0: बिल्कुल, तो
1: नेक्स्ट।
0: बात पे बीच में टोकना भी नहीं चाहिए, ताकि जो बात हो रही है वो एकदम सटीक से हो, बेहतर तरीके से हो।
1: और
0: और
1: जो
0: तीसरी बात
1: बात
0: ये
1: कहनी है
0: होती,
1: वो पूरी हो जाए।
0: बिल्कुल, और तीसरी बात ये उठती है कि जब बात हो रही हो तो अपनी जो इमोशंस हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, वो एकदम साफ सपाट हो। वो साफ होंगे, सपाट होंगे, तब अगले के अंदर हम जो है अपनी बात जो है वो आसानी से पहुंचा सकेंगे।
1: यानी कि क्लैरिटी होनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए और शब्दों को घुमा फिरा कर नहीं,
0: नहीं
1: जो भी
0: बोलना
1: आप बात
0: चाहिए,
1: कहना चाहते हैं बिल्कुल
0: सीधी कहनी
1: क्लियरली आप
0: चाहिए।
1: कह सकते हैं।
0: बिल्कुल। और बात ये भी उठती है कि मैं की जगह हम का यूज जो है होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, ना करके हम ये
1: हम
0: कर रहे
1: करेंगे।
0: हैं, हम ये कर रहे हैं, हम आगे ये करेंगे, या हमारी बात जो है वो ये हो रही है।
1: टीम वर्क।
0: बिल्कुल। तो इससे थोड़ा सा है फर्क पड़ता है, आपके बीच में गैप भी कम होगा और जो गलतफहमियां हैं वो भी कम होगी।
1: तो श्रोताओं, सोफिया ने जो आपको टिप्स दिए हैं, तो उनसे आप अपने रिश्तों में ये मिठास बनाने की जो टिप्स हैं, इसे ज़रूर करिएगा, क्योंकि रिश्तों में सबसे बड़ा निवेश जो है वो है समय और संवाद का।

जी श्रोताओं, अब हम यही कहेंगे कि कई रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उन्हें प्रेम कम हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि बात करना कम हो गया। मन में हजारों शब्द होते हैं लेकिन होठों तक पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं, और वही अनकहे शब्द बदल

0: पहुंचते रुक जाते हैं और वही अनकहे शब्द जो धीरे धीरे है दूरियों में बदल जाते हैं। तो आइए इस भावना को कुछ ऐसे महसूस करने हैं कि एक बात कहनी थी। जब भी एक बात कहने का दिल करे तो बिल्कुल वो बात कह लें और उसे पेंडिंग फाइल में नहीं डालें। और अगर आज के इस प्रोग्राम में आपको किसी अपने की याद दिला दी हो, आपको भी वो बात याद आ गई हो कि आपको भी एक बात कहनी थी पर कहीं ना कहीं शब्दों की कमी ने दूरी बना दी है, तो बस कार्यक्रम समाप्त होने का इंतज़ार मत कीजिए, उठाइए फ़ोन और लगा दीजिए और एक संदेश भेज दीजिए या फिर बस इतना कह दीजिए क्या हाल है। हो सकता है यही एक बातचीत किसी रिश्ते में फिर से मुस्कान लौटा दे। तो इन्हीं बातें और इन्हीं गीतों के साथ दीजिए अनुमति सीमा शर्मा
1: और सोफिया खान को।
0: फिर मिलेंगे आपसे नई बातें और नए गीतों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, प्राणोजी का बाग, खोखरिया बिरा मंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

और कार्यक्रम शुरू हो गयो है मनवार। हर आदितवार ने आकाशवाणी जोधपुर आप रे सामने लेन आवे है राजस्थानी गीतारो मन मोवणो कार्यक्रम मनवार।

ओ कार्यक्रम अपनी संस्कृति अपन लोक परंपरा और अपने अपनाए तू भरेड़ो रहवे तो शुरू करा आज रे ओ मनवार रो सफर और ये सफर रे मैंने मैं हूँ आप रे सागे सोनिया।

राजस्थान मतलब रंगारो प्रदेश, रेतरी खुशबू और लोक संस्कृति रो वैभव और सुरारी एडी मिठास जिको स्वाद एक बार मिल जावे तो जिंदगी भर याद रहे। और जो कि इन कार्यक्रम रो नाम है मनवार, तो बात करा अगर इन शब्द री तो इस शब्द रो अर्थ है प्रेम सु करियोडो स्वागत, अपनायत, आदर और आत्मीय सत्कार। तो आज ये कार्यक्रम में आप सबा ने इन मीठा सा गीतर

एफएम सनसिटी दे इंग इन आगने आप सुन रहे हो कार्यक्रम मनवार और कार्यक्रम में आपा आज कई बात करा ला आप जरूर सोच रहा होला तो श्रोता हो आप रेडियो सेट लेने बैठा होला चाहे खेता में हो चाहे घर में हो या कटे भी कट दुकान माते बैठा हो और ये प्यारे प्यारे गीत भी सुन रहा हो तो आज आप बात करा एक ऐड़ा महीना रे बारे में जो को धरती ने नई उम्मीद देवे किसान ने नई आस देवे और अपन ने मन में भी नई खुशी दे देवे और वह खुशी है मेरी और वो महीनो है आषाढ़ो। हाँ सा जेठ रे महीना पचे महीनो आवे आषाढ़ो और हम के लिए था दो जेठ। हाँ क्योंकि इदक मास जो को आएगो हो तो दो जेठ होएगा। दो जेठ होना मतलब हो के जो गर्मी पड़ी है जो उनाड़ो रियो है वो एड़ो रियो है कि बस पूछो ही मत। और एक कहावत भी कही है कि जितो जेठ तपे उतो ही अपने हवण में पड़े और हवण ऊपर ले आवे अपनो ओ आषाढ़ो महीनो। हाँ सा और आषाढ़ आवते ही तपियोड़ी धरती बादलारी बाढ़ जोवन लाग जावे और देखे जावे तो हैंगों पहली जो मानसून है वो पहुंच तो गयो हैंग जगह लेकिन अपन मारवाड़ में आवता आवता कई ठाने ने इतो टाइम लाग जाए कि पूछो ही मत। और आषाढ़ महीना कुछ खास भी है क्योंकि किसान इन घनी बाढ़ जोवे है और आप हैंग जने बाढ़ जावा किसान आ रहा तो कई क्या हुआ। और आषाढ़ महीना आवते ही अपना जिका भी ये रूकड़ा है वे रूकड़ा भी हिलन लाग जाए वे भी बाढ़ जोवे कि कदे में आई और कदे में खिल खिलने हंसा और अपना जिका मोरिया है वे भी पंख फैलाने नाचन ला जावे और अब मोरिया दी जी की आवाज है वो मैं ने बुलावनी आज रहे कि कदे में आवे और कदे में पंख फैलाने नाचा। तो दोस्तों आप बेर भी कहीं बात कर रहा लेकिन ओ गीतर लो आप रे नजर करूं

आपा जी को गीत सुनियो उन गीत तो पहले आपा बात करी थी कि आषाढ़ महीना में आपा मेरी बाढ़ जुआ और मैं आप ही जाए आवे और दो दिन हो गया है आपा नट मारवाड़ में भी मौसम बन गया है। जी हाँ गटा टो बादला दो दिन हुआ छयोड़ा हा और परसू भी मैं पड़ियो ने काले सामने भी घनी मैं पड़ियो पनाला पड़ी और बाढ़ भी आ और दो दिन आपा एकदम मेहरबानी के कारण अपनो जो हियो है वो एकदम हरसाई गयो है। और इन बात माते और भी कहनी चाहूँ कि जिका भी है मोरिया ने जिका भी है पपिया बोलिया वैनी बात पूरी होगी और मैं बाबो अपने तरसाया को नहीं और हरसाया।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
3: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
2: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
3: सच?
2: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
3: समझ गया।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

विज्ञापन नु पहली आपा जी को गीत सुनियो वो आपने केड़ो लागियो होनी एकदम अपनी माटी रे सुरासु घणो ही मीठो दोस्तों पुराना जमाना में जिका अपना गांव रा पुरखा हा वे बादलारी चाल देखने बरसात रो अंदाजो लगाव लेता हवा रो रुख देवता जिका अपना पंछी है वेनो व्यवहार देखता और आसमान रे रंगू मौसम ने पहचान लेता कि हमें मे आऊं वालो है। और एक बात री अभी खासियत थी कि वे अपने जिको भी वो मेरो पानी पड़तो उन्हें सहेज ने राखता हांसा क्योंकि जो पानी री जो कीमत है के वो एक मारवाड़ी ही समझ सके क्योंकि अटे अपने पानी री बहुत कमी रहे और इन कमी ने

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: FM सनसिटी दे इन आंगणे आप सुन रहे हो कार्यक्रम मनवार। दोस्तों, बरसात रो जिक्र हो और लहरियो याद नहीं आवे, आ तो बात हो ही नहीं सके। राजस्थान की पहचान जिन में पगड़ी, मोजड़ी, बंदेज है, उमें एक लहरियों भी एक अनमोल रंग है। आषाढ़ और सावन आती बाजार में दुकाना माते रंग बिरंगा लहरिया सज जावे। रंगा की बात करा तो पीलो, लीलो, गुलाबी, रतो, केसरियो, नीलो, ए सब रंग है जिका अपने देखने मिले और हर रंग अलग ही संदेश देवे।

लहरियो केवल एक ओढ़नी या साड़ी को नहीं होवे, ओ तो प्रेम उमंग और सावनरी मस्ती रो प्रतीक होवे। अपन तीज त्योहार रक्षाबंधन और जितना भी अपने इन सावन भादवा में त्योहार आवे उमें ने ओ विशेष महत्व राखे। बिनणिया जी की है अपने घरारी, वे नई नई लहरियारी ओढ़निया ओढ़े और इन्हें बहुत शुभ माने जावे। और पीहर की बात करा तो पीहर सु बेटी रे खातर विशेष रूप लहरियो भेजनी परंपरा आज भी अपने कई घर में देखने मिले। और जब पीहर सु लहरियो आवे नी तो बेटी रे जो चेहरा माते जो खुशी जल गए के उन्हों कोई मुकाबला को नहीं। और अगर हम आप बात करा लहरिया री बनावन री कला री तो बड़ी कमाल री कला है। कपड़ा ने इन ढंगू बांधे और रंग में रंगे कि जब वो गांटा जी की खुले के उन पचे जो वे लहरिया री जो डिजाइन आए आप कहवा के नमूना जी का सुंदर हुए कि वे इतना बढ़िया लगे कि आपने कई बतावा। और शायद ही जो को है वो न कोई मुकाबला कर सके।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
2: तो दोस्तों, आज मनवार कार्यक्रम में आप बात करी ही असर रे मेरी बरसात रे रिमझिम री अपने धरती री जो मेरे बच्चे जो सौंदी सौंदी खुशबू आवे उन्हीं और लहर या रे रंगा रे। उम्मीद है आज रो और जो सुरीलो सफर आपने घनी चोको लागी होवेला और हमारी जो संस्कृति है अपनी लोक संस्कृति जी की है हमें और सिखावे कि मौसम बदले या जो भी

टेम बदले, पर अपना जी का रीति रिवाज है, लोकगीत है और अपने जो संस्कार संस्कार है वे अपने हमेशा जिंदा रखना है। जब तक और जो सुरारो जी को गूंज तो रहेला नहीं, तब तक अपना जो राजस्थान की पहचान है के वह भी बढ़ोड़ी रहेला। और जावता जावता एक बात भी याद आई है मने कि बूंद बूंद सु घड़ो भरे और प्यार प्यार सु संसार। इको मतलब ओ है कि जिको छोटी छोटी बूंदों मिलने आपा जो घड़ो भरा, उन्हीं तरह अपने प्रेम अपनाए तो और मेल मिलाप जिंदगी ने खुशहाल बनावा है, छोटी छोटी खुशी खुशी की बात कर करने। और आपा बाता करी थी बरसात रे, तो एक बात जरूर याद रख जो कि पानी दी जिकी हर एक बूंद है वह बहुत ही अनमोल है। अपने पानी बचावनो है, प्रकृति ने बचावनी और आवती जिकी अपनी जिकी पीढ़ी है उन्हें खातिर हरियारो राजस्थान छोड़नो है। और इन्हीं शुभकामनाओं साथ आज रे मनवार कार्यक्रम रो बे टाइम होमवाड़ो है पूरो। मैं थी आज रे इस इन कार्यक्रम में आप रे सागे सोनिया, और अगले अदितवार ने आप फिर मिलावा इन्हीं सागे आप सीख दिलावा। और राम राम, हंसता रह जो, मुस्कुराता रह जो, स्वस्थ रह जो और अपनी मायड भाषा और अपनी लोक संस्कृति जुड़िया रह जो। आप सुन रहा था कार्यक्रम मनवार।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम मनवार, आकाशवाणी जोधपुर का ये एफएम सेंसिटिव चैनल है। एफएम बैंड 102.1 मेगा हर्ट्ज पर इस समय दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदी हटा ली है। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के अंतर्गत उन खास आपातकालीन प्रावधानों को अब हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में दो दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ब्रिक्स महिला ट्रैक ने चार मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। मंत्रालय ने बताया कि 8 और 9 जुलाई को होने वाली ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय बैठक के लिए ये एक मजबूत आधार तैयार करेगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमरीका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा की और सैन्य, राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दों पर बातचीत जारी रखने के महत्व पर बल दिया। क्रेमलिन के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष का जल्द समाधान दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग में मदद करेगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थी। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सवेरे लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अपनी सशक्त आवाज

0: आज प्रभावशाली मंच उपस्थिति और विशिष्ट कथा शैली से तीजन बाई ने पंडवानी को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। भारत महाभारत की कहानियों को मंच पर जीवंत करने की उनकी अद्भुत क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रशंसित प्रस्तुतकर्ताओं में से एक बना दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति उनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश जारी रहने की संभावना व्यक्त की है और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम
2: यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

जमाने को दिखाना है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले मोहम्मद रफी और पद्मिनी कोल्हापुरी की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
3: रात जी आ रही दिल अंधेरा है, तू जो सजन नहीं मेरा है, मेरा है रात।
1: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
4: अनमोल यादें,
1: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
4: अनमोल यादें
1: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

बरसात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: समीर के बोल आप सुन रहे थे कुमार सानू और साधना सरगम की आवाजों में। दामिनी फिल्म का ये गीत नदीम श्रवण के संगीत से सजा था।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

अंदाज अपना अपना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल तुषार भाटिया का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आशा भोसले और येसु दास की आवाजों में दौड़ फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज में ये गीत।

दीवाना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। विनोद राठौर और साथियों की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत क्रिमिनल फिल्म से।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में क्रिमिनल फिल्म का ये गीत आपने सुना, इंदिवर के बोल, एमएम क्रीम का संगीत। इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में जैसा कि हमेशा होता है एक इबारत हम भेजते हैं और उसे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं और उस इबारत को देखकर आप अंदाजा लगाते हैं कि क्या होंगे, कौन से शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जा सकते हैं। तो आज की इबारत, हालांकि आपने में से बहुत से लोगों ने तो इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए हम एक बार बता देते हैं वो इबारत कि कोई फुर्सत के पल ढूंढता है तो किसी को नौकरी की है तलाश, कोई सबसे दूर होकर खुश होता है तो किसी को चाहिए सब आसपास, उम्मीदों आशाओं चाहतों और जरूरतों का फैला हुआ है आकाश, कभी यहाँ दुख की बदली छाए तो कभी फैले भोर की उजास। क्या कहता है आपका मन, क्या है मुकम्मल जहाँ किसी के पास। तो ये है आज की इबारत जिनमें से शब्द चुनने हैं आपको और इन शब्दों को चुनकर आपको बताना है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वैसे हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं और बता भी दिया है कि कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से गीत हो सकते हैं। एक गीत जो आपकी और हमारी लिस्ट में बिल्कुल मैच हो रहा है बातों के साथ भी और जज्बात के साथ भी, वो गीत तो कार्यक्रम का पहला गीत ही बनने वाला है। वैसे हमारे साथी कहते हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है, किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यही है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती ही इस बात में है कि हम अपनी इन अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती, जो मिलता है वो है अवसर। अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का, अधूरी दास्तानों में ही अक्सर सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती हैं और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं, ऐसा इनका कहना है। एक और साथी कहते हैं कि हर कोई कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, जो गर्मी में सूरज से निकलती कड़ी धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव ढूंढता है तो ठंड के मौसम में ठंड से राहत पाने के लिए वही सूरज की तलाश करता है। इसलिए कहा गया कि ये जीवन है, जीवन का यही है रंग रूप। बिल्कुल सही बात आप दोनों ने कही। हम लेकिन आपसे ये पता करना चाहते हैं कि भाई क्या वाकई सारी चीजें अधूरी अधूरी रहती हैं जीवन में, या कहीं ना कहीं हमारा मन इस तरह से चलता है या इस तरह से कहें कि काम करता है कि उसे हर चीज अधूरी लगती है। जो भी चीज पूरी हो जाती है उससे आगे क्या, ये सोच जब हमारे मन में होती है तो हमें कई चीजें अधूरी लगती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और ये भी बताइए कि आपको किस चीज की तलाश है। जो भी तलाश हो सकती है हमें बताइए और तब तक हम आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं। आपको बताना है कि इसमें आवाज किसकी है, क्योंकि हमें तलाश है इस जवाब की।

ये गीत आप सुन रहे थे मौसम फिल्म के। इस गीत में आपने सुना भूपिंदर और लता मंगेशकर की आवाज को, जो कि हमने आपसे पूछा था, सवाल का सही जवाब आपने दिया। और हमारे साथियों से हम ये भी पूछना चाहेंगे, इस गीत में बहुत सी ऐसी बातों के बारे में बताया जा रहा है या कहा जाता है जो कि एक ख्वाहिश होती है कई बार, जैसे छत पर पड़े रहकर या सोकर तारे देखना या आसमान में मतलब जाड़ों की धूप सेकना, तो इस तरह की बहुत सी बातों का उल्लेख इस गीत में हमने सुना। तो क्या आपने इसमें से बहुत सारी चीजों का अनुभव लिया है या कुछ की उम्मीद या तमन्ना अब भी आपके जीवन में है, ये हमें बताइए। और हमारे साथी ने कहा कि एक मुकम्मल जहां बनाने के लिए लोग अपनी आशाएं, उम्मीदें और चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई फुर्सत के पल ढूंढता है, कोई नौकरी की तलाश में, कभी दुख तो कभी सुबह की पहली किरण। हमारा भी मन कहता है कि सूरज की भांति अंधेरे को मिटाकर जीवन में रोशनी भर देंगे। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जीवन सुख दुख का माया जाल है, एक धागा सुख का तो 100 धागे दुख के होते हैं। उम्मीद और आशा के साथ हर एक को सुख की तलाश रहती है, फिर भी हमें कभी खुशी

0: कभी गम, कभी धूप, कभी छांव को स्वीकार करना पड़ता है। राजा से लेकर रंग तक संसार में कोई भी पूर्णतया सुखी नहीं होता। फूल खिलते हैं तो मुरझा भी जाते हैं। जीवन में अक्सर गम के साए नजर आते हैं, सह लेता है हर दर्द को जो हंसकर। असल में वही लोग इस जहां में मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, लेकिन वाकई हर चीज में सिर्फ दर्द सहने वाला ही इस जीवन में सुखी रहता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब व्यक्ति अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास तो लगातार करता है, लेकिन जिस परिस्थिति में है उसमें भी एक संयम रखते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून तो होता ही है। वरना तो हम सभी कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, जैसे कि इस गीत में भी है ढूंढने की कोई बात। हमें बताइए किसने लिखा ये गीत और फिल्म में कौन है इस गीत में नायक।
1: डियर सर, सेवा में निवेदन है।

0: गे अर्जी हमारी ये मर्जी हमारी जो सोच बिना ठुकराओगे देखो बड़े पछताओगे।
1: नौकरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज और उन्हीं पर फिल्माया गया है ये गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा, सलिल चौधरी का संगीत। आपने बिल्कुल सही जवाब हमें भेजा है और हमारे साथियों ने बहुत सी बातें भी लिख भेजी हैं। और हमारे एक साथी कहने की आज की इबारत तो जीवन दर्शन जीने की कला, जरूरतें, दुख सुख, अकेलापन, रंगीन जिंदगी और अपनापन बनाए रखने वाली जीवन शैली को बहुत सुंदर तरह से विश्लेषण किया गया है। कहते ना कि फुर्सत मिले तो पूछ कभी उनका हाल भी, जो लोग जी रहे हैं तेरे प्यार के बगैर। वाह क्या बात आपने कही। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम तो हर मौसम में वही करते हैं जो गीत में कहा गया है। मौसम फिल्म के गीत को हमने जब दिल ढूंढता है फुर्सत के रात दिन वाले गीत पर हमने पूछा था ना कि जो जो कहा गया है उसमें से क्या क्या आप करते हैं, तो हमारे साथी ने ये बात कही है। वहीं हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि मानव जीवन ही ऐसा है, कभी संतोष मिलता ही नहीं। ऐसा नहीं कि इच्छा पूर्ति नहीं होती, कभी हो भी जाती है, लेकिन नवीन इच्छाएं पल्लवित होने लगती हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये मुकम्मल

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। इस समय दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: बरसात की ये पहली दस्तक कुछ इस तरह पैगाम लाई है, खिड़की खोल कर तो देखो, कुदरत खुद मुस्कुराने आई है।
1: क्या बात है, भूल जाओ कल की तपिश, आज इस बूंद बूंद को जी लो, क्योंकि जिंदगी आज से फिर से खुशियों की महफिल सजाई है। तो सखियों, खुशियों की महफिल को सजाते हुए नारी वाटिका की महफिल को सजाने के लिए आज आपसे रूबरू हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो सखी समीना, और मेरे साथ है
0: कामिनी।
1: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: बचपन की कश्ती तो कभी जवानी का ख्वाब है, ये पहली बारिश भी जिंदगी का क्या खूबसूरत अंदाज है।
1: उम्र का हर पड़ाव भीग जाता है इसकी बूंदों में। ये सिर्फ मौसम नहीं, यादों की एक पूरी किताब है ना कामिनी?
0: बिल्कुल सखियों, साल की यह पहली बारिश सिर्फ आसमान से गिरता पानी नहीं है, बल्कि यह तो यादों का एक पूरा झोंका है।
1: बिल्कुल, जब यह बरसती है तो उम्र का हर पड़ाव खिल उठता है। वो बचपन की बेफिक्री जिसमें बिना छतरी के भीगना हमें मंजूर था,
0: वो जवानी के सपने और आज जिंदगी की इस दहलीज पर हाथ में कुल्हड़, चाय का कुल्हड़ थामे जिंदगी से खिड़की से इन गिरती हुई बूंदों को देखना, हर उम्र में इस पहली बारिश ने हमारी रूह को छुआ है।
1: बिल्कुल। तो हमारे रूह को छूती हुई जो ये पहली बरसात है, जो हमारे जोधपुर शहर में भी दस्तक दे चुकी है, पिछले 2 दिनों से हमारे शहर में भी बरसात हो रही है। तो आज की इस नारी वाटिका की महफिल में जो है, हम शुरुआत करते हैं मौसम के इसी बदलते मिजाज और अनमोल यादों के साथ में, क्योंकि बारिश की बूंदें जब आती है तो वह कई पुरानी यादों को अपने साथ में लेकर के आती है, और जब बरसात आती है तो मौसम कभी बहुत सुहावना हो जाता है और कुछ अलग अंदाज में ही गुनगुनाता है इस तरह से।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान

0: रिफाइनरी जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: कामिनी, कभी तुमने महसूस किया कि बारिश की पहली बूंद जमीन पर जब गिरती है तो उसकी सौंधी से खुशबू उठती है ना उसमें से, और वो सीधे हमारे दिल तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है जैसे धरती ने महीनों की प्यास बुझाने पर मुस्कुराकर अपनी खुशी की महक हवा में घोल दी हो।
1: बारिश की हर बूंद अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। छत पर गिरती बूंदों की टप टप, पेड़ों की पत्तियों पर मोती सी चमक और ठंडी हवाओं का हल्का सा स्पर्श, यह सब मिलकर प्रकृति का ऐसा संगीत रचते हैं जिसे सुनकर मन अपने आप शांत हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो, मन शांत हो जाता है और कई बार जो हमारा मन है वो हमारे बचपन की यादों में खो जाता है ना। सौंधी मिट्टी की खुशबू हमें बचपन की जो है गलियों में ले जाती है। कागज की नाव, बारिश में भीगना, दोस्तों के साथ खिलखिलाना और घर पे लौट करके अपने शरारत भरे अंदाज में ये कहना कि गरम गरम पकौड़े ले आइए।
1: बिल्कुल है ना, कितनी सरल थी वे खुशियां,
0: बिल्कुल
1: कितनी गहरी थी उनकी यादें।
0: बिल्कुल, और इसके साथ उसे कैसे भूल सकते हैं कामिनी, जो बचपन में हम कागज की नाव बनाया करते थे
1: और उसे दूर तक जाते हुए देखा करते थे
0: और उसके पीछे पीछे जाते भी थे और हम ये भी रेस लगाते थे कि किसकी नाव ज्यादा दूर तक जाती है। तो वो जो कागज की कश्ती थी और उसके सहारे हमारा दूर तक निकल जाना, वो आज भी याद आता है ना।

0: सखियों, मानसून का मौसम पौधे लगाने का सबसे अच्छा समय माना जाता है।
1: बिल्कुल सही कह रही हूँ।
0: बारिश का पानी पौधों के लिए अमृत समान है। घर के आंगन या बालकनी में पौधे लगाए, तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट जैसे पौधे, रंग बिरंगे फूलों के पौधे आप घर पर ही लगा सकते हैं। और हाँ, बच्चों को पौधारोपण के लिए प्रेरित करें, क्योंकि एक पौधा लगाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उपहार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जब बात करते हैं हम पेड़ों और पौधों की, तो इसी तरह से जो हर घर में एक बगीचा होता है, एक वाटिका होती है, तो हम अपने प्यारे प्यारे पौधों को तो भूल नहीं सकते। और जैसा कि तुमने बताया कि बरसात का जो पानी है वो पौधों के लिए अमृत समान होता है, तो मानसून का जो ये मौसम है ना, ये पौधों को त्योहार जैसा लगता है।
0: बिल्कुल।
1: और इन

व्यवहार में एक बात और है कि उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो एक्स्ट्रा केयर कुछ इस तरह से कि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और बरसात का पानी बहुत ज़्यादा अगर पौधों को मिल जाएगा और अगर उसमें ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है या जो गमले लगे हुए हैं उसमें नीचे का हॉल अगर बंद है तो और उसमें बहुत ज़्यादा पानी का भराव हो गया तो उसकी जड़ें गल जाएगी, है ना। तो इसलिए पानी उसमें रुकना नहीं चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हमारे जो नाजुक जो इंडोर प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैक्टस है या और जो दूसरे इंडोर प्लांट्स हैं तो उनको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसे में अभी जब बरसात की शुरुआत ही हुई है तो हम उन पौधों को ले जा करके किसी टीन शेड के नीचे रख दें या बालकनी के नीचे रख दें ताकि उस पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं गिरे और इस तरह से हम इस उसको शिफ्ट करके उनको नया जीवन भी देंगे। तो पौधों को थोड़े से प्यार की ज़रूरत है। फिर देखिए आपकी जो वाटिका है वो किस तरह से मुस्कुराएगी और अभी हम मुस्कुराते हैं इस प्यारे से।

0: क्यों बरसात के मौसम में स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही कह रही हो कामिनी। और उमंग और तरंग से हमारा ये सफर चल रहा है, लेकिन इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि स्वास्थ्य का ख्याल रखना है और स्वाद भी बना करके रखना है।
0: बिल्कुल,
1: तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा?
0: क्योंकि बदलता मौसम अपने साथ कई प्रकार की बीमारियां लाता है, इसलिए यह भी जरूरी है कि हम अपने परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: इसके लिए गर्म और ताजा भोजन करें, अदरक तुलसी और हल्दी का सेवन करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, कटे हुए फल और बाहर का खुला खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। भाई मुझे तो इस मौसम में अदरक तुलसी और शहद से बनी चाय बहुत ही पसंद है।
1: क्या बात कर ली तुमने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि ये चाय तो मुझे भी बहुत पसंद है। और जब मौसम बदलने की बात कर रही हो तो उस चाय में अगर काली मिर्च और गिलोय वगैरह जो है इसको भी मिला दिया जाए ना, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है और हम जो सर्दी खांसी हो गई या मौसमी बुखार जो हो जाता है उससे हम बचे रह सकते हैं।
0: ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं होती बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही बरसात के मौसम में जब स्वाद से उसको ना जोड़ा जाए तो हर घर में चाय के साथ में गर्मा गर्म पकौड़े तो है ही हैं, उसके साथ में भी बहुत सारी चीजें होती है। तो आज कामिनी तुम कुछ कह रही थी कि मैं भी कुछ बरसात से स्पेशल कुछ बना के आई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जब बरसात की शुरुआत हो ही गई है तो आज संडे भी और समय भी और कहते हैं ना मौका भी है और दस्तूर भी है, तो दाल बाटी और वो तो बनना बनता ही है।
1: बिल्कुल, तो आज तुम दाल बाटी बना करके आई हो। और अगर हम हमारे शहर की बात करें तो हमारे शहर का मिजाज भी कुछ ऐसा है कि यहाँ हम जो जोधपुरी हैं वो मिर्ची बड़ा और समोसा खाए बिना तो रह ही नहीं सकते।
0: बिल्कुल, जब बनती है गली में वो कचोरी है और तो वो पुकारती है कि आ जाओ।
1: बिल्कुल, और हम भी दौड़े चले आते हैं। हाँ, यहाँ पे ये
0: कह दूर दूर तक इतनी अच्छी आती है ना कि कोई डाइट पे भी होना तो उस दिन तो जरूर खाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे कि हम लोग हैं डाइट का भी ख्याल रखते हैं, बस ये है कि मौसम का लुत्फ उठाने के लिए हम खा सकते हैं, लेकिन हमें अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान रखते हुए
0: ये चीजें अपन घर पे भी बना के खा सकते हैं ताकि सेहत भी अच्छी रहे और इम्यूनिटी भी बने।
1: और बासी खाना खाने से हमें इस मौसम में बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि होता यह है कि बासी खाना जो है वो इस मौसम में जब मौसम बदल रहा होता है तो सड़ने का जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी हो जाती है, और हम अगर बासी खाना खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो भाई ये तो हो गई हमारे खाने की बात, लेकिन जब हमने किचन की तरफ रुख कर ही लिया है तो यहाँ पे हम अपनी सखियाँ जो कि बहुत स्मार्ट हैं, उन्होंने पूरी तैयारी से मानसून की तैयारी भी कर ली है, तो उन्होंने भी अपनी सूजी को मैदे को भून करके एयर टाइट डब्बों में बंद करके रख ही दिया होगा, और साथ ही इस मौसम में दालें वगैरह जो होती है और सूखे मसाले होते हैं उनमें भी कीड़े लगने का डर रहता है, तो उनको भी भून करके या फिर एयर टाइट डिब्बों में रखें। और साथ ही जब आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये कोशिश कीजिए कि उनको छोटे डब्बों में निकाल करके फिर इस्तेमाल करें,
0: ताकि पूरी पूरी यूज में नहीं ले और वो सेफ रहे,
1: वो जो है नमी के कॉन्टेक्ट में आकर के सीलन ना हो उनमें। इन बातों का ख्याल रखना है। तो हम जब मेघा को पुकार ही रहे हैं तो उसके लिए तैयार होकर के पुकारा जाए तो फिर मजा दोगुना हो जाएगा।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नए झुमके? ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या? जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: तो सखियों, कार्यक्रम चल रहा है नारी वाटिका और इसमें हम आपकी दो सखियां समीना और मेरे साथ हैं
5: कामिनी।
4: तो कामिनी, हम जब बात कर रहे हैं बरसात के मौसम की या मानसून की, तो मानसून अपने साथ में यादों के झोंके लेकर के आता
5: है। बिल्कुल, लेके आता है, चाहे वो बचपन की हो, चाहे जवानी की हो, चाहे बुजुर्गों के साथ बैठ के उनकी वो बरसात की। कई सारी ऐसी घटनाएं होती है, क्योंकि कई बार होता है कि जब बारिश हो रही होती है तो अपन घर के बाहर होते हैं, घर के अंदर होते हैं या कहीं घूमने जा रहे होते हैं, तो वो यादें जो है वो अपने को लाइफ टाइम तक याद रहती है।
4: बिल्कुल बिल्कुल। तो यादों के झरोके में सबसे पहले जो याद आती है वो होती है हमारे बचपन की याद
5: है। बिल्कुल, जब पहली बारिश होते ही हम घर से भाग जाते थे और कागज की नाव बनाकर पानी में बहाते थे और उसे दूर दूर तक जाते देखते थे। बारिश में भीगने पर माँ की डांट भी मिलती थी, लेकिन गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का स्वाद सारी डांट भुला देते थे।
4: बिल्कुल।
5: स्कूल की छुट्टी अगर बारिश की वजह से हो जाए तो लगता था जैसे कोई त्योहार आ गया।

0: कीचड़ में उछलना और दोस्तों के साथ मस्ती करना, बिना किसी चिंता के मुस्कुराना, यही तो था बचपन।
1: बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद में जब हमने अपनी उस दहलीज पर कदम रखा, जब हम थोड़े से बड़े हो गए, हमें थोड़ी सी समझ आ गई, लेकिन जब बरसात की बूंदें गिरती थी तो वो बचपन की जो शरारत है वो फिर से हमारे अंदर लौट आती थी। और हम चाहे समझदार भी क्यों ना हो जाए, हम जवानी की दहलीज पर भी हमने कदम क्यों ना रख दिया हो, हम एक अलहड़ तरीके से उस बरसात के मौसम में झूम कर नाच उठते थे।
0: बिल्कुल।
1: और बस मन करता था कि अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ कहीं ऐसी जगह पे जाया जाए या बरसात के मौसम का पूरा लुत्फ उठाया जाए।
0: बिल्कुल। आज भी जब बारिश होती है, लेकिन जिम्मेदारियों की छतरी के नीचे हम अक्सर भीगना भूल जाते हैं। काश जिंदगी हमें एक दिन फिर वही बचपन लौटा दे, जहां बारिश सिर्फ मौसम नहीं था, खुशियों का दूसरा नाम था।
1: बिल्कुल, खुशियों का दूसरा नाम, और कहते हैं कि जिंदगी चलते रहने का नाम है। और देखो ना, जब कामिनी हम बात करते हैं हमारे बचपन की, तो हमें हमारे बुजुर्गों के वो अनुभव भी याद आते हैं। जब बरसात होने वाली थी तो वो अपने अनुभवों से हमें कुछ कहानियां सुनाते थे, और उनके अनुभवों से सुनी हुई जो कहानियां हैं वो आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनती है। और उनका कहानी सुनाने का अंदाज वो तो बिल्कुल अलग होता था। वो जब कहानियां सुनाते थे तो उसमें बहुत सारी सीख होती थी, वो सीख हमारे जीवन में भी काम आती है। जैसे कि बरसात के मौसम में हम कहीं जा रहे हैं, आजकल देखो ना, सेल्फी लेने का जो है क्रेज है, बिल्कुल, और इसके साथ ही हम हर उस नजारे को कैद कर लेना चाहते हैं जिसको हम देखते हैं। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम नजारों को कैद तो करें, लेकिन उन नजारों का लुत्फ भी उठाएं। कई बार होता है कि हम फोटोग्राफी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन नजारों का सही तरीके से जीवन में लुत्फ ही नहीं उठा पाते। तो कोशिश ये कीजिए, और साथ ही जब आप सेल्फी ले रहे हो या फोटोग्राफी कर रहे हो, किसी हिल स्टेशन पे आप गए हो, तो वहां पे हमारे बुजुर्ग तो यही सलाह देते हैं अपनी कहानियों के माध्यम से कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: बिल्कुल। जब बारिश हो रही होती है तो अपने मन की जो भावनाएं हैं उनको कविता के रूप में लिखना, शायरी के रूप में लिखना, अपनी मनपसंद किताब खोल के पढ़ना, ये सब अपनी यादों का एक पिटारा ही लेके बनाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें हमारे बुजुर्गों की जो कहानियों के अनुभव हैं वो हमारी जिंदगी की कहानी से किस तरह मिलते हैं कि छोटी सी कहानी से और बारिशों के पानी से सारी वादियां महक उठती है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।

0: कामिनी, बरसात का मौसम है ना, वो उसमें अपने आप में बहुत सारे साज छुपे हुए हैं. तो टपकती बूंदों में बहुत सारे साज छुपे होते हैं, बस उसको महसूस करने की जरूरत होती है. और वो जो साज होते हैं ना, वो बरसात की बूंदों में हमें सुनाई देते हैं और वो हमारे मन को बहुत सुकून देते हैं. देखो ना, बरसात के मौसम में जब दूर कहीं झिंगुर भी बोलता है तो उसमें भी हमें म्यूजिक सुनाई देता है ना. तो जिंदगी में हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि जो है पॉजिटिविटी ढूंढना हमारे अंदर खुद में होना चाहिए, कि हम कैसे हर मौसम में, हर मौसम का लुत्फ उठाते हुए पॉजिटिविटी को ढूंढ सकते हैं. और जो म्यूजिक है, जो साज है, वो अपने आप में एक पॉजिटिव एनर्जी देता है. और जब उस एनर्जी से हम भरपूर हो जाते हैं ना, तो फिर हमारा मन मयूर जो है वो नाच उठता है और मन करता है कि हम भी ऐसे आसमान में उड़े, ऐसी जगह जाए और खुल करके नाचे, है ना.
1: बिल्कुल. तो बरसात में फैशन और आराम दोनों का ही संतुलन बहुत जरूरी है.
0: बिल्कुल.
1: तो इस दौरान हल्के और जल्दी सूखने वाले कपड़े पहनने चाहिए, गहरे रंगों का चुनाव करना चाहिए और हाँ, आरामदायक फुटवेयर पहनने चाहिए. तो जब नाचना है, कहीं घूमना है, करना है, तो इन चीजों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा.
0: बिल्कुल.
1: स्किन की केयर भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए स्किन को साफ और सूखा रखें, खूब पानी पिए और मॉइस्चराइजर का उपयोग करना चाहिए.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो कि इस मौसम में अगर भारी भरकम कपड़ों के बारे में अगर हम सोचें ना, तो भी सोच के भी मन एक बार से ये हो जाता है कि नहीं भाई, ना बाबा ना, ऐसे कपड़े तो हम नहीं पहन सकते. तो इस सीजन के लिए हम अपनी अलमारी में प्योर कॉटन के कपड़ों को रखें, लाइट कलर और लाइट वेट जो फैब्रिक्स हैं उनका इस्तेमाल करें. और साथ ही साथ में हम, जैसा कि आपने बताया कि चेहरे की त्वचा का या स्किन का भी हमें विशेष रूप से ख्याल रखने की जरूरत है. तो इस मौसम में देखो है ना, हमारी जो त्वचा है वो कामिनी चिपचिपी सी, ऑयली हो जाती है. तो उसके लिए हमारी दादी नानी का बताया हुआ नुस्खा है, उसको हम अपना सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी और उसमें गुलाब जल मिला करके उसको अगर चेहरे पर लगाएं तो हमारा चेहरा एकदम ग्लोइंग और फ्रेश हो जाएगा. और जब हम खुद से प्यार करती हैं, खुद से अच्छा लगना चाहती हैं, तो हमारा जो मन है वो नाच उठता है. और देखो, बारिश में, पहली बारिश में भीगने का जो मजा है ना, वो कहीं और किसी दुनिया के वाटर पार्क में तो है नहीं.
1: बिल्कुल.
0: तो बरसात जब हो रही हो और उसमें जब हम उसकी बूंदों के साथ में जब थिरकते हुए जब नाचते हैं, तो मन खुद ब खुद ही ये कह उठता है कि नाचूं आज छम छम.
1: छम छम छम.

राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।

0: जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की

0: सखियों, कभी आपने गौर किया है कि जब ये पहली बारिश आती है तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, हमारा मूड भी एकदम से रिफ्रेश हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जो मिट्टी की सौंधी सी खुशबू होती है ना, सीधे दिमाग को सुकून पहुंचाती है और सारा तनाव पल भर में गायब कर देती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। ऐसा लगता है जैसे कुदरत हमें एक मौका दे रही है कि अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी को थोड़ी देर के लिए हम थाम लें, खिड़की के पास बैठें और बस इस पल को जिएं। ये जो वक्त है ना, ये वक्त है खुद से जुड़ने का, है ना। हमारे जो अधूरे काम, हमारी जो अधूरी इच्छाएं रह गई है, उनको फिर से जीने का, उनको पूरा करने का, अपने पुराने दोस्तों से बतियाने का, उनके साथ वक्त गुजारने का
0: और अपने आप को भी पहचानने का।
1: बिल्कुल,
0: बारिश हो रही हो और आप उन बूंदों के साथ अपने आप को जिस तरीके से अपने आप को
1: महसूस करते
0: महसूस करते हो, जोड़ते हो, वो तो फीलिंग्स ही बहुत अलग है।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए, इस सुहाने मौसम में हम अकेले अकेले क्यों मजे लें, हमारी नारी वाटिका के परिवार को भी शामिल करते हैं।
1: वो तो हमारे साथ है ही, और हमारी जो सखियां हैं वो भी इस पल को महसूस करें, क्योंकि देखिएगा शाम तक आप जब तैयारी कर लेंगी तो बरसात फिर से आ जाएगी, और फिर हमें याद जरूर करिएगा और हमारे ताल से ताल मिलाइएगा।

0: समीना, बरसात के मौसम में सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी बहुत ही जरूरी है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि पानी की बूंदें जब गिरती है धरती पे तो वो सड़कों पर, घरों की छतों से बाहर और इतना जल भराव हो जाता है कि हमें अपने साथ साथ अपने समाज की भी जिम्मेदारियों का कुछ एहसास होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: जैसे जल भराव वाली जगहों से दूर रहना है और गाड़ी चलाते समय गड्ढों का विशेष ध्यान देना है।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही अभी जब बरसात का मौसम, पहली बरसात जब दस्तक दे रही है, तो हमारी छत पर जाकर हमें ये चेक करना है कि कहीं कोई ऐसा सामान तो नहीं रखा जिसमें पानी इकट्ठा हो जाए। पानी जैसे कूलर है या पानी इकट्ठा होने वाला कोई सामान है तो उसको हम वहाँ से हटा दें ताकि मच्छर नहीं पनपेंगे, क्योंकि इस मौसम में मलेरिया वाले मच्छर बहुत जल्दी पनपते हैं, तो ये भी बीमारी का कारण बनते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: और बिजली के खंभे और टूटे हुए तारों से हमेशा सावधान रहना है। आसपास स्वच्छता बनाए रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बिल्कुल। और जब हम किचन की बात कर रहे थे तो किचन में जो हमारा सबसे साफ सुथरा जो एरिया है उसके डस्टबिन का भी हमें पूरा ख्याल रखना है। हम कई बार लेजीनेस हो जाता है या हम लोगों को ये रहता है कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद में हम कचरा बाहर डाल देंगे, तो हम गीले सूखे कचरे को तो अलग रखें, उस तरीके से रखना ही है। और साथ ही हम कचरे का निस्तारण जल्द से जल्द करें, क्योंकि नमी की वजह से बहुत ज़्यादा कीटाणु जल्दी से फैल जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षित परिवार और स्वच्छ समाज और हरा भरा पर्यावरण ही एक बेहतर भविष्य की पहचान दे सकता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: तो इसलिए हरा भरा पर्यावरण रखने के लिए पौधे जरूर लगाएं, शीट बॉल्स जो होते हैं उनको आप इस मौसम में दूर दूर तक बिखेर दीजिए, तो प्रकृति मुस्कुराएगी तो हमारा जीवन खुद ब खुद संवर जाएगा।

0: टपकती बूंदों में सरगम की मिठास है, हर बूंद में छुपा कोई जज्बात खास है। राग मेघ मल्हार सा गूंजा है आसमां, और मौसम का हर साज आज मेरे पास है।
1: क्या बात है।
0: तो कामिनी, बातें करते करते समय का पता नहीं चला और अब समय हो चला है हमारी सखियों से विदा लेने का। तो सखियों से यही कहेंगे कि बारिश की जो ये पहली दस्तक है, जितनी खूबसूरत होती है उतनी हमारी जिम्मेदारियां भी लेकर के आती है। तो आज हमने जाना कि कैसे ये सुहाना मौसम हम लोगों के लिए बहुत ही हसीन और बहुत खास हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब नारी सजग होती है तो पूरा परिवार सुरक्षित और खुशहाल होता है।
0: बिल्कुल।
1: अब वक्त हो चुका है इस महकती हुई वाटिका से विदा लेने का।
0: तो चलते चलते हम अपनी नारी वाटिका की टीम से आपको रूबरू करवाते हैं कि HPT ट्रांसमिशन से हमारे साथी थे विक्रम सिंह भाटी और दिलीप सिंह परमार। कंट्रोल रूम से हमारा सहयोग किया राय सिंह राव ने, और कंसोल से आपको खूबसूरत नगमे सुनाए मोनिका ने, और कार्यक्रम की परिकल्पना और संयोजन किया मनीष सोलंकी ने। दीजिए अब इजाजत अपनी रेडियो सखी समीना
1: और कामिनी को।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन

0: पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस LNG की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित LNG के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। हुर्मुज जलडमरू मध्य से LNG की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है 1 साल 2 साल नहीं पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं अब 125 दिन रोजगार 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी

0: संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: The significance is immense.
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
2: Greater economic engagement between these two large countries.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल से जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक एआई संवाद में एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो एआई की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं। रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
4: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी

0: प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
1: दोनों जने मिलकर सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
2: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चलो सावन में।
0: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉ तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वाशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में सुवर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले चार दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले दो तीन दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रूपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का होगा मुकाबला। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में बहु बेटी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आई मिलन की बेला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर का संगीत, फिल्म कश्मीर की कली। सुनिए ये गीत।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अभी आपने सुना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी की कलम से निकला है ये शब्द और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज इसे मिली मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। चलिए सुनते हैं जी चाहता है फिल्म से ये गीत।
1: क्या कहने माशा अल्लाह नजर तीर आपकी, क्या कहने माशा

है। फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज ही हसरत जयपुरी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर सुन रहे हैं।

हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी हमसे मोहब्बत।

0: पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम है राजकुमार हाय हाय जाने वाले।
1: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और कार्यक्रम में अगला ये गीत आपने सुना राजकुमार फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं, और ये गीत हमने लिया है फिल्म गुमनाम से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मोहम्मद रफी की आवाज में गुमनाम फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: पसंद का सिलसिला शुरू किया जाए उससे पहले जान लीजिए इस कार्यक्रम के नियम।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के दूसरे व्यक्तियों के

0: दूसरे व्यक्तियों के अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखे, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील, ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
3: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और कार्यक्रम का अगला पसंदीदा गीत है आप सभी की ओर से जयपुर राजस्थान से पुष्पा दिल्लीवाल और पायल, जिला उज्जैन बोरखेड़ा से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा, आप सभी ने सुनना चाहा है बहु बेगम फिल्म का गीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, साहिल उद्यानवी के बोल, रोशन का संगीत, सुनिए आपकी पसंद पर ये गीत।

तो अब कार्यक्रम मन चाहे गीत में किसका इंतजार हो रहा है खत्म, ये जानते हैं कौन है जिनकी फरमाइश पर अगला गीत हम सुनवाने वाले हैं। आप सभी हैं नाचणगांव जिला।

0: वर्धा महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली भगत, पूर्वी भगत, लता भगत और प्रदीप भगत, साथ ही विशाल भगत, रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत का नाम भी इसमें शामिल है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, आप सभी ने मिलकर पसंद किया है 10 नंबरी फिल्म का गीत, जो हम आपको आपके पसंद पर सुनवाने वाले हैं। इस गीत में सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: कहत कबीर सुनो भाई साहब।

दस नंबरी फिल्म का ये गीत आपने सुना और कार्यक्रम मन चाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। और इस कार्यक्रम में अगला गीत किनकी फरमाइश पर शामिल होने वाले ये बताएं, उससे पहले बता दें कि दो गुलाब फिल्म के गीत के लिए फरमाइश आई है और फरमाइश भेजी आप सभी ने प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से वी पूनम नायडू साजन के मास्टर शिवांशु ऋषु अभिषेक नायडू दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन नईमा बेगम कासिम अली नदीम अली और जुनैद अब्बासी आप सभी के पसंद पर सुनवाएंगे दो गुलाब फिल्म से गीत। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि ये खत छाटते छाटते हमें मिली एक ऐसा पोस्टकार्ड मिला जिसमें दक्षिण भारतीय भाषा में लिखा था कुछ, तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपकी भाषा हिंदी से अलग है तो आप अंग्रेजी में अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं ताकि नाम शामिल हो सकें। तो अब सुनते हैं दो गुलाब फिल्म से किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में ये गीत, इंदिवर के बोल पप्पी लाहिड़ी का संगीत। सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

दो गुलाब फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। अगले गीत की फरमाइश हमें आई है पारण सावंकी से, गजानन निखार, खुशाल सोनकुसरे और नामदेव भूते की, और आपने सुनना चाहा है आवारा फिल्म से गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, मुकेश की आवाज। सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम मन चाहे गीत में अगली फरमाइश जो पूरी हो रही है, सौदागर फिल्म के लिए ये गीत की फरमाइश आई है ग्राम सरखों जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से राजेश रेखा साव, कमलेश रावी साहू, हनी हिमांशु, डिम्पी और सेजल साव के साथ ही ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जाधव प्रशांत, राजे जाधव, संचित वायात, सर्वद देशमुख, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सानवी और कल्पना की। आप सभी के पसंद पर सौदागर फिल्म से गीत सुनिए। कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास की आवाजें, सुखविंदर सिंह की आवाज भी साथ ही, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत।

0: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया बिरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
3: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
4: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा।
3: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
4: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
5: मन चाहेगी

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। हिंदी रूपांतरण किया है सीताराम चतुर्वेदी ने, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। तो आइए सुनते हैं नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग।
1: हाँ तो महाराज, आज्ञा कीजिए।
2: देखो सुंदरी, बहुत दिनों से इसी अशोक की तरह मुझमें भी थैरी के फूल नहीं आ रहे।

0: इसलिए आज तुम अपने स्पर्श का अमृत पिलाकर अपने इस अनन्य प्रेमी के मन की भी साथ पूरी कर दो।
1: हाँ हाँ मालविका, पूरी कर दो इनके मन की साथ।
0: कौन
2: रानी हीरावती?
1: अशोक में तो अभी फूल नहीं आए हैं, पर ये महाराज तो अभी से फूले जा रहे हैं। ये मालविका तो जैसे गुंगी हो गई है। मैं पूछती हूँ तो फिर क्या है?
0: मित्र, अब क्या किया जाए?
2: जल्दी से पांव का सहारा लिया जाए।
1: महाराज बकुलावलिका, तूने ये दूती का अच्छा काम अपने ऊपर लिया है, अब कराना आर्यपुत्र के साथ पूरी।
3: देवी, आप तो व्यर्थ ही हम पर क्रोध कर रही हैं।
4: भला हम कौन होती हैं
3: महाराज के साथ पूरी करने वाली। आओ मालविका, हम चले।
4: चलो।
1: ओह, इन पुरुषों पर भूल कर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अब तक आर्यपुत्र की चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास करती रही। ओह, मैं क्यों इनके प्रेम जाल में फंसी।
2: महाराज, अरे महाराज, कुछ तो बात बनाइए। लंगे हाथों पकड़ा गया चोर भी कह देता है। मैं चोरी करने के लिए सिर नहीं लगा रहा था, मैं तो यही देखना चाहता था कि आया मैंने दीवार फोड़ने की विद्या ठीक सीख ली है या नहीं।
0: सुंदरी, मालविका जैसी दासी से भला हमें क्या लेना देना। तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए थोड़ा मन बहलाने के लिए हम।
1: जी हाँ, आप एकदम सच कह रहे हैं। मुझे यदि पता होता कि बेचारे आर्यपुत्र को मन बहलाने के लिए यही वस्तु मिली है तो मैं अभागिन बीच में आती ही क्यों।
0: परंतु देवी,
1: मेरे साथ छल न कीजिए। वहाँ आड़ में खड़े होकर मैंने सब कुछ देखा भी और सुना भी।
0: ओह, मुझसे निश्चय अपराध हुआ, क्षमा कर दो। शांत हो जाओ देवी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, अब मान भी जाओ ना।
1: ये मालविका के पैर नहीं जो आपके मन की साथ पूरी कर देंगे। आनी पुड़ी का, हम चलेंगे।

0: महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया महाराज।
1: क्या हुआ?
0: महारानी धारिणी ने मालविका और बकला वलका के पैरों में बेड़ियां डलवा कर दोनों को नीचे के भंडार वाली काल कोठरी में बंद कर दिया महाराज।
1: ओह, ये सब हमारे प्रेम की बात जानकर ही किया गया होगा। हमारी किस वैरी ने देवी धारिणी को जाकर भड़काया?
0: छोटी रानी इरावती ने महाराज।
1: लगता है इरावती हमसे बहुत रुष्ट हो गई है।
0: महारानी धारिणी की पांव की चोट अभी ठीक नहीं हुई है ना महाराज, तो परिवराज का कौशिकी उनके पास बैठी थी, तभी इरावती भी कुशल मंगल पूछने के लिए वहां पहुंच गई और बातों बातों में आपका पूरा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: अब क्या होना था महाराज, मालविका और बकला वलका को बंदी बनाकर ना कन्याओं के समान ऐसे पाताल में भेज दिया जहाँ सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती महाराज।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। कहो मित्र, उन्हें छुड़ाने का कोई उपाय हो सकता है या नहीं?
0: अब उपाय क्या होगा महाराज, निचले भंडार की पहरेदार को महारानी धारिणी ने कह दिया है कि उन दोनों अभागिनों को बिना उनकी अंगूठी देखे कभी ना छोड़े। अब महारानी की वो अंगूठी कैसे हाथ लगे महाराज?
1: मित्र, कोई कोई युक्ति तो लड़ाओ।
0: युक्ति युक्ति महाराज, महारानी की अंगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है ना।
1: हाँ।
0: तो उपाय मिल गया, मिल गया महाराज, मिल गया, मिल गया, मिल गया। कोई छिपकर सुन रहा हो कान में सुनिए। हाँ। मैं नाग को बांध करके नाग मुद्रा लेके उसके अंदर।
1: ओ जियो मित्र, बहुत बढ़िया उपाय सोचा तुमने, बस अब देर न करो।
0: तो आप महारानी धारिणी के पास जाइए, वे इस समय पवन गृह में दासियों से घिरी पलंग पर बैठी परिवराजिका से कथा सुनकर मन बहला रही हैं।
1: तो हमारे लिए वहाँ जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रतिहारी जयसेन को सब समझा दो।
0: अभी समझाए देता हूँ महाराज, आप वहाँ पहुँचिए। जयसेन इधर आओ।
2: कहिए आइए गौतम।
0: कान में सुनो।
3: जय हो, हरे पुत्र की जय हो। विराजिए, आपकी विजय हो देव।
1: प्रणाम भगवती। कहो देवी, पाँव की पीड़ा कुछ कम हुई?
3: आज तो कुछ कम है देव।
4: अरे शियारी गौतम घबराया हुआ इधर चला रहा है, हाथ का अंगूठा इसने जनेऊ से क्यों बांध रखा है?
5: मुझे महाराज पड़ गया, मुझे बताइए महाराज, मुझे सांप ने काट लिया।
1: ये तो बहुत बुरा हुआ। प्रतिहारी भाग कर वैद्य ध्रुव सिद्धि को बुला लाओ।
2: जैसी देव की आज्ञा।
1: मित्र गौतम, कहाँ घूम रहे थे तुम जो सांप ने?
0: महाराज, मैं देवी का कुशल मंगल पूछने के लिए आने लगा तो सोचा भेंट के लिए दो चार फूल ही लेता चलो। मैं प्रमद वन चला गया, वहाँ फूल तोड़ने के लिए दाहिना हाथ बढ़ाया ही था कि काट

0: सॉरी करता आपने मुझे डस लिया महाराज। ये देखिए अंगूठे पर उसके दांतों के चिन्ह।
1: हाय हाय, मेरे ही कारण बेचारे ब्राह्मण के प्राण संकट में पड़े हैं।
0: अरे फांसी का ने मुझे दबोच लिया।
2: घबराओ मत, हो सकता है कि सांप विषैला ना हो।
0: मेरा तो अन्नदा करता जा रहा है, सारे शरीर में फैलता जा रहा है।
1: हाँ, इसकी तो दशा बिगड़ती जा रही है। अरे कोई संभालो इस दीन ब्राह्मण को।
3: अरे गौतम, तनिक संभालिए, धीरज से काम लीजिए।
0: महाराज, मैं आपका मान सका हूँ, सुनाते मेरे बात, मेरी निपुती माँ की देखभाल कीजिएगा।
2: ये क्या कह रहे हो मित्र, अभी वैद्य आकर तुम्हें अच्छा कर देगा।
4: महाराज महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि आर्य गौतम का उपचार उनके चिकित्सालय में ही हो सकेगा, इन्हें वहाँ ले जाना होगा। महाराज
2: तो संभाल कर इन्हें वहाँ ले जाओ।
4: देव की कैसी आज्ञा।
0: कौन जाने मैं जीव या मरूं, सेवा करते हुए मुझसे जो कुछ भूल चुक हो वो क्षमा कीजिए।
1: नहीं नहीं आर्य गौतम, भगवान करे तुम बहुत दिन जियो।
4: याद आया महाराज, वैद्य जी ने कहा है कि जलघट विधान द्वारा किसी ऐसी वस्तु से इनका विष उतारा जाएगा जिसमें नाग मुद्रा डली हुई हो। क्या कोई ऐसी वस्तु मिल सकती है?
1: मेरी संगूठी में नाग मुद्रा जड़ी हुई है, ये ले जाओ, काम हो जाने पर मुझे लौटा देना।
4: देवी की जैसे आज्ञा। आइए आइए गौतम।
5: जैसे ये अंगूठी मुझे दो, कुछ देर बाद मंत्री जी का बहाना करके महाराज को बाहर बुला लाना और फिर यथाशीघ्र उन्हें गुप्त मार्ग से प्रमद वन में पहुंचा देना, समझे?
4: जो

0: राजी गौतम, आज आप निचले भंडार में कैसे आए?
1: ये देखो महारानी की अंगूठी।
0: अंगूठी तो उन्हीं की है।
1: तो तुरंत मालविका और बकला वलका को अपनी उस काल कोठरी से मुक्त करो।
0: ओह, यहाँ कितना अंधेरा है,
1: काल कोठरी में तो और भी।
0: अभी मशाल जलाती हूँ और उन दोनों को बंधन मुक्त करती हूँ। परंतु मैं सोच रही हूँ, इतने सेवकों के रहते देवी ने आप ही को क्यों भेजा?
1: देवी ने क्यों भेजा? अरे तो तुम्हें नहीं मालूम, ज्योतिषियों ने कहा है कि आजकल महाराज के ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, इसलिए तमाम बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। देवी ने तुरंत मुझे बुलाया और।
0: ठीक है ठीक है, मैं उन दोनों को अभी छोड़ देती हूँ।
2: आप धन्य है आर्य गौतम, परंतु आपने खेल कैसे खेला?
1: ये मैं फिर बताऊंगा बकला वलका। इस समय तुम मालविका को गुप्त मार्ग से समुद्र ग्रह में ले जाकर प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को ढूंढ कर वहीं लाया।
2: जो आ गया।

0: सखी मालविका, महाराज को प्रणाम करो।
1: आपको प्रणाम।
0: अरे ये तो समुद्र गृह में लगा हुआ महाराज का चित्र है।
1: अच्छी सखी, तुम भी मुझे बना रही हो।
0: बनाना कैसा, इस चित्र में महाराज ही तो है। तो आओ हम दोनों प्रणाम करें।
1: स्वामी की जय हो।
0: सखी, उस दिन हड़बड़ी में मैं महाराज को अच्छी तरह देख भी नहीं पाई थी। आज इस चित्र में चीख भर कर महाराज का रूप देखकर भी मैं अखा नहीं रही हूँ।
1: क्यों सखी,
0: चित्र में ये कौन स्त्री है जिसकी ओर महाराज मुंह घुमाकर बड़ी प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं?
1: ये
0: छोटी रानी इरावती है।
1: ओ
0: सखी, महाराज का प्रेम सब रानियों पर एक सा नहीं जान पड़ता। देखो ना, सबकी ओर से ध्यान हटाकर वे केवल देवी इरावती का ही मुख निहार रहे हैं।
1: ये भोले चित्र के महाराज को सचमुच का महाराज समझकर दाह कर

0: लगी है। अच्छा तो मैं भी इसे बनाती हूँ।
1: क्यों ना महाराज देवी इरावती का मुख निहारे, यही तो महाराज को सबसे अधिक प्यारी है।
2: तो फिर मैं क्यों तिल तिल अपनी देह जलाऊं?
3: एक हमारे नैनी
1: स्वामी की जय हो।
4: प्रिय, चित्र में चित्रकार द्वारा अंकित हमारी मुख मुद्रा को देखकर तुम क्यों रोट गई? तुम्हारा ये अनन्य दास तो तुम्हारे सामने खड़ा है।
0: तो क्या मैं सचमुच चित्र में चित्रित स्वामी से रोट गई थी?
1: स्वामी की जय हो।
4: प्रिय,
5: अरे आप कहते कहते टुकटू हो गए महाराज।
4: मित्र क्या बताऊं, इन पर भरोसा नहीं हो रहा। हमारी आंखों में बसी है परंतु देखते देखते ओझल हो जाती है। हमारी
1: सखी, तुमने महाराज को बहुत झकाया है, अब कुछ ऐसा जतन करो कि तुम पर भरोसा करने लगे।
0: सखी मुझे अभागी की तो महाराज से स्वप्न भी कभी भेंट नहीं हुई।
1: महाराज इसका उत्तर तो आप ही दे सकते हैं।
4: उत्तर क्या दें बकलावल का, हम तुम्हारी सखी से अपनी कोई सेवा नहीं कराना चाहते। हम तो एकांत में प्रेम की अग्नि को साक्षी बनाकर इनकी सेवा के लिए अपने को समर्पित किए दे रहे हैं।
6: अरे बकला वालिका, उधर देख उस नन्हे अशोक के पत्तों को, वो हिरण चले जा रहा है। आ, उसे भगाने
5: चले।
6: महाराज घबराइए नहीं, मैं इस समुद्र गृह के द्वार पर हूँ।
0: निपुणिका, ये सोचना ठीक है कि आर्य गौतम समुद्र गृह के द्वार पर अकेले सो रहे हैं?
7: मैं स्वामिनी से झूठ थोड़ी ही बोलूंगी।
0: बेचारे को सांप ने काटा था, तो चल वहीं चलकर हम उसका हालचाल जान ले। और
7: देवी, आप कुछ कहते कहते रुक क्यों गई?
0: उस समुद्र गृह में महाराज का एक चित्र है ना, वहाँ चलकर चित्र में अंकित महाराज को भी मना लिया जाए।
7: चित्र की बजाय आप स्वयं महाराज को ही जाकर क्यों नहीं मना लेती?
0: अरे पगली, किसी दूसरे से प्रेम करने वाले महाराज हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे उनका चित्र। मुझे दुख है कि उस दिन उन्होंने मुझे इतना मनाया पर मैं रूठी ही रही। आ चले समुद्र गृह की ओर।

0: देवी वो देखिए आज ही गौतम सांड की तरह समुद्र गृह के द्वार पर बैठे बैठे सो रहे हैं।
1: बेचारे की कैसी दशा है, लगता है विष का विकार अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ।
0: पर इनके मुंह पर जो प्रसन्नता झलक रही है उससे तो ऐसा नहीं लगता।
2: हे देवी मालविका।
0: सुना स्वामिनी, यह गौतम पेट तो भरता है आपके दिए लड्डुओं से और स्वप्न में नाम रट रहा है मालविका का।
2: मालविका, तुम छोटी रानी रावती से भी ऊंचा स्थान पाओ।
3: ये कृतघ्न ब्राह्मण।
0: ठहरिए, आइए हम दोनों उस खंभे की उठ में छिप जाएं। अब यहाँ से मैं इस डरपोक ब्राह्मण पर ये सांप जैसी टेढ़ी लकड़ी फेंकती हूँ।
3: महाराज बताइए, महाराज बताइए, मुझ पर सांप आ गया महाराज।
4: डरो मत मित्र, मैं आ रहा हूँ।
1: महाराज उधर ना जाइए।
5: अच्छा तो ये बात है समुद्र गृह में महाराज और मालविका।
2: अरे ये तो लकड़ी है, मैं समझा था कि केतकी के कांटों से सांप के दांतों के झूठ मूठ चिन्ह बनाकर मैंने सांप पर जो कलंक लगाया था उसी से मुझे दंड देने के लिए सचमुच का सांप आ गया। मैं बेकार ही डरा।
4: कहाँ है सांप?
1: महाराज आगे न जाइए, वहाँ एक कुटिल सांप छिपा बैठा है।
6: महाराज रुकिए।
5: कहिए, दिन में मिलने वाले इस प्रेमी युगल के मन की साथ पूरी हो गई?
4: देवी रावती,
1: सखी बकुला बलिका, ये कैसा है?
5: बकुला बलिका, तुझे बधाई है, दूती के रूप में तूने इन दोनों को मिलाने का जो संकल्प किया था वो आज पूरा हो गया। परंतु मैं पूछती हूँ, तुम दोनों को बंदी गृह से छुड़ाया किसने? निपुणिका भाग कर महारानी धारिणी के पास जा और पूछ के ये सब हुआ कैसे।
0: जो आ गया
3: तो सब गड़बड़ घोटाला हो गया। पिंजरे से छूटा हुआ कबूतर कैसा

0: आखिरा
1: देवी, इन दोनों को हमने ही बंदी गृह से छुड़वाया है। उत्सव के दिन अपने सेवकों को बंदी बनाना उचित नहीं है ना?
2: देवी क्या बात है निपुणिका, तू लौट आई? रास्ते में मुझे निचले भंडार की पहरेदार मिल गई, उसने बताया। आइए इधर कान में सुनिए।
3: सेकी बकुला मलिका, मुझे तो बहुत डर लगता है, पता नहीं क्या होने वाला है।
4: अच्छा तो ये सब इस बामन की करतूत है? क्यों प्रेम नीति के मंत्री महोदय?
0: यदि मान नीति का ज्ञाता होता तो क्या मैं महाराज को ऐसे फंसने देता?
4: मैं सब समझती हूँ, मैं अभी महारानी धारिणी के पास जाती हूँ।
5: सुनो राज प्रासाद वासियों, सुनो एक आश्चर्यजनक समाचार, हर्ष समाचार। महारानी के प्रिय सुनहरे अशोक वृक्ष का हर्ष समाचार, उसका दोहद पूरा हुए 5 लाते भी नहीं।
6: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: प्रजापति महाराज अग्निवीर प्रवर्वन उत्सव में बला रहे।
1: तुंग कुलभूषण विदिशापति महाराज अग्निवीर प्रवर्वन उत्सव।

0: जय हो, विदर्भ विजेता आर्य पुत्र की जय हो।
1: देवी, सुनहले अशोक के फूलने पर आपको भी बधाई।
0: विराजिए देव,
2: विदर्भ विजेता महाराज की जय हो।
1: प्रणाम भगवती।
2: आपके मन की साथ पूरी हो।
0: आर्य पुत्र, फूलों से लदे सुनहले अशोक की शोभा निहारिए। आपके लिए अशोक का एक ऐसा प्रेम गृह बना दिया है।
1: देवी के हाथों अशोक का ऐसा आदर होना ही चाहिए, क्योंकि ये वसंत लक्ष्मी के कहने पर नहीं, देवी के प्रयत्न से फूल उठा है। और हाँ देवी, आज ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दे दी गई है ना?
0: हाँ महाराज, जब से अपने कुमार वसुमित्र को पूज्य सेनापति जी यज्ञ के घोड़े का रक्षक बनाकर ले गई है, तभी से उसके कुशल क्षेम के लिए मैं बराबर 400 स्वर्ण मुद्राएं योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा में देती रहती हूँ।
1: हमारा पुत्र चिरजीवी हो।
3: महाराज की जय हो। विदर्भ से जो कलाकार स्त्रियाँ आई हैं, यदि आज्ञा हो तो उन्हें सेवा में उपस्थित किया जाए।
4: ले आओ।
3: जैसी देव की आज्ञा। लीजिए महाराज, प्रस्तुत है।
5: महाराज की जय हो, महारानी की जय हो।
1: आप लोग किस कला में निपुण हैं?
5: महाराज, हम लोगों ने संगीत सीखा है।
1: लो देवी, इनमें से जिसे चाहो अपने लिए चुन लो।
0: मालविका, आंखें तीव, देखो इनमें से कौन संगीत में तुम्हारा साथ देने के लिए ठीक रहेगी।
5: अरे राजकुमारी, आप यहाँ? जय हो राजकुमारी की जय हो।
0: अरे मालविका, राजकुमारी।
1: मालविका राजकुमारी?
5: हाँ महाराज, ये हमारी राजकुमारी है।
1: कैसे?
5: सुनिए महाराज, आपके सेना ने विदर्भ के राजा को परास्त करके जिन कुमार माधव सेन को बंदी गृह से छुड़ाया है, ये उन्हीं की छोटी बहन मालविका जी हैं।
0: ओह, तो क्या मालविका राजकुमारी है? इसे मैंने

0: बनाया। ओह, चंदन से खड़ाऊं का काम लेकर मैंने कितना बड़ा पाप किया है।
1: भद्रे, बताइए ये इस रूप में यहाँ कैसे आई?
2: मैं निवेदन करती हूँ महाराज, कुमार माधव सेन हम सब लोगों के साथ राजकुमारी जी को लेकर विदिशा आ रहे थे। उनके मंत्री आर्य सुमति जी भी साथ में थे। रास्ते में कुमार माधव सेन को उनके चचेरे भाई विदर्भराज ने पकड़कर बंदी बना लिया। स्वामी भक्त मंत्री सुमति जी हमें पीछे छोड़ राजकुमारी जी को वहाँ से सुरक्षित निकाल कर ले गए।
1: फिर क्या हुआ?
2: आगे का हाल मुझे नहीं मालूम महाराज।
3: आगे का हाल मैं अभागिन बताती हूँ महाराज।
1: भगवती, आप
2: राजकुमारी सन्यासिनी के वेश में, ये तो आर्य कौशिक की जान पड़ती है।
3: हाँ
2: वही है। प्रणाम भगवती।
3: कल्याण हो।
1: भगवती, क्या ये भी आपकी शिष्या है?
3: हाँ महाराज। अब मैं पूरा वृतांत सुनाती हूँ। माधव सेन के मंत्री आर्य सुमति मेरे बड़े भाई थे।
1: अच्छा, अब कुछ बात समझ में आने लगी।
3: माधव सेन ने आपसे अपनी बहन मालविका के विवाह की बात पक्की कर ली थी। जब माधव सेन बंदी बना लिए गए तो मेरे भाई सुमति ने उनका विवाह का संकल्प पूरा करने का बीड़ा उठाया। व्यापारियों का एक दल विदिशा की ओर आ रहा था। मुझे और राजकुमारी मालविका को लेकर मेरे भाई उसी दल के साथ हो लिए। चलता चलता वो दल एक ऐसे मार्ग पर पहुंचा जो जंगल से होकर जाता था।
4: मंत्री जी, ये तो बड़ा ही भयानक जंगल है। यह तो दिन में जैसे रात हो गई हो।
5: डरिए नहीं राजकुमारी जी, हमारे दल के साथ सशस्त्र सैनिक थे।
3: भैया आप भी तो।
5: मेरे जीते जी राजकुमारी जी, रंच मात्र भी भय नहीं होना चाहिए आपको।
4: अरे शेर क्या हुआ? क्या सब लोग एकाएक रुक क्यों गए?
6: जंग जारी है, वो अपना सब सामान और धन चुपचाप यहाँ रख दो।
4: वही हुआ ना जिसका भय था, खेल दिया है।
5: जाइए नहीं, सैनिकों की सहायता से मैं अभी इन डाकुओं को भगाता हूँ।

0: सैनिक एक एक करके घायल हो रहे हैं, सब मर रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे भैया लोग लुहान होकर इधर आ रहे हैं, डाकुओं ने भैया को अकेले ही कर दिया है। मंत्री जी लड़ते लड़ते गिर पड़ो। हम असहाय रह गए।
1: और इस प्रकार मेरे भाई आर्य सुमति ने प्राण देकर अपने स्वामी का भार चुका दिया। उस दुख के आघात से मैं मूर्छित हो गई। जब मुझे चेतना आई तो राजकुमारी मालविका वहां नहीं थी। दुख संताप से टूट कर मैं सन्यासिनी बन गई और आपके राज्य में चली आई। बाद में ये मालविका भी यहाँ दासी के रूप में आ गई। इनसे पता चला कि इन्हें आपके सीमांत रक्षक वीर सेन ने डाकुओं के चंगुल से छुड़ाकर यहाँ महारानी के पास भेज दिया है।
2: ओह, विपत्ति आने पर मनुष्य का कितना अनादर हो जाता है। जो सती कहलाने योग्य रानी थी उससे दासी का काम लिया गया।
3: भगवती कौशिकी, मालविका ऊंचे घराने की कन्या है, ये बात छिपाकर आपने अच्छा नहीं किया।
1: ऐसा न कहिए महारानी, मैंने सोच समझकर ही इस रहस्य को इतने दिन छिपाए रखा। जब इनके पिता जीवित थे तो एक साधु महात्मा ने भविष्यवाणी की थी।
3: वो क्या?
1: उसने कहा था इस कन्या को एक वर्ष तक दासी बनकर रहना पड़ेगा, उसके पश्चात इसका विवाह बड़े ही योग्य और प्रतापी पुरुष से होगा। जब मैंने देखा कि ये भविष्यवाणी आपके चरणों की सेवा करते हुए पूरी हो रही तो मैं चुप्पी साधे रही। और
4: महाराज की जय हो। मंत्री परिषद ने पूछा है कि जीते गए विदर्भ देश की कैसी व्यवस्था की जाए।
2: हम चाहते हैं कि विदर्भ देश यज्ञ सेन और माधव सेन में आधा आधा बांट दिया जाए। दोनों भाई अलग अलग वैसे ही सुख से राज करें जैसे सूर्य और चंद्रमा रात और दिन को आपस में बांटकर अलग अलग चमकते हैं। जाओ मंत्री परिषद को हमारी यह इच्छा बता दो।
4: जो महाराज की इच्छा।

0: राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा हुआ आपके भाई राजकुमार को महाराज ने आधी राज्य का शासक बना दिया है। उनके प्राण बच गए, यही बहुत है।
1: महाराज की जय हो। आपके पिता पूज्य सेनापति पुष्यमित्र का ये पत्र आया है।
2: पिताजी का पत्र, लाओ देखें।
0: ओह, मेरा जी भी इसे सुनने को छटपटा रहा है। मेरे बेटे वसुमित्र का भी इसमें समाचार होगा। पूज्य सेनापति जी ने उसे यज्ञ के अश्व का रक्षक बनाकर बड़ा ही संकट पूर्ण कार्य सौंप रखा है। महाराज पढ़िए ना ये पत्र।
2: पिताजी हमें लिखते हैं, अश्वमेध यज्ञ का संकल्प करके हमने जो घोड़ा 100 राजपुत्रों सहित कुमार वसुमित्र के संरक्षण में 1 वर्ष की अवधि बांधकर मुक्त छोड़ा था, वो सिंधु नदी के दक्षिण तट पर पहुंचकर चल रहा था। उसे यवनों ने पकड़ लिया, फलतः हमारी और शत्रु सेना में घोर युद्ध हुआ।
0: फिर क्या हुआ?
2: फिर वीर वसुमित्र ने शत्रु सेना को परास्त करके हमारा घोड़ा छुड़ा लिया। जैसे पौत्र अंशुमान द्वारा छुड़ाकर लाए गए अश्व से राजा सगर ने यज्ञ किया था, वैसे ही अब हम अपने पौत्र द्वारा वापस लाए गए अश्व से यज्ञ कर रहे हैं। अतएव तुम प्रसन्न चित्त हो, बहुओं के साथ यज्ञ देखने के लिए तुरंत चले आओ। पिताजी की बड़ी कृपा है जो हमें बुलाया।
0: महाराज, महारानी, पुत्र की विजय के लिए आप दोनों को बधाई। देवी, अब तक आप वीर पत्नियों की ही सिरमौर थी, आज से आपको वीर माता होने का भी गौरव मिला। भगवती, मुझे तो प्रसन्नता है कि मेरा पुत्र पिता के समान ही पराक्रमी निकला।
2: आज हम बहुत प्रसन्न हैं। मौदगली, जाओ यज्ञ सेन के साले समेत सभी बंदियों को मुक्त कर दो।
0: जैसे
1: आज्ञा देवी।
0: रनिवास की सभी रानियों को हमारे पुत्र की विजय का समाचार दो। और हाँ, देवी रावती से निवेदन कर देना कि अशोक के फूलने पर मालविका को मुंह मांगा पुरस्कार देने का मैंने वचन दिया था, हमें वो वचन पूरा करना चाहती हूँ। वे कोई विघ्न न डाले।
1: देवी की कैसी आज्ञा।
0: मालविका इधर आओ, प्रस्तुत हो देवी। आर्य पुत्र, आपने कुमार की विजय का जो प्यारा समाचार सुनाया उसके बदले में यह प्यारा पुरस्कार स्वीकार कीजिए। अरे आप लजा क्यों रहे हैं, मालविका को ग्रहण कीजिए।
3: देवी, महाराज तो लोक व्यवहार दिखा रहे हैं, ऐसे अवसर पर सभी नए दूल्हे लजा ही करते हैं।
4: श्रोताओ, नाट्य तरंग में अभी आप सुन रहे थे नाटक मालविकाग्नि मित्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक महाकवि कालिदास के मूल संस्कृत नाटक का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। हिंदी रूपांतरकार थे सीताराम चतुर्वेदी, रेडियो नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक चिरंजीत। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
5: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
6: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

श्रोताओं नमस्कार। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार

0: सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई है उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं तीसरी कड़ी।
1: वापस वहाँ चलते हैं जहाँ अर्धसत्य जो है वो हिट हो चुकी है। रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदा?

0: वो हिट हो चुकी है रीमा जी, किस तरह की फिल्में उसके बाद की आती हैं सदाशिव जी की, और उसके बाद जो बड़ा माइलस्टोन है वहां तक आएंगे इस बातचीत में?
1: सो जैसा मैंने कहा कि अर्धसत्य के बाद एक हफ्ते में पापा ने 200 फिल्में साइन की थी,
0: जो 8-10 साल तक चलता रहा मामला,
1: 8-10 साल तक वो मामला चलता रहा। और बात ये थी कि उस समय द रीजन इतनी सारी फिल्में उन्होंने एक साथ साइन कर ली, क्योंकि मतलब वही बताते हैं ये मजाक में कि वो कहते थे मुझे उस समय बीआर चोपड़ा और यश चोपड़ा में क्या फर्क है ये भी नहीं पता था। ओके तो कौन सा डायरेक्टर सबसे अच्छा है, क्योंकि उनका जैसा मैंने कहा कि उनकी जिंदगी पूरी थिएटर थी, तो फिल्म से रिलेटेड ऐसे उनका स्टडी नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो फिल्म आई वो करते गए, राइट। तो उस समय कमर्शियल उन्होंने विलन के रोल काफी किए, क्योंकि अपनी इंडस्ट्री का वो एक
0: टैग
1: लग जाता है कि एक तरह का अगर काम कोई बंदा अच्छा कर रहा है तो उसे उसी तरह के सारे काम मिलते हैं, उसका पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ये वाली जो बात है ये नहीं होती थी उस समय, तो बिल्कुल ही नहीं होती थी, क्योंकि उस समय एक फिल्म दो दो तीन तीन साल तक चलती थी, उसका शूटिंग भी चलता था और रिलीज के बाद भी वो उतना चलती थी, इसलिए जो चेंज होता था ट्रेंड, जो चेंज आजकल इतनी फटाफट हो जाता है वैसा उस वक्त नहीं होता था। 8-10-12 साल तक लोग वही करते थे जो करते आ रहे हैं। फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब पापा को लगा यार अभी बहुत हो गया ना, बहुत मैंने विलनी के काम किए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया था। पर फिर आया मौका उन्हें सड़क करने का, जो विच इज अगेन अ लैंडमार्क फिल्म, उनमें जो उनका महारानी का किरदार है उस तरह के किरदार काफी लोगों ने करने की बाद में कोशिश की, पर मुझे नहीं लगता, मतलब मे बी ये मेरा बायस होगा पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता आज तक कोई उस लेवल तक वो निभा पाए हैं। ऑफ कोर्स इसमें भट्ट साहब का काफी बड़ा योगदान है कि उन्होंने सोचा कि ये कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, और फिर उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने ही गेव द फ्रीडम, तुम्हें ये कैसा दिख रहा है वैसे तुम करो। तो उसमें एक साड़ी वाला सीन है जो पापा की आइडिया थी कि अगर ये तृतीय पंथी है तो साड़ी में तो एक सीन चाहिए ही चाहिए, विदाउट साड़ी तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से उन्होंने वो किया था।
0: यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये रोल जब उनके पास आया तो क्या कोई पसोपेश रहा या सेकंड थॉट रहा कि ये लीक से एकदम हटके है, इसको करना है नहीं करना है?
1: बिल्कुल नहीं, इट वॉज अ चैलेंज। जैसा मैंने कहा कि अगर कुछ नया है, कुछ चैलेंजिंग है, तो वो हमेशा ही वॉज ओपन फॉर इट। तो और भट्ट साहब के साथ उन्होंने उससे पहले काम नहीं किया था, और भट्ट साहब वॉज अ बिग नेम एट दैट टाइम, राइट। तो उनके साथ काम करना इटसेल्फ एक बड़ी बात थी, और वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, वो इसलिए कि जब वो कॉलेज में प्ले किया करते थे तब उन्होंने एक प्ले किया था बटाला दिली ओसरी, ऐसा उसका नाम था, और उसमें उन्होंने इस तरह का एक कैरेक्टर प्ले किया हुआ था जो थोड़ा सा यू नो ऐसा फेमिनिन एंगल वाला कैरेक्टर रहा, और वो उन्होंने बखूबी निभाया था, उसका भी एक किस्सा है वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसलिए वो हेजिटेंट बिल्कुल नहीं थे, उन्हें ये पता था कि मैं जैसा दिखता हूं मैं सुंदर तो नहीं दिख सकता। तो अभी मैं अगर तृतीय पंथी होने वाला हूं या तृतीय पंथी की एक्टिंग करने वाला हूं तो उसमें मैं क्या अलग कर सकता हूं, बिकॉज हीरो हीरोइन फिल्म में होते ही है प्यार होता है, मतलब गर्ल मीट्स बॉय, बॉय मीट्स गर्ल, दे फॉल इन लव, फिर एक विलन होता है, वो विलन कुछ अलग लाता है तभी जाके फिल्म अलग बनती है।
0: बिल्कुल, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है।
1: एग्जैक्टली, वरना विलन ना हो तो हीरो का काम ही नहीं है ना फिल्म में, इसलिए ये बहुत जरूरी था। और जब भट्ट साहब ने कहा कि बिकॉज ये एक रेड लाइट एरिया की स्टोरी है इसलिए हम इसमें तृतीय पंथी रखते हैं,
0: थर्ड जेंडर
1: जो है, तो फिर वो उस कैरेक्टर पे काम करने लगे। हालांकि पापा कहते थे कि मैं सुंदर तो किसी भी एंगल से नहीं दिख सकता बिकॉज उनका रूप ही वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से वो बाल बनाए, मेकअप किया, जिस तरह से एक्टिंग करी, अगर आप देखोगे तो ये आप भूल जाओ कि वो एक पुरुष है, अगर ये आप साइड में रखते हो तो आपको लगेगा ये एक्सप्रेशंस बिल्कुल औरतों वाले आए हैं। कभी अगर आप देखो तो वो किसकी उन्होंने एक्टिंग की है वो तो मैं जानती हूँ, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। लेकिन उनके लिए ये नया नहीं था, वो पहले ये कर चुके थे।
0: यहाँ गाना सुनते हैं।

0: जाते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था पापा जो प्लेज वगैरह करते थे बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है आज भी है तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है बहू पैसे कमा रही है बेटा नाटक वगैरह करता है इससे थोड़ी ना घर चलेगा ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो शो हो तो बिल्कुल नहीं जाते थे लेकिन सब लोग शहर में कहते थे अरे वाह वाह वाह तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है ये करता है वो करता है तो उन्होंने सोचा चलो आज मैं चलता हूं देखता हूं दोस्तों को लेके जाता हूं इनका प्ले देखने और वो गए वो प्ले देखने और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व जो फेमिनिन कैरेक्टर था वैसा रोल किया हुआ था ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे तो वो रुके रहे वहां पर और जैसे ही पापा रात में आए घर पे उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से तो नाचा ची काम कराई जब तुला इस तरह के काम करोगे तुम हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो वगैरह वगैरह वगैरह तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा पर तब तक काफी पानी बह चुका था लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है चलो पैसे तो कमा रहा है तो चल रहा है लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना
0: जनाना रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है
0: कहाँ क्या चल रहा है मेरा बेटा क्या कर रहा है बहू क्या कर रही है पोतिया क्या कर रही है ये सब उनका ध्यान था बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो तुम्हें यही करना है तो करो
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और वो काफी सराहा गया महारानी वाला जो रोल है उसकी आज तक उसकी रीलें चलती हैं और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है
0: ओ यस ऑफ कोर्स हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है पुराना मंदिर है ये काफी सारी फिल्में हैं जो
1: 80s वाला दौर
0: हाँ हाँ हाँ 80s वाला पूरा 83 से आगे वाला पूरा दौर सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वॉज अ लैंडमार्क फिल्म मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म
1: हाँ ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: तो
1: है
0: तो वो चलती है तो ये बहुत ही सही बात है और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे पापा और धर्म जी या पापा और मिथुनदा के या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं तो तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है अच्छा क्या होता है हाँ और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है शायद अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी केबल भी नहीं था तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया

0: को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी. तो पापा ने कहा क्या हुआ क्या ये वो. तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा यू नो बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी. तो बोले क्यों, तो आप उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे थे. तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे.
1: हाँ, हाँ.
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है. इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है. और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में
1: बहुत खूंखार रोल था वो,
0: बहुत ही ज्यादा. काला नाग, काला नाग राइट, डीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ शुरू
1: था. और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है,
0: नाग हूं मैं नाग काला नाग. सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लू. आई विल नेवर फॉरगेट. ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना.
1: हाँ बिल्कुल.
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था, और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे.
1: अच्छा.
0: हाँ. और दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक डायलॉग.
1: अरे गजब.
0: तो बहुत मजा आता था. तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे. तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी.
1: बाप रे.
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में. बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे. तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में. तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के.
1: बिल्कुल. उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं. एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते हैं. हाँ. जो कि एक विलेनिश रोल होता है खतरनाक. हाँ. वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना.
0: मैं वो फिल्म आज तक नहीं देख पाई. मैं बताऊ क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है.
1: बिल्कुल.
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती. मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है.
1: सिर्फ सुना है.
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म. और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूँ वो फिल्म देखने की.
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश.
0: ओ,
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है.
0: करेक्ट.
1: वहां
0: करेक्ट.
1: से वो पूरी यात्रा जो है वो. हाँ, आगे बढ़ती. हाँ. है. तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े. लेकिन यहाँ अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ.
0: करेक्ट.
1: आखिरी रास्ता में वो भी बड़ा खतरनाक रोल था.
0: बहुत ही. और उस समय
1: डरावना. और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली.
0: नफरत तो लोगों ने की. बहुत ज्यादा नफरत की. लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ था.
1: ऑफ कोर्स.
0: कलाकार के प्रति जो प्यार था वो. अगेन अमित जी का वो कमबैक था. आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी. तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे. राइट. सब लोगों को ऐसे जा रही है आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे. और पापा बहुत कूल हुआ करते थे. मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे. मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था. मुझे क्या करना है. उसमें वो रहते थे.
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है अमिताभ बच्चन के सामने विलेन. और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं. वो जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है.
0: पूरा. दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो बोला साम जो मैं कहते आ रही हूँ वो वैसे ही थे. वो आप मस्त रहते थे. उन्हें क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
1: अपना
0: है,
1: फर्ज निभाओ.
0: अपना फर्ज निभाओ. उसमें वो रहते थे. तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका

0: काम देखते आ रहे थे, राइट? तो
1: बिल्कुल.
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक. लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा, खत्म होगी. और जो आप नफरत की बात करते हो, तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो नफरत इतनी नहीं लेकिन डर बहुत लगता था.
1: बिल्कुल.
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते.
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी है तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था. तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था. और स्कूल में ऑफ कोर्स सब लोग मुझे जानते थे, बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी, बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त. अच्छा. और मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी. पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है. और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है. टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था. पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं. हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट. तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ. लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो. ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था. और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो.
1: ओहो, करेक्ट.
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना. इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट. तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस्ट लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूँ फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं. तो ये कभी कभी होता था. पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे.
1: बिल्कुल. सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था. मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से.
1: अच्छा.
0: हाँ. और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था. जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी. और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था. दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट ऐसे करके. तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे.
1: अच्छा.
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो. वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे. और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना, बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं. मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है. तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें. मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है. तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी. तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी.

0: और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना, हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी, या आपने क्यों नहीं ये सही समझा, या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था। पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है, यह आप डिसाइड करो।
2: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 135,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: मकबरा भी है, तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए, बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है। लेकिन अजंठा, एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी, बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब पकड़। एक घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था, और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर, वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे, और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ, तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए।
1: अरे अरे अरे,
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए। वहां पर एक रिजॉर्ट था, वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए, क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते।
1: ओ हो।
0: तो उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं, पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है।
1: बिल्कुल,
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है, वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है, ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल, यहाँ हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: Sure.

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनकी पंच आते थे
1: और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तलमला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: ओके, वो जवाब बाद में।
1: हाँ, वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उनपे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर

0: और करना चाहिए। और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी, जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई, जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
1: बिल्कुल, वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी,
0: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
1: बिल्कुल
0: उसमें पापा एकदम फिट बैठे, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी, बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुनदा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन, और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन।
1: उनको डायलॉग्स भी मजेदार मिलते थे,
0: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक ही ग्राफ होता है, राइट? कि हीरो आएगा, आपको मारेगा, खत्म, राइट? पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
1: आंटी नंबर वन,
0: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया,
1: बिंदु
0: जी
1: के साथ, सो रहे हैं और वो जगाने आती है।
0: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना? क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: अर्धसत्य
0: दिखाऊंगी, ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत ही अलग,
1: क्या लीक थी वो।
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार। एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग कमाल का है, ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी,
1: बिल्कुल,
0: पर
1: लेकिन
0: वो इतनी ओवर द
1: टॉप
0: नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी।
1: यस,
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो, मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं, फिर दिलीप ताहिल जी थे उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी,
1: बिकॉज
0: जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है, ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज।

0: पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोघी ये जो फिल्म थी NFDC की फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे सुनील सुकथनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोघी की थी, दोघी में फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे पर उन्होंने वो किए थे। वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी उनकी वो पहली फिल्म थी,
0: तब तक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी। और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था। तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे। तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है।
0: हाँ।
1: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म,
0: को
1: मिला नेशनल अवार्ड। यस, तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
0: और दूसरी तरफ ये इंटेंस
1: काम कर रहे थे बिकॉज वो उनकी पर्सनालिटी की ही दो साइड्स थी। जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है। आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है इसलिए मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है। तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था। तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं। मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोघी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोघी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो। तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं।
0: राइट,
1: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे
0: जी।
1: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो। अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो।
0: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
1: बहुत अच्छी बुनियाद है। और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है, तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं। आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था। मराठी में हम जैसे देवान घेवान कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी, कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था। इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे। अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है। तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को अभी हमें कैसे मोल्ड करना है। एक्टर का से बहुत कम रह गया है, तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया। इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली

कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु

0: नंबर वन मिली, वैसे ही दोघी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली, एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
1: बिल्कुल.
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, एनएफडीसी की ही फिल्म है
1: जी.
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी, तो उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर. तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल, और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है. तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म.
1: बिल्कुल. यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ.

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सनसिटी चैनल है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजे हैं, शाम के 5 बजे हैं, आइए सुने कार्यक्रम युववाणी।
2: सही जगह आप सुन रहे हैं आप ही का कार्यक्रम युववाणी। और भाई ये जो संडे होता है इसका बेसब्री से इंतजार कौन नहीं करता, पर भाई जिस रफ्तार से भाग के चला भी जाता है इसका दुख भी अलग है। खैर कोई नहीं, अभी तक हम लोगों में से बहुत सारे लोग मंडे की प्रिपरेशन भी कर चुके होंगे कि कल क्या करना है, कल ऑफिस जाना है। बट हाँ, शाम के कुछ लम्हे होते हैं वो खुद के लिए निकालने चाहिए, चाय कॉफी के साथ खुद का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो मौसम हो रहा है भाई साहब, अभी तो थोड़ी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई बट उम्मीद है कि बारिश अब थोड़ी ज्यादा कंटिन्यू होगी, क्योंकि कल रात को भी अच्छी बारिश हुई थी और उससे पहले भी अच्छी बारिश हुई थी। तो हाँ, अभी एक्सपेक्टेशन है कि और अच्छी बारिश होगी। पर आज है संडे, आपसे बहुत सारी बातें होने वाली है और आज का जो क्वेश्चन है भाई वो बहुत फनी सा है, वो हम आपको बताएंगे। हाल फिलहाल आपके साथ जुड़ी है दो प्यारी आवाजें, मेरा नाम है रिद्धि
3: और मैं हूँ दोस्तों विकास। जैसा कि अभी रिद्धि ने बताया कि मंडे की तैयारियां जो हैं वो लोग आज से ही करने लग गए होंगे, लेकिन मेरा ये मानना है रिद्धि कि क्यों ना आज को ही जो है वो अच्छे से जिया जाए, कल की कल देखेंगे, कल सुबह उठ के क्यों

0: तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम युववाणी में, जहां आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ और मेरे साथ है
1: रिद्धि।
0: तो रिद्धि। मेरे सवाल जो है वैसे तो माइंड में काफी सारे हैं, लेकिन उनमें से जो एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में वो हम सभी से बहुत जुड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक थोड़ा फनी भी है। और क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी दोस्तों पब्लिक प्लेस में कभी ऐसा कोई जो कभी कोई ऐसा सिनेरियो आपके साथ हुआ है, या फिर कभी आपने कोई ऐसी बात देखी हो या ऐसी कोई चीज सुनी हो जिसको देख के आपको, मतलब वो कहते हैं ना, अकेले अकेले में बैठ के हंसने लग गए हो आप,
1: हाँ,
0: ऐसा थोड़ा सा वो मोमेंट कभी भी आपके साथ हुआ हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं।
1: जिसमें आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति ना हो, कहीं पे
0: बिल्कुल
1: आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं ऐसे ग्रुप में बैठे हो, आप एकदम अकेले हो
0: बिल्कुल,
1: और कोई
0: रैंडम
1: ऐसी,
0: पर्संस के साथ,
1: हाँ, कोई
0: बिल्कुल
1: ऐसी चीज स्ट्राइक करती है जो शायद आपको घर जाने के बाद भी हंसी आए। अब वो स्वीट भी हो सकती है, फनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ, हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है
0: बिल्कुल
1: कि आपके चेहरे पर मुस्कान आई जाती है, तो वो
0: बिल्कुल। या फिर
1: आपके साथ।
0: अगर रिद्धि
1: हाँ
0: एक वो भी चीज़ है कि जैसे कभी आप अपने वर्क प्लेस में हो या फिर अगर आप कहीं घूमने गए हो, वो कहते हैं
1: हाँ
0: ना कि आउट ऑफ द सिटी भी गए हो या इन द सिटी भी, अगर आप कहीं अपने नियर बाई प्लेसेस में घूम रहे हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को लग जाएगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो कोई रैंडम चीज़ें किसी इंसान से ही जुड़ी हुई हो।
1: बहुत कुछ होता है।
0: बिल्कुल
1: अभी अभी तो विकास ऐसा है ना कि मौसम चेंज हो रहा
0: बिल्कुल
1: है, तो बारिश का मौसम आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि चाय की दुकानों पे, नमकीन की दुकानों पे इतनी भीड़ होती है, तो
0: बिल्कुल
1: वहां पर कोई ना कोई डायलॉग ऐसा उड़ता हुआ आएगा और भाई जो हंसी
0: बिल्कुल
1: आती
0: सही
1: है
0: कहा
1: उस वक्त।
0: आपने।
1: तो आप ऐसी चीजें हमारे साथ आज शेयर कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही लाइट और होता है ना, लाइट
0: बिल्कुल
1: हार्टनिंग है,
0: बिल्कुल
1: कि आप बता सकते हैं कि आपके साथ कोई ऐसी चीज हुई हो जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाई और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ला सके, तो आप हमें बता सकते हैं।

0: तो विकास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पब्लिकली, हमारे साथ कुछ ऐसी फ़नी चीज़ ना हो तो हमारे खुद के साथ हो ही जाती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल हो जाती है।
0: क्योंकि हम अक्सर ये होता है कि घर से बाहर निकल रही होता है कि अरे यार मेरा चश्मा कहाँ है, और वो चश्मा लगा के हम चश्मा ढूंढ रहे होते हैं.
1: बिल्कुल
0: कई
1: सही
0: बार
1: है।
0: हम चाबी को भी अपने पर्स में रखने के बाद उसको भी 100 बार
1: अरे अभी
0: ढूंढते
1: मैं
0: रहते
1: मेरे साथ
0: हैं.
1: इंसिडेंट बताऊं रिद्धि आपको, कि 3-4 दिन पहले की बात है, मैं सडन काम करते करते मेरे हाथ में पेन था, ठीक है, तो मुझे कोई कॉपी या रजिस्टर वगैरह ढूंढना था, तो मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, तो मैंने अपने कान में पेन लगा लिया। अब मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ, 1 घंटा हो गया कि यार कहाँ पर है वो, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं 1 घंटे से टेंशन में, मैंने कहा यार कहाँ रख दिया मैंने, यहाँ पे बैठा था, वहां पे बैठा था, वहां भी देख लिया नहीं है, यहाँ भी देख लिया नहीं है, कॉपी की जो कॉपी किताबों के बीच में भी देख लिया तो वहां पर भी नहीं मिला, ठीक है। फिर अचानक मैं कुछ ऐसे कान कान के साइड में खुजली कर रहा था, मैंने कहा अरे यार, तो मतलब इतनी फनी फनी थिंग हो जाती है ना कभी, ये आप सही कह रहे हो,
0: भाई सच में, दूसरों के साथ होना हो पर खुद के साथ होता है तो इतना डम
1: बिल्कुल
0: फील होता है,
1: बिल्कुल
0: और खुद पे इतनी हंसी आती है कि भाई तुम इंसान हो, तुम अच्छा खासा काम कर रहे हो, फिर भी ऐसी हरकतें क्यों करनी है. तो श्रोताओं, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, और सबके साथ होता है भाई,
1: बिल्कुल
0: ऐसा
1: बिल्कुल
0: कोई नहीं है जो एकदम परफेक्ट जी रहा है लाइफ में,
1: बिल्कुल
0: तो आप
1: बिल्कुल
0: हमें बता सकते हैं. हाल फिलहाल अभी के हमारे शाम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं.
1: बिल्कुल, करते हैं उनसे बातचीत।
2: हेलो
0: हेलो,
2: हेलो, नमस्कार, मैं इकरामुद्दीन बोल रहा था.
0: जी जी
1: नमस्ते सर,
0: नमस्कार. आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कुछ बहुत फनी?
2: अरे मैडम, मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि हम हमारे पापा के साथ बेंगलोर घूमने गए. हम भाई बहन सब जने गए हुए थे. वहाँ पार्क एक ऐसा है बेंगलोर के अंदर कि जिसके अंदर उस बंदे को हंसाने के 500 रुपए. अब उसके सामने हम सब जने जितनी भी कोशिश कर रहे थे, इतना हंस हंस के पागल हो गए, बाकी वो हंसा नहीं.
0: नहीं ऐसा?
2: और अरे वो बिल्कुल ही हंसा नहीं, वो तो एक्शन ऐसा लग रहा था मूर्ति खड़ी है. और जैसे हम उसके सामने हंस रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, और जैसे ही हम रुके तो उसने एक्शन बदला एकदम, तो उससे हम डर गए. इतना मतलब उसको 500 के चक्कर में हमने इतनी कोशिश करी लेकिन हम हंसा नहीं पाए मैडम उसको.
0: उस 500 रुपए के चक्कर में जो आपके आसपास लोग हंसे होंगे ना आपको देख के.
2: वो सब हंस रहे थे मैडम, सब हंस रहे थे भाई, इसको हंसा के 500 रुपए जीतने अपने को कैसे.
1: बिल्कुल, भले ही आपने उन्हें नहीं हंसाया लेकिन साथ वालों को हंसा दिया, तो इसका
2: अरे
1: मतलब यह
2: सर
1: है कि आपने 5 लाख का इनाम भी जीत लिया।
0: सर, आपने क्या किया था, हम जान सकते हैं? आपने क्या किया था उनको हंसाने के लिए?
2: मैडम हमने उसने उसको इतनी कोशिशें करी, उसके सामने चिंगना जैसे बंदर चिंगा
1: जी
2: नहीं
1: जी
2: मारता
1: जी
2: ना,
1: जी जी जी
2: वैसे करके भी देखा, उसके आगे हंस हंस के भी ऐसी कोशिश करी कि भाई हंसे हंसे, लेकिन वो हंस नहीं पाया मैडम.
0: अरे भाई, ये जो टैलेंट है ये भी अलग लेवल का है. मतलब आप जो
2: जी
0: बता रहे हैं
2: मैडम,
0: बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. काफ़ी प्यारा इंसिडेंट था.
2: थैंक यू मैडम, थैंक यू. बिल्कुल
0: तो विकास, ये जो चीज़ थी ये भी बहुत फनी है कि दुनिया में ऐसे कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं, या फिर ऐसी प्रतियोगिता भी है कि आपको हंसाना पड़ेगा किसी को और फिर आपको इनाम मिलेगा.
1: अरे
0: तो
1: बिल्कुल
0: आप सिर्फ इमेजिन करके देखो, जहाँ पे भी ये चीज़ हो रही होगी तो लोग क्या क्या हरकतें करते होंगे उस
1: बिल्कुल
0: बंदे
1: सही
0: को
1: कहा आपने।
0: हंसाने के
1: और
0: लिए.
1: ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक प्रतियोगिता जो अभी हमारे लिसनर्स ने हमें बताई है, तो काफी यूनिक चीज है रिद्धि ये, कि मतलब आप एक पब्लिक की जो अटेंशन है वो ले सकते हैं, आप कम से कम लोगों को खुद को खुश रखने के लिए भी जो है वो एक, मुझे ये लगता है कि एक टिप है एक तरीके की, तो बहुत ही अच्छी चीज है ये।
0: पर भाई जो इंसान नहीं हंसा होगा उसको सलाम है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा चीज होता है कि कुछ भी हो गया खुद को हंसी आ जाती है. भाई इतना कंट्रोल करके कैसे रखते लोग. तो ये चीजें होती रहती है हमारी लाइफ में. तो दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको पर्सनली आपको हंसा दिया हो या फिर पब्लिकली आपको हंसाया हो, तो आप जरूर से हमें बता सकते हैं. और हमारे नंबर है
1: 02912553300, और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
0: और दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है कि फोन के साथ भी फनी चीजें हो जाती है. आप भाई,
1: बिल्कुल
0: आप उसको चार्ज में लगाओ, बहुत तेजी से चार्ज में लगाओ, और फिर लगे कि हाँ यार अभी
1: बिल्कुल
0: तो स्विच
1: बिल्कुल
0: तो ऑन ही
1: रिद्धि।
0: नहीं किया.
1: चलो इसी बीच हमारे अगले कॉलर का जो है वो फोन हमारे पास आ चुका है, आइए करते हैं उनसे सुनते हैं उनका उनके पास कौन सा किस्सा है।
0: हेलो.
1: हेलो,
3: यस मैम.
0: जी सर, क्या नाम है आपका?
3: विनय नाम है मैडम.
0: विनय जी, बताइए आपके साथ
3: मैडम
0: ऐसा क्या हुआ है?
3: हमने एक हेल्थ कॉम्पिटिशन में भाग लिया था,
1: जी
3: तो उसके अंदर हमारे को वेट लॉस जब होता था ना, तो महीने के अंदर एक दिन हमारा वो फैमिली डे का प्रोग्राम होता था,
0: अच्छा.
3: तो उसमें मैडम है ना, बॉयज को है ना, लेडीज को दिए थे मैडम बॉयज की चोटी बनाना, मैडम जो ज्यादा चोटी बनाएगा ना मैडम

0: को इनाम मिलेगा मैडम।
1: हम्म,
0: तो मैम वो उसके बाल छोटे होते हैं मैडम, वो टोटी बन ही नहीं पा रही थी मैडम।
1: अच्छा, तो ये मतलब ये भी बहुत ही, अगर इमेजिन किया जाए तो ये काफी क्रिएटिव सा इवेंट है कि आपको किसी की छोटी बना ली।
0: मैडम छोटे छोटे बाल थे जेंट्स के, तो मैडम सब अभी तो छोटे छोटे बाल लगते हैं मैडम काफी जने, छोटी बन ही नहीं पा रही थी मैडम, वो रबड़ लगा वापस रबड़ खुल जाता था
2: तो
0: मैडम।
2: फिर उस प्रतियोगिता में आपका नंबर कहाँ पे था विनय जी?
0: सर मेरा सेकंड नंबर आया था सर।
1: सेकंड नंबर,
2: चलो
1: मतलब
2: ये भी
1: आपने
0: अच्छी
1: बनाई
2: बात है।
1: तो होगी।
0: मैंने नहीं बनाई थी सर,
1: अच्छा,
0: लेडीज आर्मी की छोटी बना रही थी सर।
2: अरे
1: वाह,
2: वाह,
1: क्या बात है।
2: कोई नहीं, चलो आपने अपना जो ये किस्सा हमारे साथ शेयर किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी।
0: थैंक यू सर।
2: तो श्रोताओं, अगर आपके पास भी ऐसे ही किस्से हैं तो आप हमें लगा सकते हैं फोन, और हमारे फोन नंबर रिधि बताएगी।
1: हाँ, नंबर तो भी बताए दिए थे, वो है 2555-3300, और दूसरा नंबर है 2555-4300। हाल फिलहाल चाय कॉफी लीजिए और गानों को एंजॉय कीजिए।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: तो विकास इसी के साथ लग रहा है कि हमारे आज शाम के नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं, पर
1: बिल्कुल
0: वो जुड़े उससे पहले मुझे एक और फनी चीज़ याद आ रही है.
1: बिल्कुल बताइए
0: विकास, एक बार ये भी हुआ था कि हम जब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कहीं
1: जी
0: जाते हैं
1: जी
0: तब ऐसा लगता है ना एकदम एक्सट्रीम लेट हो रहा हो.
1: जी
0: तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कहीं से तो बाहर निकली थी और मेरी जो गाड़ी है
1: बिल्कुल
0: उसका एकदम सिमिलर मॉडल उसके पास खड़ा था. मैं बताऊंगी ये इंसिडेंट, आगे कंटिन्यू करेंगे.
1: बिल्कुल लगता
0: हाल
1: है
0: फिलहाल हमारे
1: हाँ
0: अगले
1: बिल्कुल
0: कॉलर हमारे
1: कॉलर
0: साथ
1: जुड़
0: जुड़
1: चुके
0: चुके हैं.
1: हैं।
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
2: हेलो, नमस्ते
0: नमस्ते मैम,
2: नमस्ते.
0: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम खेतन है, मैं जयपुर में से बात कर रहा हूँ.
0: अच्छा खेतन, ओके. तो खेतन आप क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं?
2: हाँ, 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ.
0: अरे वाह, क्या बात है. आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फनी,
2: हाँ, ऐसा फनी तो हुआ है. एक बार क्लास में,
0: बताइए.
2: एक बार क्या हुआ था कि हम ऐसे ही बैठे थे, पीरियड खाली था, तो बैठे बैठे मतलब हंसाने वाला अभी तो आपके साथ एक व्यक्ति जुड़ा था ना,
0: जी
2: उसी की तरह हो गया.
0: अच्छा
2: मतलब हंसाने वाला खेल खेलने लगे.
0: ओके
2: एक बंदा है जो मेरी क्लास में हंसता ही नहीं है, मतलब उसको हंसाने के लिए काफी मेहनत की, हंसा नहीं. तभी अचानक से टीचर आ गई क्लास में.
0: अच्छा
2: टीचर ने फिर डंडों से हमें बहुत मारा.
0: मतलब जो लोग हंसाने की
2: आज
0: कोशिश
2: पूरी
0: कर रहे
2: हंस
0: थे उन
2: पड़ी
0: सबको मार पड़ी.
2: सर, अब फिर पूरी क्लास हंस पड़ी हमारे ऊपर.
0: उसको हंसी आई या नहीं
2: उसको फिर भी नहीं आई.
0: आई? वाह क्या बात. ये जो लोग हैं दुनिया में मैं मिलना चाहूंगी जिनको इतना कुछ होने के बाद भी हंसी नहीं आती.
1: और बिल्कुल, और उस दोस्त से भी मेरा ये कहना है कि देखो जिस दोस्त ने आपको हंसाने के लिए डंडे खा लिए तो एटलीस्ट आपको एक मुस्कान तो लानी चाहिए थी.
0: केतन आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए.
2: धन्यवाद.
0: तो भाई स्कूल की तो कहानियां क्या ही कहे विकास. हमारे भी क्लास में ऐसा बहुत बार हुआ है. मतलब जो हमारा ग्रुप
1: बिल्कुल
0: था तो उसकी एक आदत हमेशा से रही है कि क्लास में कुछ भी सीरियस चल रहा हो तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी हरकत ज़रूर करनी है कि पूरी क्लास
1: बिल्कुल
0: को एक बार हंसी आ जाए. तो हमारे क्लास में एक लड़का हुआ करता था, उसकी आदत थी वो ज़बरदस्ती या तो खांसी करने लग जाएगा या उसको
1: बिल्कुल
0: ज़बरदस्ती छींक आने लग जाएगी. और फिर वो सीक्वेंस में चलती थी, ऐसा भी नहीं है कि एक जने ने करके बस बंद कर दी, वो पूरी क्लास फिर उसको फॉलो करके ऐसा माहौल बनाते थे कि भाई टीचर तक ऐसे परेशान हो जाते कि कैसी क्लास है.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. स्कूल टाइम में तो रिद्धि ऐसा भी होता था कि मेरे साथ ही अक्सर इंसिडेंट होता था. और मुझे वो सोच के आज भी ऐसी आती है कि जब किसी, जैसे कि जस्ट हम एक ही बेंच पर अगर 2 से 3 स्टूडेंट्स हम बैठा करते थे पहले, तो जैसे हम तीनों में से किसी एक को टीचर ने खड़ा किया और बहुत जोर से सुना दिया, क्या कर रहा था तू, पढ़ाई नहीं करता है, वो नहीं करता है, तो हम साइड में ऐसे मतलब हाथ रख के और ऐसे हंसते थे. तो लाइक मैडम ऐसे देखते, तेरे को बड़ी ऐसी आ रही है. तो वो भी एक बहुत ही, मतलब वो कहता है ना, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था स्कूल टाइम में.
0: भाई स्कूल में बहुत ऐसे बच्चे हुआ करते थे जो बहुत सीरियस हुआ करते थे डांट पड़ने पे, पर हाँ हमारे जैसे कुछ लोग हैं जो ऐसे हंस दिया करते थे. तो विकास
1: बिल्कुल
0: हमारे अगले कॉलर भी आ चुके हैं. हेलो
3: हेलो,
0: हेलो, नमस्ते सर,
3: नमस्ते
0: क्या नाम है आपका?
3: सर. मेरा नाम कृष्णा राम है सर, पावटा चौराहे से बोल रहा हूँ सर.
1: जी जी
0: जी
1: कृष्णा
0: जी
1: राम
0: कृष्णा राम जी, बताइए आपके साथ क्या ऐसा बहुत ही ज्यादा मजाकिया हुआ है?
3: सर. एक एक कहीं में शादी में गए थे हम, शादी थी तो हम चार दोस्त गए थे शादी के अंदर. तो वहाँ खाना चल रहा था,
0: जी
1: जी
3: हमने कहा यार खाना खा लेते हैं चलो. तो खाना खाने बैठे तो एक आदमी अकेला बैठा था, उसमें 5-7 गुलाब जामुन डाल दिए उसने, और हम थोड़े थोड़े लेके चारों आदमी एक साथ में खा रहे थे. वो
0: अच्छा
3: 5-7 खा गया, हम खाना छोड़ दिया, उनको देख के हम हंसने लग गए.
1: जी
3: तो उसने एक बार और डलवा दिए 4-5 एक.

0: मतलब वो 10-12-15 के करीब खा गया और हम दो दो गुलाब जामुन नहीं खा सके, क्यों हम हंसने में
1: बिल्कुल
0: रहे,
1: बिल्कुल
0: उसको देखते रहे हंसते रहे, उसको देखते रहे हंसते रहे, हम
1: बिल्कुल उन्होंने गुलाब जामुन पे फोकस किया बिल्कुल उन्होंने गुलाब जामुन पे फोकस किया और आपने उन पर किया
0: हाँ जी वो खाता रहा, हम उनको देखते रहे, हम खाना भूल गए,
2: आपके 2-3 गुलाब जामुन रह गए सर
0: हमने 2-3 खाए, वो तो 15-20 खा गया बेटा बेटा, हम उनको देखते रहे हंसते रहे, खाना खाना भूल गए
2: ये होता है सर, ये शादी में कोई ऐसे लोग दिख जाते हैं फिर आप भूल जाते हो आप खाना खा रहे हो
0: हाँ हमारे पीछे आके बैठ गया, हम क्या हो? एक दोस्त की नजर बढ़ गई यार देखो गुलाब जामुन, वो मतलब लाद भी नहीं लगा ऐसे पेट में जा रहा उसके
1: बिल्कुल सही कहा, और हम लोग भी यही आशा करते हैं कि आप इन गुलाब जामुन की भरपाई अगली कई जगह पर जाकर कर पाए अपने दोस्तों के साथ में
0: हाँ जी हाँ जी
2: जी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: तो श्रोताओं अगर आपके पास भी ऐसे किस्से हैं या फिर कोई ऐसी वो कहते हैं ना कि चटपटे
2: कहानियां
1: बिल्कुल चटपटी कहानियां हो कि इस तरीके से कि आपके साथ क्या क्या इंसिडेंट हुए या फिर कह सकते हैं कि मजेदार इंसिडेंट हो तो आप भी हमें शेयर कर सकते हैं, हमारे नंबर है
2: 0912553300 और दूसरा नंबर है 2554300, और अभी तक जितने भी कॉल्स आए वो सुन के काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि सबकी अलग कहानियाँ हैं किस्से हैं, तो हाँ हम वेट कर रहे हैं और ऐसे कहानी किस्से के, आगे चलते हैं और ये पार्टी सॉन्ग एंजॉय करते हैं।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की

0: ट्रक से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया ना गिर बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: तो विकास, जो मैं किस्सा आपको सुना रही थी, हमारे पिछले कॉलर आए थे उससे पहले, वो कुछ ऐसा हुआ था कि एक बार मैं बहुत ही जल्दबाजी में कहीं जा रही थी और मैं मंदिर गई थी। हाँ, मुझे याद है।
6: बिल्कुल।
5: तो वहां पर क्या होता है ना, बहुत सारी गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी होती है।
6: जी जी।
5: तो मैं ऑफिस का बैग ली हुई, एक हाथ पे फोन पे बात करते होता ना कि आ रही हूँ, वो जो जल्दबाजी
6: फास्ट मोड में।
5: हाँ, तो अब हुआ ये था कि जो मेरी मेरा स्कूटर था उसके जैसा सेम मॉडल उसके पास खड़ा था।
6: बिल्कुल।
5: तो अब मैंने, अब सोचो, एक तो लेट होने वाला मोमेंट होता है।
6: बिल्कुल बिल्कुल।
5: उसमें हम गाड़ी में चाबी लगाओ, लग ही नहीं रही, स्टार्ट ही नहीं हो रही। ना लॉक खुल रहा, अब दिमाग खराब हो गया कि गाड़ी को क्या हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि गाड़ी का जो डिक्की होती है उसको खोलने की कोशिश करती हूँ, उसमें चाबी लगी, उसमें नहीं लग रही। फिर मेरी नजर एकदम से पीछे गई। मेरा स्कूटर पीछे था, मैं पता नहीं किसी और के स्कूटर में चाबी लगा के उसको क्यों स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। और ये पूरा इंसिडेंट था, वहां पर कोई तो अंकल खड़े थे पीछे, मतलब ऑटो वाले, वो पूरा ये देख चुके थे। मतलब ये इतनी हड़बड़ी में जो 5 मिनट का समय निकला, उनको जो हंसी आई भाई और जो मुझे एम्बेरस फील हुआ।
6: मुझे तो ये भी लगता है रिद्धि, आपको उसके कहीं ओनर ने भी नहीं देख लियो ऐसे हाथ एकदम बांध के, हाँ अब बेटा तू लगा के दिखा। ये भी हो जाता है
5: कि ये चाबी लग तो नहीं रही, होता नहीं क्या स्टार्ट कर रही है। तो भाई ऐसे तो मतलब, और एक तो जल्दबाजी में वो, फिर बाद में हंसी आती कि यार मैं सुबह सुबह क्या कर रही थी।
6: बिल्कुल, ओ भाई।
5: तो अभी हमारे अगले कॉलर हमारे साथ आ चुके हैं, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
7: हेलो जी, नमस्ते। गुड इवनिंग।
5: गुड इवनिंग
7: नितेश भैया को दिनेश सोडा का प्यार भरा नमस्कार।
5: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो बहुत ज्यादा फनी।
7: बहुत सारे इंसिडेंट हुआ मैडम, बचपन तो बचपन होता है मैम, की कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, ये दिल आवारा था, कहाँ आ गए समझदारी के बंधन में वो नादान, बचपन कितना प्यारा था।
6: वाह, क्या बात कही है दिनेश जी आपने।
7: तो बचपन की एक बात है कि जब बारिश हुआ करती थी ना, तो हम सारे बच्चे, हमारे ग्रुप हुआ करता था हमारे टोली, हम सारे बच्चे साइकिल लेके या फिर पैदल ही ऐसे मतलब कपड़े उतार के गली में दौड़ते थे, है ना। और जमा जब बारिश होती थी, जहाँ पानी इकट्ठा होता रहता, तो हम वहां से जैसे भी कोई गाड़ी वगैरह निकलती ना, तो पानी वो उछलता था। तो हम ऐसा मजा क्या करते थे कि वो पानी उछलता था, ये जो ड्रेनेज वाला पानी था, जो गंदा पानी था ना, वो जो जितने भी कुछ नहीं उनसे भी डालते, बारिश का मजा आप भी लो। अरे भाई वो कहते क्या, हम तो ऑलरेडी भीग रहे, आप क्यों भिंगो रहे यार गंदे पानी से, नहीं आप मजे। तो हमारी क्या बदमाशों की मतलब ये टोली थी, तो आज भी जब लोगों मिलते तो हंस पड़ते यार, तुम उस जमाने में कितने बदमाश थे यार।
5: ये तो चीजें अच्छी होती सर, ये यादगार लम्हे होते हैं बचपन के और हमेशा इनको याद रखना चाहिए। अब तो बहुत कम हो गया, पर हाँ आपने इस समय को जिया है तो बहुत ही खूबसूरत है
7: ना। तो स्कूल में भी ऐसे ही वाक्य हुआ करता था कि स्कूल मतलब खुद मतलब जब वो होमवर्क जैसे कि देते थे, कॉपी लेनी किसी से, नोटबुक लेके होमवर्क करना, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे जो सर या मैम समझा रहे तो समझना नहीं, और जो लिखा रहे तो लिखना नहीं, फिर नोटबुक लेनी। अब नोटबुक लेते तो वैसे हमारा तो काम हो ही नहीं रहा है, जो दूसरा क्लास में स्टूडेंट उसका भी काम पेंडिंग में चला जाता।
6: बिल्कुल सही कहा आपने,
7: वो भी डंडे खाता।
5: आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफी प्यारी कहानी, थैंक यू। तो विकास, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है जो आपको लगा हो कि बहुत ज्यादा फनी हुआ है? मतलब एक तो होता है कि किसी और के साथ हुआ और एक होता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो।
6: बिल्कुल यार, मेरे साथ तो ऐसी काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि एक बार आपने बताया अपनी स्कूटी से जुड़ा हुआ किस्सा, तो मुझे भी ऐसा याद आया कि मैं एक बार हड़बड़ी में निकल रहा था घर से, तो कहीं पे जाना था मुझे, तो मैंने क्या किया, गाड़ी में चाबी तो डाल दी लेकिन उसको ऑन नहीं किया, वो ऑफ ही थी चाबी, ठीक है, और मैं किक पे किक मारे जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि यार गाड़ी क्यों नहीं चालू हो रही है, तो एक बार ऐसे टंकी हिलाई थोड़ा, जैसे हम हैंडल हिलाते हैं ना, कि यार पेट्रोल भी बज रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। फिर एक बार आपने सेल्फ भी लगाया, मतलब कभी ऐसा होता है कि आप उस मोमेंट में होते हो, फास्ट मोड में होते हो, कि आपको पता नहीं चलता है कि यार चाबी पे ध्यान ही नहीं जाता है, तो बार बार मारा, फिर 5 मिनट बाद देखा कि यार एक बार चाबी ऑफ करके ऑन करो, तब मुझे वो चीज पकड़ में आई, कह रहे यार चाबी ही ऑफ थी। तो ऐसे काफी सारे इंसिडेंट है, एक दो बार मैंने, मेरे साथ ये भी हो गया कि मैं सेम जैसे कि चार्जिंग पॉइंट में मैंने अपना फोन लगा दिया, ठीक है, जल्दबाजी में। बिल्कुल, और वो स्विच ऑन ही करना मैं

0: गया बताओ आप। जब मैंने आधे घंटे तक, मतलब मैं खाली टाइम में ऐसा सोच रहा हूँ कि हाँ यार फोन चार्ज हो रहा है, ठीक है मैं अपना काम निकाल लूंगा, मेरे पास मतलब वो एक पूरा माइंड में पूरे थॉट्स होते हैं ना, वो हम क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ शाम तक मुझे चार्जिंग, वो कहता है ना, उस पर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन जब आधे घंटे बाद देखा तो लगता है मेरे सारे ड्रीम जो है वो वही
1: सारे
0: पर ही बिखर गए उस चीज को देखकर
1: सारे प्लान्स
0: ही।
1: वापस रीस्केड्यूल करने पड़ते हैं
0: बिल्कुल
1: जब आप अपना
0: बिल्कुल
1: चार्जिंग का प्लग ही ऑन नहीं करते। ये तो
0: बिल्कुल सही
1: शायद सबके साथ होता है, खुद का फोन तो
0: बस।
1: छोड़ो, आपने किसी और का फोन लगाया हो चार्ज में तो भाई जो दुआएं उनके मुंह से निकलती है उसको तो वो
0: वो काफी
1: खूबसूरत होती है, वो
0: बिल्कुल
1: बताने लायक भी नहीं होती। तो दोस्तों आप भी बता सकते हैं आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो, नंबर हम बार बार दोहरा रहे हैं जो कि है 02912555300, दूसरा नंबर है 2554300। तो आप इंजॉय कीजिए और साथ में गानों का मजा लेते रहिए।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में अरे वाह
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: विकास जहाँ पर मस्ती मजाक की बातें चल रही है तो कई बार ऐसा भी लगता है कि अब मौसम जैसे जैसे बारिश का आ रहा है तो सब लोगों के जीवन में खुशियां तो आने वाली है क्योंकि बारिश किससे नहीं पसंद पर इस मौसम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है खुद का ध्यान रखना क्योंकि अभी जैसे जैसे मौसम और बारिश का होगा तो वो जो ड्राइविंग वाले जो पैशनेट लोग होते हैं जिन्हें गाड़ी तेज चलाने का शौक होता है और जो होता है ना बारिश आ रही भाई लॉन्ग ड्राइव पर निकलो उन्हें जो मजा आता है इसमें मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हेलमेट पहन के निकलिए और जहां पर भी आप जा रहे हैं सीट बेल्ट जरूर लगाइए क्योंकि जो हमारे सड़कों की खूबसूरत कंडीशन है उसमें आपकी गाड़ी कहाँ गिर जाएगी कहाँ पानी भरा है आपको नहीं पता पड़ेगा सो हाँ मौसम एंजॉय कीजिए पर साथ में अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है हम आए दिन देखते हैं सोशल मीडिया पर कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जहां पर किसी की गलती नहीं होती सड़क की गलती होती है तो हाँ खुद का जरूर आप ध्यान रखिएगा और साथ ही में जो भी बारिश का मौसम है इसमें आपके पास अच्छा मौका है कि आप पर्यावरण के लिए भी अच्छा कर सके आपको सिर्फ कुछ नहीं है आपके घर में जो भी बीज होते हैं आपकी गुठली हो गई जामुन के बीज हो गए तो आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो उन्हें स्प्रेड कीजिए आपको एफर्ट नहीं डालने नेचर अपना काम खुद ही कर लेगा बाकी आज बातें तो चल ही रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके साथ कुछ जीवन में काफी फनी हुआ हो या ऐसा जो आपके आपको लगता है कि दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कान ला पाए तब बता दीजिएगा हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं हमारे ट्रैक्स

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की

0: तो शुदा, अभी तो फुटबॉल का भी सीज़न चल रहा है, तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शायद मिडनाइट वॉचिंग इसकी करते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि जितने भी मैच होते हैं वो शायद 3 बजे स्टार्ट होते हैं रात को,
1: बिल्कुल इंडियन
0: क्योंकि
1: टाइम के अकॉर्डिंग,
0: हाँ इंडियन टाइम के
1: बिल्कुल
0: अकॉर्डिंग. और अक्सर ये हुआ है जब मैं स्कूल में थी विकास, तो बहुत बार ऐसा होता था, क्योंकि उस वक्त ये तो नहीं होता था कि कल ऑफिस जाना है, सुबह स्कूल ही तो जाना है, तो
1: बिल्कुल
0: बस
1: बिल्कुल
0: ये सोच के हम रात को मैच देखा करते थे. और क्या मज़ा आता था भाई, जो घर वाले डांटते थे कि अरे इतनी लेट हो गई, मैच देखना ज़रूरी है, पर जो
1: बिल्कुल सही कहा
0: फुटबॉल का
1: आपने,
0: क्रेज़
1: फेवरेट प्लेयर को जो है वो चीयर्स करते हुए हम देखते थे।
0: हाँ. और जहाँ पे वो एक होता है ना कि पहले आपको क्रेज ही नहीं है किसी चीज़ का, फिर आप एक बार
1: बिल्कुल
0: देखना शुरू करो, फिर ऐसे एडिक्ट हो जाओगे आप जो आप उसको छोड़ नहीं पाते. तो भाई फुटबॉल देखने के भी दिन अलग थे. अभी भी कई बार लगता है कि हाँ रात को 3 बजे मैच आने वाला है, बट वही दुनियादारी, ऑफिस, सुबह उठने, फिर काम, और ये इतनी सारी चीज़ें हो जाती है कि देख नहीं पाते. बट हाँ, अभी मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि फुटबॉल के मैच में वापस देखना शुरू करो. आप देखते हो फुटबॉल के मैच?
1: बिल्कुल, कभी कभी जैसे कि आपने बोला कि वक्त मिल जाता है तो देख लेता हूँ, लेकिन वैसे मेरा फेवरेट गेम अगर मैं बात करूँ तो क्रिकेट है। लेकिन हाँ, फुटबॉल में कुछ ऐसे मेरे फेवरेट प्लेयर्स है, या मैं कह सकता हूँ जो टीम्स है, तो उनके मैचेस मैं देखना प्रीफर करता हूँ।
0: अभी
1: मोस्ट
0: तो
1: ऑफ मेरे
0: अभी
1: साथ ये
0: देखते हैं
1: रहता
0: कि फिनाले में कौन सी टीम आती है, और ऑब्वियसली वो जब मैच आएंगे तो कोई स्कोप नहीं है उन्हें मिस किया जाए.
1: बाकी अगर
0: हाँ
1: देखा जाए तो फुटबॉल का जो हर मैच है वो बहुत ही शानदार रहता है, बहुत ही कहते हैं ना क्रेजी टाइप का रहता है, कि वहां पे
0: क्रेजी
1: आपको
0: होता है ऑब्वियसली. वहां पर ऐसा होता है कि अगर कोई टीम ने अगर गोल कर दिया है, और मतलब बहुत लंबा गैप चल रहा है, 2-3 का
1: बिल्कुल
0: गैप नहीं
1: बिल्कुल
0: है, और मतलब 0-4 के हिसाब से चल रहा है या फिर 3-0 के हिसाब से चल रहा है, तब तो लगता है कि हाँ टीम डेफिनेटली एक साइड से, मतलब सिंगल विन
1: बिल्कुल
0: टीम दिखती है. बट कई बार मैच ऐसे होते हैं जो 1-2 का स्कोर चल रहा है और लास्ट मिनट आते आते किसी ने इक्वल कर दिया स्कोर, फिर जो
1: बिल्कुल,
0: एक्स्ट्रा टाइम स्टार्ट होता
1: फिर
0: है,
1: जो रोमांच होता है हमारे मन
0: हाँ
1: के अंदर की, नहीं अब
0: फिर
1: क्या
0: जो
1: होगा। हाँ,
0: एक्स्ट्रा टाइम
1: बिल्कुल
0: स्टार्ट होता
1: बिल्कुल,
0: है, +9 +10 ऐसे मिनट ऐड होते रहते हैं, और फिर लगता है वो मैच कब खत्म होगा,
1: अब गोल
0: फिर
1: होने वाला है, अब गोल
0: पेनल्टी
1: होने वाला
0: शॉट्स
1: है,
0: कब
1: ऐसा लगता है।
0: होंगे.
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हाँ, तो जितने भी हमारे श्रोता है, अगर आप भी हमारे भारत में, हम कह सकते हैं कि क्रिकेट तो ऐसे होता है ना कि ये तो
1: बिल्कुल,
0: है ही है,
1: रग रग
0: इसकी
1: में बसा
0: फैन
1: हुआ है वो
0: फॉलोइंग है.
1: कहते
0: बट
1: थे।
0: हाँ, अगर आपको कोई नया स्पोर्ट अपनी लिस्ट में ऐड करना है जो आपको लगता है बहुत ही ज़्यादा आपको कनेक्ट करके रखेगा, उससे आपको एडिक्शन हो जाएगा, तो ज़रूर से फुटबॉल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए. क्योंकि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, और फिर बाद में काफ़ी साल बाद आएगा जो ऑब्वियसली अभी जो टाइम चल रहा है जब क्वालिफायर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप ज़रूर फुटबॉल देखिए, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट है. और हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि हर स्पोर्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, सिर्फ एक पे ही जो होता है ना कि एक फोकस है कि हाँ क्रिकेट है तो और कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं है. क्रिकेट की
1: बिल्कुल,
0: बात तो अलग ही है, बट इसके अलावा फुटबॉल है, लॉन टेनिस है, और
1: बैडमिंटन है,
0: हॉकी है, बैडमिंटन,
1: बिल्कुल।
0: टेनिस, ये सब देखने लायक स्पोर्ट होते हैं, इनको भी थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि
1: और मुझे ऐसा लगता है कि जो एक चेस है वो बहुत ही
0: हाँ चेस,
1: यूनिक गेम कहा जा सकता है।
0: बिल्कुल चेस को भी आप जो मैचेस होते हैं उसमें एंड मोमेंट तक जो होता है ना कि एक पॉइंट बना रहता है कि अब क्या होगा, कौन जीतने वाला है,
1: बिल्कुल,
0: और
1: और मैं मान सकता हूँ एक तरीके से वो माइंड गेम है, कि आप सामने वाले की चाल समझ सकते हो, कि हाँ आप सामने वाला क्या चाल चल सकता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो वो एक प्रिडिक्टेड गेम हम उसको बोल सकते हैं कहीं ना
0: हाँ.
1: कहीं।
0: और हमारे भारत में मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जो स्पोर्ट्स में
1: बिल्कुल
0: हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें एकदम बराबर वाली जो क्रिकेट की फैन फॉलोइंग है या फिर जो क्रिकेट का सपोर्ट है वो उन्हें नहीं मिलता. तो मेरा ऐसा मानना है कि सारे
1: बिल्कुल
0: स्पोर्ट्स अपनी अपनी जगह पर अहमियत रखते हैं और उन्हें भी इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए. तो हाल फिलहाल तो फुटबॉल की

0: स्पोर्ट्स की बातें हो गई, आपके
1: बिल्कुल
0: जीवन में भी
1: तो
0: कुछ ऐसा चल रहा हो जो लगे आपको कि नहीं, अभी तो कुछ बहुत फनी हो गया है जो शेयर होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए, तो आप
1: बिल्कुल।
0: जरूर से हमें बता सकते हैं
1: और
0: हमारे।
1: साथ ही साथ हमारे श्रोताओं को भी बता दो कि अगर जो हमारा संडे स्पेशल उनकी फेवरेट टीम का मैच है तो वो भी मुझे लगता है कि आज एंजॉय करने वाले हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और संडे है और ऐसा मैच ना ऐसा हो नहीं सकता,
1: बिल्कुल
0: तो आप जरूर से बताइए अगर आपके पास कुछ बातें हैं फनी सी, तो हमारे नंबर हम बता देते हैं जो कि है 02912555300, दूसरा नंबर है 2554300।

0: आज का जो हमारा प्रोग्राम था रिद्धि, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया हमारे लिसनर्स को, और साथ ही साथ हमने देखा कि काफ़ी सारे कॉल्स भी हमें रिसीव हमने किए हैं, और जहाँ पे लोगों ने अपने यूनिक यूनिक जो किस्से हैं, चाहे वो स्कूल से जुड़े हुए हो या फिर किसी भी चीज़ों से जुड़े हुए, वो हमारे साथ शेयर किए
1: हाँ, ये तो
0: हैं।
1: था विकास। आज मज़ा बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि ऐसे किस्से सुनने में मिलते तो लगता है कि यार दुनिया में कितनी अच्छी चीज़ें हो रही हैं जो शायद हम मिस कर देते हैं आम जीवन में। पर हाँ, अपने आसपास जितनी भी अच्छी चीज़ें हो, यही आशा है कि आप सभी उसे ऑब्जर्व करते रहें, और जो भी छोटी सी भी खुशी मिले तो उसे अपने पास समेट लीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, यही मिलकर हमारे जीवन को बड़ा खूबसूरत बनाती है।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल

0: निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: तो श्रोताओ, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। सुना है कि आपने बहुत सारी जो हमसे क्वेश्चन है वो सुने, और ऐसा लगता है साथ ही साथ कि बहुत ही प्यारा प्रोग्राम रहा है रिति हमारा।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ यही आशा है कि आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, मौज मस्ती के साथ। इस गाने के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। शाम के 6 बजने को हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में ही समाचार सुनिएगा।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से अधिक का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। यह निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है। इस बीच पेट्रोलियम निर्यातक देशों ने संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा

देने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूती प्रदान करेगी और सहयोग के नए क्षेत्रों के द्वार खोलेगी। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि बैठक में होने वाले विचार विमर्श से मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने तथा गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने

0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यापार, प्रवासन और अन्य नीतिगत मामलों पर मंत्रालय को सलाह देने संबंधी दावों का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये सोशल मीडिया हैंडल मंत्रालय के साथ काम करने के तरीकों पर सशुल्क सलाह के साथ साथ सत्र भी आयोजित कर रहे हैं। इकाई ने स्पष्ट किया है कि इन व्यक्तियों का विदेश मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। मंत्रालय ने लोगों से इस तरह के फर्जी दावों से सावधान रहने को कहा है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय मजदूर संघ और संबद्ध कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल से सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। अधिकारियों ने लोगों को मॉनसून के दौरान नदियों, जलप्रपातों और अन्य जल निकायों से दूर रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। सतारा, पुणे और कोल्हापुर जिलों के घाट क्षेत्रों में भी तेज वर्षा का अनुमान है। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज ब्राजील का सामना नॉर्वे से होगा। यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये FM सेंसिटिव है। FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 6:05 हुए हैं। वक्त है सुनने का। गुड इवनिंग जोधपुर।

दोस्तों, जोधपुर की इस बेहद हसीन, सुहानी और मखमली शाम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और इस शाम का हम सफर सिद्धार्थ शर्मा। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में अपने फैमिलीज के साथ आज की ये इवनिंग एंजॉय कर रहे होंगे, या शायद कहीं बाहर घूमने गए होंगे। फिल्म जैसे भी हो, स्टे ट्यून टू 102.1 FM सेंसिटिव।

ये दोस्तों 102.1 FM सेंसिटिव पर आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग जोधपुर। कल की रिमझिम फुहारों के बाद आज भी मौसम में वो सौंधी महक घुली हुई है जो केवल बारिश की भीगी मिट्टी में ही महसूस की जा सकती है। मानसून दोस्तों हमारे जीवन में नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन प्रकृति के इस खूबसूरत उपहार के साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपसे कल भी शेयर किया था, इस बदलते मौसम में हमें अपने घरों के आसपास सिर्फ स्थानीय और पारंपरिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि विदेशी पौधे अक्सर हमारे माहौल को सुंदर तो करते हैं, लेकिन यहाँ के जो नेटिव पौधे जितने फायदेमंद हैं उतने वो नहीं हो पाते और खासतौर पर उतने पनप भी नहीं पाते, क्योंकि यहाँ की जलवायु उन्हें रास नहीं आती। तो दोस्तों सिर्फ पौधे लगाना काफी नहीं है, बल्कि जान समझ के पौधे लगाएं और एक सजग नागरिक की तरह उनकी पूरे साल देखभाल भी करें। ये सही मौका सही वक्त है कि हम इस मामले में सोचें और आगे बढ़कर काम करें। आइए प्रकृति को संवारने के इसी संकल्प के साथ आज के इस गीतों के सफर को आगे बढ़ाते हैं।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।

गुड इवनिंग जोधपुर, पट्यून है आपका रेडियो सेट। दोस्तों, कल हमारे गौरवशाली शहर जोधपुर के विकास में जोधपुर सिविल एयरपोर्ट नाम का एक नया नगीना और जुड़ा है, यानी इस पर करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ एक अत्याधुनिक टर्मिनल भवन अब पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसकी सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। सो इट्स टाइम टू सेलिब्रेट नाउ। दोस्तों, खास बात यह है कि इस नए टर्मिनल को जोधपुर की ऐतिहासिक विरासत, यहां के मेहराबों, नक्काशीदार सड़कों और राजपूती स्थापत्य कला को ध्यान में रखते हुए बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। अगर आप इसे देखें तो ये नया टर्मिनल जो है वो न केवल जोधपुर की सांस्कृतिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रख रहा है, बल्कि अब यहां सालाना 20 लाख से ज्यादा यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी। और इसके साथ ही संशोधित उड़ान योजना के तहत मारवाड़ को देश के अन्य प्रमुख हिस्सों से जोड़ने की नई कवायद भी तेज हो गई है। मानसून की इस खुशनुमा मौसम में इस नए एयरपोर्ट टर्मिनल का आगाज हो जाना जोधपुर के हस्तशिल्प, पर्यटन और स्थानीय व्यापार के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। दोस्तों,

दोस्तों आज है 5 जुलाई। आज की जो तारीख है इसको अगर इतिहास के चश्मे से देखें तो हमें एहसास होता है कि आज का दिन भारत के एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र बनने की दिशा में कितना निर्णायक था। जी हाँ, आज ही के दिन 1947 को ब्रिटिश संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक की पहली चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों ये वो ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों के निर्माण की कानूनी रूपरेखा तय की जा रही थी। इस विधेयक पर गहन विचार विमर्श हुआ और कुछ दिनों के बाद यानी 18 जुलाई 1947 को इसे ब्रिटिश राजशाही की अंतिम स्वीकृति मिली। इसी वैधानिक प्रक्रिया के परिणाम के तौर पर अंत में 15 अगस्त 1947 को सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटी और हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन इस घटना को याद करना हमें हमारे लोकतंत्र की जड़ों की गहराई और हमारे पूर्वजों की राजनीतिक कौशल को याद दिलाता है।

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में. अरे वाह.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: अपने खेत बगीचे घर टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए.
4: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, बिराम मंडो.
3: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए.
5: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ.

गुड इवनिंग जोधपुर के आज की इस प्रोग्राम के इस सफर को और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों और बात करते हैं आज के दिन जन्मी उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश की सामाजिक

राजनीतिक, साहित्यिक और वैज्ञानिक ताने बाने को बुना है। हिंदी साहित्य के आधुनिक आकाश के एक चमकते हुए सितारे की आज बात करते हैं प्रसिद्ध नाटककार और कथाकार असगर वजाहत जी के बारे में। उनका जन्म आज ही के दिन हुआ। उनके नाटकों में विशेष तौर पर जिन लाहौर ने व्याख्या ने समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और मानवीय संवेदनाओं की एक नई परिभाषा गढ़ी थी। हिंदी के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासकार डॉक्टर शरद बगारे जी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। प्रतिष्ठित व्यास सम्मान से अलंकृत बगारे जी ने अपनी उत्कृष्ट लेखनी से भारत के ऐतिहासिक चरित्रों को पाठकों के सामने सजीव रूप से प्रस्तुत किया।

दोस्तों और बात करते हैं दक्षिण भारत और विशेष रूप से केरल की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले कद्दावर नेता के करुणाकरण जी के बारे में। आज उनकी जयंती है। चार बार केरल के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे करुणाकरण जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। भारतीय राजनीति में शोषितों, वंचितों और दलितों की मुखर आवाज रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था। देश के एक ऐसे कद्दावर नेता जिन्होंने समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के कल्याण के लिए अनेक नीतियां बनाई। भारतीय शेयर बाजार के बेताज बादशाह और बिग बुल के नाम से मशहूर राकेश झुनझुनवाला का जन्म आज ही के दिन हुआ था। दोस्तों दलाल स्ट्रीट पर उनके द्वारा दिखाए गए इस जो फाइनेंशियल साहस जो है, उनका अनूठा विजन जो है और देश की आर्थिक प्रगति पर उनके अटूट विश्वास ने लाखों युवाओं को निवेश की दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। विज्ञान के क्षेत्र में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले महान वैज्ञानिक डॉक्टर लाल सिंह को हम आज याद करते हैं। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर लाल जी सिंह के शोध ने भारत की न्याय प्रणाली और फोरेंसिक जांच को एक क्रांतिकारी और वैज्ञानिक दिशा प्रदान की थी। और भी बातें हैं हमारे पास बताने के लिए, जुड़े रहिए हमारे साथ 102.1 FM सन सिटी पर।

दोस्तों बात करते हैं भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर को संस्थागत और गौरवमयी बनाने वाली महान फिल्म के निर्माता और न्यू थिएटर्स के संस्थापक बीएन सरकार जी की भी आज जयंती है। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अनमूल्य योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। खेल जगत से भारत के महान तैराक सचिन नाग का जन्म आज ही के दिन हुआ था और उन्होंने साल 1951 के पहले एशियाई खेलों में भारत के लिए तैराकी में पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। और बात करें आधुनिक खेल जगत की तो बैडमिंटन के खेल में भारत की सबसे चमकदार सनसनी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु का भी आज बर्थडे है। सिंधु के खेल, उनकी लगन और कोर्ट पर उनके जज्बे ने आज भारत की करोड़ों बेटियों को खेलों में अपना करियर बनाने का हौसला दिया है। देश की इस होनहार बेटी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। इसके साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपने कार्यों से योगदान देने वाली प्रबुद्ध हस्ती ज्योति खरे का भी आज जन्मदिन पर उन्हें याद देते हैं। आज इस प्रोग्राम में अब अगले गीत के साथ

जी हाँ श्रोताओं, आज 5 जुलाई के दिन आज जो सुबह होती है नए संकल्पों और जन्मों के उत्सव के साथ आती है, वहीं आज की शाम इतिहास की ऐसी दो महान आत्माओं के महाप्रयाण की भी याद दिलाती है जिन्होंने राष्ट्र को अपनी वैचारिक और साहित्यिक संपदा से समृद्ध किया। आज ही के दिन भारत के अद्भुत और विलक्षण कवयित्री तोरुदत्त ने इस नश्वर शरीर को अलविदा कहा था। मात्र 21 साल की बेहद अल्पायु में अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर उन्होंने अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में भारतीय पौराणिक कथाओं और संवेदनाओं को जिस खूबसूरती से पिरोया, वो आज भी वैश्विक साहित्य में विस्मय का विषय है। दोस्तों, इसी के साथ आज बिहार विभूति के नाम से विख्यात महान स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जी की भी पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाने वाले अनुग्रह बाबू अपनी सादगी, ईमानदारी और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए हमेशा जाने जाएंगे। देश के विकास में उनके दिए योगदान को भारत हमेशा सम्मान के साथ याद रखेगा। आइए इन दोनों महान विभूतियों को अपनी गहरी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

दोस्तों, समय निरंतर आगे बढ़ता रहता है और एक घंटे का हमारा ये सफर भी अब अपनी अंतिम पड़ाव पे आ पहुंचा है। आज हमने अच्छे मानसून की सुखद उम्मीद के बीच जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात पर चर्चा की, बातें और भी बहुत सारी की। मुझे पूरा विश्वास है कि इन महान व्यक्तित्वों की जीवन की कहानियां और इतिहास के ये सुनहरे पन्ने आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। इस खूबसूरत शाम का उठाइए आनंद, अपनों का ध्यान रखिए और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाते रहिए। तो श्रोताओं, आज के गुड इवनिंग जोधपुर में मेरी और आपकी मुलाकात बस यहीं तक। अगले अंक में कुछ नई जानकारियां, नए ऐतिहासिक प्रसंग और जोधपुर के ताजा तरीन मिजाज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त, अपने हम सफर सिद्धार्थ शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गुड इवनिंग जोधपुर, ये एफएम सेंसिटी है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में सुनिएगा जय माला।
1: एक लीटर पानी में 5 मिनट।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा विशेष जयमाला कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवां बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें

विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। भारतीय शूरवीरों के इतिहास के पन्नों को पलटें तो मोतियों से जगमगाती हमारे शूरवीरों की विजय गाथा के मोती झिलमिलाते हैं। ये आर्यावर्त के वो शूरवीर हैं जिन्होंने न जाने कितनी ही बार जंगी हवाओं के रुख को मोड़ दिया। दुश्वारियों की आंधियां इन्हें डरा न सकी, दुर्गम रास्ते हौसलों को कम न कर सके। न जाने कितनी बार जाने कुर्बान भी की, फतेह

भारतीय शूरवीरों के इतिहास के पन्नों को पलटें तो मोतियों से जगमगाती हमारे शूरवीरों की विजय गाथा के मोती झिलमिलाते हैं। ये आर्यावर्त के वो शूरवीर हैं जिन्होंने न जाने कितनी ही बार जंगी हवाओं के रुख को मोड़ दिया। दुश्वारियों की आंधियां इन्हें डरा न सकी, दुर्गम रास्ते हौसलों को कम न कर सके। न जाने कितनी बार जाने कुर्बान भी की, फतेह का परचम लहराया। फौजी साथियों, आज हम शौर्य गाथा की इस कड़ी में सलाम करते हैं मां भारती के फरमाबरदार बेटे और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के धाकड़ सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को।

रामकृष्ण की आंखों में भी देशभक्ति का सपना झिलमिलाता था। इधर रामकृष्ण वाधवा का बचपन परवान चढ़ने लगा तो उधर नए भारत ने अभी अभी आंखें खोली ही थीं कि दुश्मनों के सरहद पार से भारत में घुसपैठ की खबरें अक्सर सुनाई दे ही जाती थीं। उस पर रह रहकर युद्ध के बादलों का मंडराना, खासकर उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी सीमाओं में लगातार बढ़ते खतरे, जो कबाइलियों की शक्ल में भारत में घुसपैठ और खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की ताक में रहते, ऐसी असंवेदनशील परिस्थितियों ने युवा वाधवा को भी झोर कर रख दिया और फौज में भर्ती को लेकर उनके इरादे और पक्के होते चले गए। देश की सेवा का जज्बा इनके दिल में बढ़ता गया और फिर वो दिन भी आया जब रामकृष्ण वाधवा भारतीय फौज का हिस्सा बन गए। 2 फरवरी सन 1964 को वाधवा आर्डलरी फोर्स यानी तोपखाना बल में शामिल कर लिए गए। अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1968 में वो भारतीय सीमा सुरक्षा बल का हिस्सा बन गए। सेना में उनके रणकौशल और उनकी बहादुरी का एक अलग ही मकाम था। इस तरह रामकृष्ण वाधवा बहुत जल्दी भारतीय सीमा सुरक्षा बल की अपनी टुकड़ी का एक जाना माना नाम बन गए।

साथियों, भारत के उत्तर पश्चिम राज्य पंजाब की खूबसूरत वादियों ने भला किसका दिल न जीता होगा। यहाँ के अति प्राचीन और खूबसूरत नगर जलंधर में 10 नवंबर सन 1940 को रामकृष्ण वाधवा का जन्म हुआ। मातृभूमि की ये वही माटी है जिसने न जाने कितने ही शूरवीरों को जन्म दिया। तो

1947 के बंटवारे के जख्म अभी ताजा ही थे कि सरहद पार से दुश्मनों के रेंगते साए गहराने लगे। भारत से अलग हुए मुल्क यानी उत्तर पश्चिमी सीमाओं की बेचैनी साफ नजर आने लगी। इससे लगी उत्तर पूर्वी सीमाओं की संवेदनशीलता को भी समझने में भारत को समय न लगा। साल 1971 के आते आते सन 1947 में हमसे अलग हुए मुल्क में गृह युद्ध के बादल अब बवंडर में बदल चुके थे। पूर्वी बंगाल में मुक्तिवाहिनी सेना ने जंग का ऐलान कर दिया था और 1971 की शुरुआत में ही पूर्वी बंगाल में स्वतंत्रता के लिए जगह जगह विद्रोह तेज हो गए। राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत मुक्तिवाहिनी सेना और कई स्वचालित संगठनों ने क्रांति की अलग जगह दी और ये युद्ध आर पार की स्थिति में पहुंच गया। सेना की दमनकारी नीतियों का चक्र कुछ ऐसा चला कि शायद ही कोई ऐसा तबका हो जो इसकी जद में ना आया हो। भारी संख्या में पूर्वी बंगाल से लोगों का पलायन भारतीय सीमाओं में होने लगा, जैसे अक्सर युद्ध के दरमियान देखा ही जाता है। असहाय लोगों की चीखों पुकार ने भारत में भी हलचल मचा दी। इधर पूर्वी बंगाल में स्वतंत्रता की इस लड़ाई में अपने जोशो खरोश को बरकरार रखते हुए क्रांतिकारियों ने कई सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया और 1971 के मध्य तक अपनी अंतरिम सरकार का गठन भी कर लिया।

0: और जी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट राम कृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति। राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित। HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।
0: रखा गया और चप्पे चप्पे पर गश्त बढ़ा दी गई, क्योंकि भारत की सीमाएं पूर्वी बंगाल और हमसे अलग हुए राष्ट्र से उत्तर पश्चिमी सीमाओं से मिलती थीं। इसलिए शत्रु द्वारा दोनों ही छोर से भारत पर हमले की आशंका प्रबल थी, और जल्द ही ये शक यकीन में बदल गया जब हार के डर से बौखलाए दुश्मन ने 3 दिसंबर सन 1971 की शाम अचानक भारत के 11 हवाई अड्डों पर घात लगाकर हमला किया, जो दुश्मनों के ऑपरेशन चंगेज खां का एक हिस्सा था। इसे भारत पर हमला मानते हुए जवाबी कार्रवाई की गई और कई जगहों पर भारत की तरफ से भी मोर्चा बंदी की गई। बिजली की रफ्तार से हुए इस हमले में उस रात 23 लड़ाकू उड़ानें भरी गईं। 2 तक ये शत्रु एयरबेस ठप रहे। अग्रिम हवाई अड्डों पर अतिरिक्त विमान भारत में उड़ान भरने को तैयार थे। ये हमला दुश्मनों को नागवार गुजरा।
2: 5,000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्व।

और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में

सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की

इधर पूर्वी बंगाल में घमासान मचा हुआ था। मुक्ति वाहिनी सेना और राष्ट्र और स्वतंत्रता के रक्षकों ने गुरिल्ला युद्ध नीति के तहत सफलता हासिल की, सरकारी खजाने और शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और पूर्वी बंगाल चल पड़ा अपनी असल आजादी की तरफ। भारत में न सिर्फ हवाई हमले हुए बल्कि अपनी छाती पीटता दुश्मन जमीनी हमले की फिराक में भी भारतीय सीमाओं में घुसने की कवायद करने लगा, सरहदों पर मौके तलाशने लगा। बौखलाहट में शत्रुओं ने भारत के अलग अलग मोर्चों को निशाना बनाना शुरू किया। इसी कोशिश में मौका पाकर पंजाब स्थित फिरोजपुर सीमा पर ममदोह सेक्टर के पास 5 दिसंबर को राजा मोहतम चेक पोस्ट पर शत्रु ने घात लगाकर हमला कर दिया। सीमा सुरक्षा बल की इस चौकी की अहमियत बेहद खास है, जहां से शत्रु की गतिशीलता को आंका जा सकता है। देर रात अचानक हुए इस हमले और तेजी से होती चहलकदमी ने साफ कर दिया कि दुश्मनों ने फिर एक बार पीठ पर वार किया है और देखते ही देखते इस चौकी को दुश्मनों ने अपने कब्जे में कर लिया। इसकी इत्तला भारतीय सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा को दी गई

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में हम आपको सुनवा रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा। बिना वक्त गवाए वाधवा अपनी दो प्लेटून्स के साथ मोर्चे पर रवाना हो गए। सरहदी इलाकों की ये चौकी अपने रूखे मौसम और सुनसान वादियों के लिए जानी जाती है, जहां कांटेदार बाढ़ के इर्द गिर्द सीमा सुरक्षा बल की चुनौतियां ज्यादा ही हैं। लिहाजा कहां बंकर हैं, कहां खाई यानी ट्रेंचेस, कहां बारूदी सुरंगें बिछाई गईं, कहां मोर्टार्स, कहां कितने असलाहे, कितनी तरफ से हैवी शेलिंग हो सकती है, कहना मुश्किल था। और फिर उतना ही मुश्किल कि दुश्मन सैनिकों की तादाद क्या है। इन सभी खतरों को चुनौतियां देते, अपनी चौकी को अपने कब्जे में करने, दुश्मनों को धूल चटाने और उन्हें मौत की नींद सुलाने का दृढ़ निश्चय कर कमांडेंट वाधवा आगे बढ़ने लगे। राजा मोहतम चेक पोस्ट की ये चौकी कुछ ऊंचाइयों पर बनाई गई थी, जिससे शत्रु की निगरानी आसानी से की जा सके। ये पोस्ट जिसमें अब ऊपर की तरफ और नीचे खाई में शत्रुओं ने डेरा डाल रखा था, कमांडेंट वाधवा ने अपनी सैनिक टुकड़ी को दो तरफ से कवर देने की ताकीद की और मोर्चे पर डट गए। भारतीय सेना की इस टुकड़ी के आने की सुगबुगाहट होते ही शत्रुओं ने ऊपर की तरफ से कमांडेंट वाधवा और उनके साथियों पर मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। इस फायरिंग से खुद को बचाते हुए, खाई की दीवारों की आड़ लेते हुए भारतीय सेना की इस टुकड़ी को सतर्कता से वाधवा ने चौकी के ऊपर की ओर पोजीशन लेने का रास्ता सुझाया। चंद सैनिकों को निगरानी और दुश्मनों को रोकने को लेकर

निचले इलाके पर तैनात होने को कहा और स्वयं आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा और उनके साथियों ने अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया और एक के बाद एक हद गोले दागते गए। आपसी गुत्थम गुत्था में वाधवा और उनके साथियों ने कई दुश्मन सैनिकों को अपनी संगीन का भी निशाना बनाया और एक को जिंदा पकड़ लिया। अपने असलाहों का जखीरा वहीं छोड़ दुश्मन जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। अब तक इस चौकी पर वाधवा और उनके सैनिकों का कब्जा हो चुका था।

भारतीय सेना की इस पोस्ट पर कब्जा करने का बेइलाज सपना लिए शत्रु धीरे धीरे इसी चौकी की तरफ फिर रेंगने लगा। 10 दिसंबर की आधी रात का सन्नाटा था कि अचानक फिर वीराने में गोलियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। वाधवा ने समझ लिया कि वो शत्रु बाज क्यों कर आएगा, इनके इरादों को एक बार फिर नाकाम करने की सौगंध उठाए। कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधते हुए बेहिसाब फायरिंग के बीच अपने जख्मों की परवाह किए बिना दुश्मनों पर सिंह की तरह टूट पड़े। हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक मशीन गन से निकलती गोलियों को दुश्मनों पर फुर्ती से दागना शुरू किया। इधर बारूदी माइंस के फटने से और दुश्मनों की फायरिंग में कुछ भारतीय सैनिक साथियों की भी शहादत हुई।

अपनी नींद सुला दिया और बाकी बचे अपने सैनिकों को हिफाजत से लेते हुए लगभग पूरी चौकी पर पुनः कब्जा कर लिया। इस बात की तसल्ली की कि अब मंजिले मकसूद को हासिल किया जा चुका है। दुश्मन राजा मोहतम चौकी से भागने की अफरा तफरी में हलाक होता रहा और कुछ बचे दुश्मनों ने मौत पक्की समझ बची चंद गोलियों को खंगाला और हमला करते रहे। वाधवा खाई के एक किनारे से दूसरे किनारे अपने साथियों के साथ वहीं डटे रहे कि कोई शत्रु अब भी मौके की ताक में शायद कहीं घात लगाकर बैठा हो। जिस्म लहूलुहान आंखों में फतेह का तिरंगा लहराता था। मातृभूमि की माटी को तन में लपेटे इस अजीम व शान वतन को महफूज रखने की वो कसम जो एक बार फिर पूरी हुई। कुछ ऐसा ही नजारा था, कुछ ऐसा ही सपना फिर एक बार सच होता नजर आया। ये सोचते हुए एक फौजी के फर्ज पर आगे बढ़ते रहे कि तभी खाई में बिछाई गई बारूदी सुरंग में एक जोरदार धमाका हुआ और आर के वाधवा के जिस्म को लहूलुहान कर गया। मां भारती के इस शेर दिल सिपाही ने अपनी सांसों को थाम मादरे वतन की इस मिट्टी को सिजदा किया। आंखों में जीत का तिरंगा लहराता रहा, होठों पर फिर एक बार मुस्कुराहट बिखर गई। साथ ही सैनिकों ने अपने जांबाज अफसर को तुरंत सहारा दिया, उन्हें फरीदकोट दाखिल करवाया गया जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जांबाज कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा ने 11 दिसंबर को आखिरी सांसें ली और मातृभूमि की रक्षा में जीत का परचम लहराते हुए देश के लिए शहीद

फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जांबाज सिपाही असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा की शौर्य गाथा।

आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: भावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं इंद्रधनुष में साज और आवाज। इसमें आज आप सुनेंगे प्रतिज्ञा सेन और सुमित भौमिक की पियानो और वायलिन पर बजाई फिल्मी धुनें। आज की फिल्में हैं सिलसिला और मुकद्दर का सिकंदर।

0: आज के हवा महल में प्रस्तुत है हरी मेहरा की लिखी नाटिका बहादुर की शादी, निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर।
1: बहादुर, अबे ओ बहादुर के बच्चे।
2: आया साहब।
3: जी साहब, गुड मॉर्निंग साहब।
1: भाई गुड मॉर्निंग के लगते अलार्म बंद कर, ये आज अलार्म क्यों लगाया है? आज इतवार है और तुझे मालूम है छुट्टी के दिन मैं इतनी जल्दी नहीं उठता।
3: वो तो मालूम है साहब, पर आज शाम को भी तो जल्दी तैयार होना है।
1: वो किस खुशी में?
3: साहब खुशी की तो बात है ही, हमने आपको कितने दिन पहले से बताया था साहब, आज लड़की वाले आपसे मिलने आएंगे।
1: लड़की वाले? किसकी लड़की? कैसी लड़की? मुझे किसी लड़की वड़की से नहीं मिलना।
3: लड़की से नहीं साहब, लड़की के बाप से।
1: किसका बाप? लगता है रात ज्यादा चढ़ा ली जो नाप शनाप बके चला जा रहा है। चल दबा हो जाए यहाँ से और सोने दे मुझे।
3: क्या है साहब, आप भी हमारी बेइज्जती खराब करना चाहते हैं साहब? हमारी इज्जत का सवाल है साहब, वो लोग ठीक 10 बजे आ जाएंगे और अभी हमें आपको नाश्ता देकर हजामत बनवाने जाना है साहब, स्नान भी करना है और तैयार भी होना है।
1: भाई बक बक कर रहे हो। ओफो, किस जंगली से पाला पड़ा है। कहा ना मुझे अभी नाश्ता नहीं करना, तुम जाओ अपनी हजामत कराओ और मुझे सोने दो।
3: पर साहब आपको भी तो टाइम पर रेडी होना है साहब, और वो लोग आपको मिलने आते हैं साहब।
1: कौन लोग? मुझे कोई नहीं मिलने आ रहा।
3: साहब जी आप सब कुछ भूल गया। साहब वो लोग हमारी शादी के वास्ते आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे साहब? हमारा और कौन है साहब इधर? आप ही तो है हमारा माई बाप साहब, भाई बंधु आप ही तो है, और 10 बरस से आपके साथ हैं हम साहब।
1: ठीक है, देखो अभी सिर्फ 7 ही बजे हैं, बहुत वक्त है। हाँ, मैं वक्त पर तैयार हो जाऊंगा। हाँ, तुम दबा हो जाओ यहाँ से, जाओ बैठा।
3: साहब जी
1: हा? तुम अभी तक यही हो
3: साहब?
1: क्या है
3: साहब, वो रीटा मैम साहब आज भी आएंगी।
1: हाँ, पर ये बेहुदा सवाल किस लिए?
3: नहीं साहब, आप उनको फोन कर दो साहब, आज वो थोड़ा देर से आएंगी।
1: क्यों?
3: वो साहब इसलिए कि हमने लड़की वालों को बोला है कि हमारे साहब का अभी शादी नहीं बना।
1: ठीक ही तो बोला है।
3: ओहो, यही तो गड़बड़ है साहब, अगर वो लोग रीटा मैम साहब को यहाँ देखेंगे तो क्या समझेंगे?
1: तो उनके समझने ना समझने से क्या होता है?
3: सब कुछ होता है साहब, सब कुछ होता है। हम आपको कितनी बार बोला है साहब कि तुम लोग अपनी शादी बना लो, अब हमारी मुसीबत हो जाएगी साहब।
1: हमारी शादी हो या ना हो उससे तुम्हारी कैसे मुसीबत हो जाएगी?
3: वो लोग ठहरे सीधे साधे पहाड़ी आदमी।

0: साहब वो बड़े लोगों की बात नहीं समझते। हमारे मुल्क में शादी के बिना लड़की किसी के घर में नहीं जाती। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, तुम साहब उनको मेम साहब को फोन कर दो।
1: वो बकवास बंद करो, सोने दो मुझे, गेट आउट।
0: हाँ साहब, हम तो गेट आउट होता है साहब, पर आप जरा सोने से पहले हमारी बात कुछ जरा थोड़ा गौर करो साहब, जरा सोचो।
2: बहादुर, अरे भाई बहादुर, दरवाजा खोलो यार।
3: लगता है कोई लंबी चौड़ी हजामत कराने गया है।
2: क्या मुसीबत है।
3: अरे रीटा, तुम क्या बचा है?
4: डार्लिंग, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
3: हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन अचानक ये सवाल क्यों? फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं

0: अब अचानक ये सवाल क्यों? फिर तुम, मेरा मतलब मैं तो तुम्हें 10 बजे से पहले एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
1: थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी। बहादुर ने फोन किया, शाबाश देर से उठेगा, शुमेम साहब तुम भी देर से आना। मैंने पूछा क्या बात है तो बोला साहब की तबीयत रात को जरा ठीक नहीं थी, इसलिए देर से आंख लगी है। कहाँ है बहादुर? मुझे तो डरा दिया उसने।
0: क्या बजा? 9:30। अरे वो लोग 10 बजे आएंगे।
1: कौन लोग? तुम्हें मालूम था डार्लिंग, आज हमारा सारा दिन बाहर रहने का प्रोग्राम है, फिर तुमने 10 बजे का अपॉइंटमेंट किसे दे दिया?
0: भाई मैंने नहीं, बहादुर ने।
1: बहादुर ने? ये बहादुर आज को मिस्टीरियस फिगर बन रहा है। देखो अनिल डार्लिंग, अब ज्यादा परेशान ना करो, हमारा संडे सब स्पॉइल हो जाएगा। तुम जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, मैं चाय लाती हूँ और 10 बजे से पहले ही रफू चलो।
0: नहीं नहीं, अरे अरे भाई सुनो तो, ऐसा नहीं हो सकता।
1: क्या?
0: किसी की इज्जत का सवाल है, तुम नहीं जानती।
1: मैं सब जानती हूँ। यू गेट रेडी एंड नो मोर एक्सक्यूजेस, ओके? खूब तमाशा है, देखा मैं कब से कह रही हूँ लेट्स गेट मैरिड। लेकिन जनाब को तो पहले प्रमोशन चाहिए, फिर बड़ा फ्लैट चाहिए, स्कूटी के बजाय कार चाहिए, और मेरे ख्याल से होने वाले बच्चे के लिए किसी स्कूल में जगह का बंदोबस्त भी पहले से ही हो जाना चाहिए। हु? क्यों?
0: अरे भाई इसमें हंसने की क्या बात है? दिस इज कॉल्ड प्री प्लानिंग। हमारी शादी और बहादुर की शादी में बहुत फर्क है। बहादुर आ गया लगता है। बहादुर, बहादुर
2: आया साहब, आया साहब।
3: ओ मेम साहब, आप भी आ गया।
1: वाह बहादुर, तुम तो आज बड़े टिप टॉप हो, क्या बात है?
3: हम साहब वो आज।
1: घबराने की कोई बात नहीं बहादुर, मुझे साहब ने सब कुछ बता दिया है।
3: सब कुछ बता दिया?
1: हाँ हाँ, डरो नहीं, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगी। जैसे ही वो लोग आएंगे मैं दूसरे कमरे में चली जाऊंगी, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो।
3: नहीं नहीं मेम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम इधर ही बैठना, हम सब कुछ संभाल लेगा। साहब वो लोग आ गए साहब, हम हाथ जोड़ता है साहब, आप हमारा इज्जत का ख्याल रखना साहब।
0: आइए आइए, तशरीफ लाइए।
4: सलाम साहब जी, सलाम साहब जी।
0: सलाम सलाम, बैठिए। अरे अरे नीचे नहीं,
4: नहीं साहब,
0: यहाँ यहाँ कुर्सी पर बैठिए।
4: नहीं साहब, हम लोग नीचे ही ठीक है साहब।
0: ये कैसे हो सकता है, आप हमारे मेहमान हैं।
4: अच्छा लक्ष्मी, तुम इसी कुर्सी में बैठ जाओ साहब जी, ये हमारा घर वाली है साहब, हमारा लड़की की माँ है साहब, ये बहुत शर्माता है साहब, बहुत शर्माता है। अरे मेरी शर्माती रहोगी या साहब को सलाम भी करोगी? सलाम करो।
1: सलाम साहब।
0: सलाम।
1: सलाम मेम साहब।
5: सलाम।
1: बहादुर, एक तुम्हारी मालकिन है, तुम तो बोला था कि तुम्हारे साहब ने अभी शादी नहीं बनाया।
0: ये ठीक ही कहा था बहादुर ने आपसे, हमारी अभी शादी नहीं हुई पर एंगेजमेंट, मेरा मतलब है सगाई हो चुकी है।
4: मेम साहब शादी से पहले ही इसी घर में रहती हैं?
1: जी नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ।
4: होटल में साहब?
1: होटल नहीं, हॉस्टल, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ रहती हैं। शादी के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। नहीं नहीं नहीं, इस घर में नहीं साहब, इससे भी बड़ा घर लेंगे तब।
0: ये सब बातें इनसे करने की क्या जरूरत है, ये लोग बहादुर के रिश्ते के लिए आए हैं, हमारी शादी तय करने के लिए नहीं। बहादुर भाई, इन लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए तो लाओ।
3: मैं अभी लाता हूँ साहब।
1: ठहरो बहादुर, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ।
0: आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
4: नहीं साहब नहीं, हम बिल्कुल नहीं साहब, हम लड़की वाले हैं साहब, हम आपका पानी तो क्या उसमें नहा भी नहीं सकते साहब।
0: अरे भाई ये सब पुरानी बातें हैं, ये घर बहादुर के माँ बाप का तो है नहीं, आप यहाँ कुछ भी खा पी सकते हैं।
1: ए जी, बहादुर तो बोलता था कि साहब इसके माए बाप सब कुछ हैं, पर साहब तो कुछ और ही बोलते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, आप लोग गलत ना समझिए, मेरा मतलब था कि अभी हमारी शादी थोड़ी हुई है। रीटा।
1: हाँ तो आप लोग ठंडा लेंगे या गरम?
4: अच्छा साहब, आप बहुत मजबूर करता है तो दोनों ले लेंगे साहब, दोनों ले लेंगे।
1: चलो आप शाब से शाब शाब बात कर लो।
0: हैं? क्या बात करना चाहते हैं आप लोग? अगर बहादुर के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि लड़का निहायत शरीफ, मेहनती और अच्छे घर का है। मेरे पास पिछले 10-12 बरस से है, इसका बाप मेरे बाप के पास काम करता था और हो सकता है कि इसका दादा मेरे दादा के पास रहा हो। और कुछ जानना चाहते हैं तो पूछिए।
4: नहीं साहब नहीं, बहादुर के बारे में तो हम साहब सब कुछ जानते हैं, उसका बाप हमारे गांव का है साहब।
0: तो फिर रुकावट किस बात की है, फौरन शादी कर डालिए। और हाँ बाय द वे, आपकी लड़की को बहादुर ने देखा तो है ना?
1: राम राम राम राम राम राम, क्या बोलते हैं साहब, शादी से पहले हम अपनी पार्वती को गैर मर्द को कैसे दिखाएंगे?
0: लेकिन लड़के लड़के को तो एक दूसरे को देख लेना चाहिए।

0: इसमें हर्जी क्या है, शादी तो उन दोनों को करनी है ना।
1: अरे क्या बोलता है साहब, हमने भी अपनी लक्ष्मी को शादी के बाद ही देखा था साहब।
0: वो तो नजर आ ही रहा।
1: क्या मतलब साहब?
0: नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये था कि अब जमाना बदल गया है।
1: कुछ अदला बदला नहीं साहब, कुछ अदला बदला नहीं, दरअसल आदमी लोग बहुत बेशरम हो गया है साहब। हमारी पार्वती बहुत सुंदर है साहब, कोई नुकश नहीं, घर का सब काम काज जानती है, खेती में काम करती है साहब, घर का चूल्हा चक्की।
0: खुशी की बात है ये तो। अब ये बताइए शादी कब करना चाहते हैं आप लोग?
1: शादी की बात भी हो जाएगा साहब, पहले एक बात का फैसला हो जाना चाहिए साहब।
0: हाँ हाँ, क्या बात है?
1: तुम्हारी बात का साहब।
0: भाई मुझे कोई एतराज नहीं, बहादुर को रिश्ता पसंद है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला।
1: नहीं साहब नहीं, बात ये साहब के बात ये कि
2: मैं... तो बोलते क्यों नहीं, इसमें संकोच की क्या बात है अजी, पार्वती की जिंदगी का सवाल है, बोल दो साहब को, साफ साफ सब बात कर दो।
1: चल तू बोल दे साफ साफ।
0: देखिए अगर कुछ लेने देने की या दान दहेज की बात है तो वो आप लोग बहादुर से ही फैसला कर लीजिए।
1: नहीं साहब नहीं, दान दहेज लेने देने पर हम तो थूक दें साहब। हाँ ये फैसला तो आपको करना है साहब।
0: मुझको?
1: जी
0: बोलिए बोलिए, क्या फैसला करना चाहते हैं
2: साहब? आप शादी कब करेंगे?
0: भाई मैंने तो आपको पहले ही से कह दिया था ये सारी बातें आप बहादुर से ही करें।
1: तुम्हारी शादी का बहादुर थोड़ी फैसला करेगा साहब।
0: मेरी शादी? क्या मतलब?
1: मतलब ये साहब कि तुम अपना शादी कब करोगे, उसके माफी की हम बहादुर और पार्वती की शादी का दिन निकालेंगे।
0: देखिए आप लोग हद से बढ़ रहे हैं, मैं शादी कब करूंगा, कैसे करूंगा, कहां करूंगा, ये सब पूछने वाले आप कौन होते हैं?
2: चलो जी अब बस बहुत हो गया, हमने तुमको पहले ही बोला था कि बहादुर को साहब बोल दो, साहब का शादी होगा तो पार्वती की शादी करेंगे। अपनी छोकरी को ऐसे घर में कैसे छोड़ दे, अपना भी कोई धर्म है।
1: ठीक कहती है ऋतु, बिल्कुल ठीक कहती है। अच्छा साहब माफी देना साहब, हमने आपका बहुत टाइम खराब किया साहब। चल लक्ष्मी।
3: क्या बात है साहब, ये लोग इतना गुस्सा में क्यों है साहब?
0: बहादुर तुम्हें पहले से इन लोगों से सब फैसला कर लेना था और फिर मेरे पास लाना था।
4: क्या फैसला करना है, मैं भी तो सुनूं।
1: बात ये मेम साहब के मेरा
2: तो पीछे हटो, मेम साहब से हम बात करेंगे। हाँ तो मेम साहब, शादी के बाद हमारा छोकरी बहादुर के पास नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? ठीक, फिर तुम्हें बोलो तुम्हारा और साहब का शादी अभी नहीं बना है, साहब अकेला है। मेम साहब हम पार्वती को ऐसे कैसे इधर रहने को छोड़ देगा? हाँ
4: बिल्कुल ठीक।
0: रीटा तुम भी क्या इनके हाँ में हाँ मिलाती जा रही हो? सब मुख्तसर ये है कि ये चाहते हैं हम दोनों शादी कर ले पहले फिर बहादुर की शादी हो।
4: ये भी ठीक।
0: अरे व्हाट नॉनसेंस, हम अभी 10 बरस शादी नहीं करेंगे तो क्या बहादुर भी कुंवारा रहेगा?
4: कभी नहीं हो सकता।
0: क्या नहीं हो सकता?
4: यही कि बहादुर कुंवारा रहे, इसीलिए ये जरूरी है कि पहले हम दोनों शादी कर ले।
0: ये कोई जबरदस्ती है?
1: चलो लक्ष्मी। सलाम मैम साहब। सलाम साहब।
0: क्या मुसीबत है, दिस इज स्टेट ब्लैकमेल। ठहरिए ठहरिए आप लोग, आप लोग बहादुर की शादी की तैयारी करें, हम भी अपनी शादी का इंतजाम करते हैं।
5: ओह डार्लिंग, दैट्स द स्पिरिट।
1: थैंक यू साहब, थैंक यू। अब हम शांति से जा सकते हैं साहब। अच्छा बहादुर, शादी जब साहब का हो जाए तो हमको खबर देना।
4: अच्छा खबर नहीं बल्कि आप सब लोगों को हमारी शादी में आना होगा।
1: जरूर आएंगे मैम साहब, जरूर आएंगे। अच्छा सलाम साहब। सलाम मैम साहब।
4: सलाम
1: साहब।
4: सलाम
1: मैम साहब।
0: बहादुर इन लोगों को लिफ्ट तक छोड़ो।
3: हाँ साहब, जाते हैं साहब।
5: Oh darling, I'm so happy. Let's celebrate in a grand style. चलो तुम भी तैयार हो जाओ और मैं भी।
0: Good idea. मैं बस गया और आया।
3: भीम साहब जी, साहब किधर गया?
5: अंदर कमरे में तैयार होने।
3: अच्छा
5: वाह बहादुर, तुमने तो आज कमाल कर दिया।
3: ये सब तो मैंने आपके लिए किया मेम साहब। हाँ हम साहब को रोज रोज समझाता था, साहब शादी कर लो, साहब शादी कर लो, पर अपने कभी सुनता ही नहीं था साहब, तो इसलिए ये ड्रामा हमने सोचा। ठीक था ना मेम साहब?
5: अरे ठीक नहीं था बहादुर।
4: अच्छा बहादुर, तुम इन दोनों को कहाँ से पकड़ लाए?
3: ये दोनों हमारे सास ससुर है मेम साहब। हाँ अपने मुल्क से बुलाए इनको।
4: ओ, तुम्हारे होने वाले सास ससुर?
3: ओ नहीं नहीं नहीं मेम साहब, हमारा शादी तो बचपन में ही हो गया था।
4: हाँ,
3: हाँ हम 10 बरस का था तब। अब तो हमारा गौना होने वाला मेम साहब। हाँ, तब हम अपनी पार्वती को इधर बुलाएंगे।
5: क्या बात है, वाह बहादुर वाह, मैं तो तुम्हें बिल्कुल बुद्धू समझती थी, पर तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इसी बात पर आज तुम्हें सारे दिन की छुट्टी और ये लो इनाम, और तुम भी मौज करो। हाँ
3: थैंक यू मेम साहब।

बहादुर की शादी, हरी मेहरा की लिखी नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक गंगा प्रसाद माथुर। विविध भारती की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला गाना हमने लिया है फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो से। इसे गाया है अरिजीत सिंह ने, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत प्रीति।

कार्यक्रम का अगला गीत बैड बॉय फिल्म से है। इसे गाया है अरिजीत सिंह और ज्योतिका तांगरी ने। गीत सोनिया कपूर रेशमिया का, संगीत हिमेश रेशमिया का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: चित्रलोक का शेष भाग अंतराल के उस पार।
3: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
4: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

अंतराल के बाद चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लज्जा से। इसे गाया है के ने, गीत समीर का है, संगीत अनु मलिक का।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजोल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म का गाना, ऐश किंग और शशा त्रिपाठी की आवाजों में। गीत राफत महमूद और तनिष्क बागची का है, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

0: राजस्थान की मरुभूमि अब बन चुकी है अवसरों की भूमि। राजस्थान रिफाइनरी, जहां लगभग 1,35,000 रोजगारों का सृजन हुआ। स्थानीय लोगों को घर गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। राजस्थान को पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोकेमिकल निवेश के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेगिस्तान के रत्न राजस्थान रिफाइनरी को कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।
1: HPCL राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान की रग रग से बहेगी भारत की ऊर्जा शक्ति।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग एक घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की दो अलग अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है।

0: श्री सिंधिया ने कहा कि यह परियोजना जिले को औद्योगिक विकास रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी यह कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गांव में बनेगा इसमें गोला बारूद उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर बहरीन कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की यात्रा के पहले चरण में डॉ जयशंकर दोहा पहुंचे जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं विशेष रूप से ऊर्जा व्यापार निवेश संपर्क सुरक्षा और जन संबंधों की समीक्षा की सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की डॉ जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा शताब्दी समारोहों में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
2: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
3: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे
2: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा ब्रिटेन की सेना ने बताया कि लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन कतर फ्रांस भारत बारबाडोस ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है

0: ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान है, क्यों ना हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मेक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में दो

की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। T20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। गीत लिखा है नक्शलालपुरी ने, संगीत जयदेव का है

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में स्वीकार किया मैंने फिल्म का ये गाना। गीत निदा फाजली ने लिखा है, संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है. फिल्म का नाम है कालीचरण. गीत इंद्रजीत सिंह तुलसिया का है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का.

आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजों में सुनिए सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गाना। गीत गुलशन बावरा ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में अदालत फिल्म का गाना। गीत गुलशन वावरा ने लिखा है, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर, इलारुन और साथियों की आवाजों में लम्हे फिल्म का गाना, गीत आनंद बख्शी का है, संगीत शिवहरी का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

0: Right, right, right. All right.
1: Our dear home today.

फिल्म शहनाई का ये गाना सुनकर आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा कि आज के फनकार कार्यक्रम आज किस प्रतिभा पर केंद्रित है। लेकिन दरअसल इस गाने के जरिए अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो शायद आपका अंदाजा बहुत गलत होगा, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम आज जिस हस्ती पर केंद्रित है उसका ताल्लुक इस गाने को लिखने वाले गीतकार से है, जो निर्देशक भी रहे, यानी कि पीएल संतोषी। लेकिन आज हम पीएल संतोषी की बात नहीं कर रहे, बल्कि

निर्माता, निर्देशक और गीतकार पीएल संतोषी के बेटे होने के बावजूद राजकुमार संतोषी का फिल्मों में सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी शुरुआत की गोविंद निहलानी की फिल्म अर्ध सत्य के साथ। ये फिल्म सन 1982 में आई थी और राजकुमार संतोषी इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे। जरा सोचिए कि बतौर स्वतंत्र निर्देशक अपना करियर शुरू करने में राजकुमार संतोषी को पूरे 8 साल लग गए। सन 1990 फिल्म आई घायल। सनी देओल की मुख्य भूमिका वाली ये फिल्म एक गुस्सैल नौजवान की कहानी है जो व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करता है। राजकुमार संतोषी ने इस संवेदनशील कहानी का ताना बाना काफी चतुराई से बुना और उन्हें अपनी इस पहली ही निर्देशित फिल्म में काफी प्रशंसा मिली। सन 1990 में राजकुमार संतोषी को फिल्म घायल के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार।

फिल्म घायल बेहद कामयाब रही। राजकुमार संतोषी के लिए बड़ा आसान था कि वो अपनी दूसरी फिल्म में इसी तरह के किसी विषय को दोहराएं, लेकिन एक अच्छे निर्देशक की पहचान ये होती है कि वो अलग अलग विषयों में अपनी परीक्षा लेता है, अपने आप को आजमाता है। राजकुमार संतोषी ने अपनी दूसरी फिल्म घायल से बिल्कुल अलग विषय पर बनाई। ये फिल्म थी सन 1993 में आई दामिनी।

0: दामिनी के बाद राजकुमार संतोषी अगले ही बरस एक चौंका देने वाली फिल्म लेकर आए, क्योंकि उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो इस बार बनाएंगे एक कॉमेडी फिल्म। ये फिल्म थी अंदाज अपना अपना। ये वो दुर्लभ मौका था जबकि सलमान खान और आमिर खान एक साथ रजत पट पर नजर आए। अंदाज अपना अपना को आज भी एक बेहतरीन कॉमेडी फिल्म माना जाता है। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने बनाई फिल्म बरसात। इस फिल्म को कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है।
0: साल 1996 में घायल से मिलते जुलते विषय को लेकर उन्होंने बनाई फिल्म घातक। साल 1998

0: राजकुमार संतोषी की खासियत ये है कि वो हर बार एक अलग विषय लेकर आते हैं। एक निर्देशक के तौर पर वो हर बार अपनी परीक्षा लेते हैं, अपने आप को आजमाते हैं और अक्सर बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित होते हैं। साल 2000 में उनकी फिल्म पुकार को चारों तरफ बड़ी प्रशंसा मिली।
1: No!

इसकी अगले ही साल राजकुमार संतोषी ने अपने करियर की एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म बनाई। इसका नाम था द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अजय देवगन इस फिल्म में शीर्ष

फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए राजकुमार संतोषी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने बनाई फिल्म खाकी।

ये वो पहला मौका था जब अमिताभ बच्चन राजकुमार संतोषी के निर्देशन में पर्दे पर नजर आए। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन को उन्होंने दोहराया अपनी अगली फिल्म फैमिली में। ये फिल्म साल 2006 में आई। साल 2008 में अजय देवगन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म आई हल्ला।

साल 2009 में एक बार फिर से राजकुमार संतोषी ने एक नई धारा शुरू की। एक बिल्कुल अलग किस्म की कॉमेडी रोमांटिक फिल्म वो लेकर आए जिसका नाम था अजब प्रेम की गजब कहानी। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली ये फिल्म इस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में गिनी गई। संगीतकार थे प्रीतम।

0: जंबाज केंद्रित था। निर्देशक राजकुमार संतोषी पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: इस प्रोग्राम के प्रायोजक विको वज्रदंती। विको वज्रदंती मजेदार ही नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: विको वज्रदंती, शायद इसमें आपको टेस्ट का मजा नहीं मिलेगा, झाग का मजा नहीं मिलेगा। अब आप सोचेंगे तो मिलेगा क्या? असर कम प्रॉब्लम्स पर। इसकी 18 जड़ी बूटियां स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स जैसे प्रॉब्लम्स को रखे दूर और दांतों को रखे हेल्दी। मजा नहीं, असर। अब पेस्ट है, पिक्चर का टिकट थोड़ी।
2: विको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: मजेदार नहीं, असरदार।

0: कभी कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर।
1: कभी

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज, इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है। शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नख्मे, फिल्मों के नाम
1: आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके
0: मेरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन। मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 0224002466। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Do when they get a hand on the trophy. Two balls to come in the 16th. Eccleston balls and...

0: ये FM सेंसिटिव है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 11 बजने को हैं। पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार सुनिएगा दिल्ली केंद्र से।
1: सूर्य नगरी चैनल है, वक्त है हिंदी और इंग्लिश न्यूज का।
2: देश में

0: They've got nothing to lose at this stage, taking a review. 140-2 it is, as the third umpire now will review where things have gone. And we'll wait and watch. Here's the replay. This could be tight, Vineet. It looks like it might well be umpire's call if the ball hasn't touched the bat. I think Mooney knows that she hasn't hit the ball. The expression on her face seems to suggest that. The replay is on. And we have to wait and see what the umpire's decision is going to be. 140-2. Will she go to ultra edge? Probably.
1: पहले अंपायर को यही चेक करना है कि बैट से लगी है या नहीं लगी है और उसी को वो इस समय अलग अलग एंगल से देखकर प्रयास कर रही हैं जानने का और अल्ट्रा एज देखी जाएगी कि क्योंकि बैट के काफ़ी करीब थी गेंद स्प्लिट फ्रेम में भी ये तय नहीं हो पाया और अल्ट्रा एज की प्रतीक्षा की जा रही है कुछ समय लगता है ये देखने के लिए कि अगर एज है तो फिर LBW नहीं हो सकती क्योंकि बैट पहले टकराया था अपनी इनिंग्स को पेस करती इंग्लैंड सबको अवसर भी नहीं मिला बैटिंग का बैट के करीब गेंद आएगी अभी और क्या उस पर डिविएशन है ऐसा नहीं लगता कोई डिविएशन है तब तक बैट पे पहुंच चुकी थी तब अल्ट्रा में कोई डिविएशन नज़र आ रहा है तो बैट पे तो नहीं लगी अब बॉल ट्रैकिंग पे दारोमदार है
0: अंपायर्स कॉल कुड बी लाइकली बिकॉज दिस वाज फायर्ड इन बाय एकलस्टन But she seemed very, very confident. Once the ball tracking comes on, we'll know. Everything running in slow motion, anticipation on everybody's face. And I think in their heart of hearts, everybody knows it's going to make no difference, really, to the result. The question is, will Mooney have to depart or will she continue? Three, four frames on our monitors here. Nat Sivabrunt, the England captain, Beth Mooney, the Australian batter against whom the appeal is, and the split frame of the third umpire's view. But this is taking far too long, as has often become the case now in international cricket technology. But quick decisions is not something that technology is delivering, one has to say, except when it comes to the new ball. Now this will tell us, it's pitching in line, one red, two reds, three reds. Means Beth Mooney has to depart. 16 overs have been completed. It's 140-3.
1: अच्छा रेफरल लिया अंपायर ने नॉट आउट दिया था और ऐसा लग रहा था कि गेंद शायद लेग स्टंप को छोड़कर जा रही हो क्योंकि लेग स्टंप का गार्ड लेकर वो बेथ मूनी खेल रही थी बेहतरीन पारी 49 गेंदों पे 64 रन 10 चौकों की मदद से एकलस्टोन की गेंद पर LBW आउट हुई बेथ मूनी और बहुत संभावना है कि वो प्लेयर ऑफ द मैच साबित होंगी 140 पर ये तीसरा विकेट चला गया ऑस्ट्रेलिया का और 16 ओवर का खेल पूरा हुआ एक तरफा हो गया मैच लेकिन लॉन्ग रूम से कितनी इच्छा रहती है खिलाड़ियों की इस लॉन्ग रूम से निकलना इट गेट्स ऑन योर नर्व्स इतना आसान नहीं होता क्रिकेट के जानकार वैभवशाली और प्रतिष्ठित लोगों की नज़र आप पर होती है ड्रेसिंग रूम ऊपर है आपको लंबा रास्ता तय करना पड़ता है बाहर या बाहर से अंदर जाने के लिए एशले गार्डनर क्या खिलाड़ी हैं इन पर आप भरोसा कर सकते हैं स्मिथ बॉलिंग करेंगी सामने है पैरी पैरी तीन मैचों में क्या प्रदर्शन रहा है तीन बार प्लेयर ऑफ द मैच रह चुके हैं इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं की आज मिडलर ऑफ स्टंप से इस गेंद को मोड़ा था अचानक खेल में कुछ शिथिलता आई है हालांकि वो रेफरल में काफ़ी समय ज़ाया हुआ गेंद काफ़ी फुल लेंथ की थी अगली गेंद उसको ड्राइव कर दिया तो फील्डर्स के बीच में से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाद
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सेंसिटी चैनल है FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है सवेरे 5:53 पर आपसे पुनः भेंट होगी तब तक के लिए आज्ञा दीजिए जय हिंद